लाख पर्दों में रहूं भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। मैंने देखा है कि जब मेरी जबान डोलती है, शायरी सच बोलती है।

वो आपकी खिदमत में शायर लखनवी की गजल जो फरमाइश के तौर पे दी गई है, जो थके थके से तो हौसले।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: system, but it's love for money.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: साज दिल जब सदा नहीं देता, कोई नगमा मजा नहीं देता।

0: बापू।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
2: मोहतरम सामाइन, मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू है मुनाफिकीन। कुरान हकीम के शुरू में अल्लाह ताला ने इंसानों को तीन ग्रोहों में तकसीम फरमाया है, नंबर एक मोमन, नंबर दो काफिर और नंबर तीन मुनाफिक। सबसे पहले अल्लाह ताला ने मोमिनीन का मुख्तसर जिक्र फरमाया है, फिर कुफार का जिक्र सिर्फ एक ही आयत करीमा में किया है और आखिर में मुनाफिकीन के बारे में इंतहाई तफसील से जिक्र फरमाया है। इन मुनाफिकीन का जिक्र कुरान मजीद में इतनी तफसील से इसलिए है कि ये माशरे के बदतरीन अफराद हैं। कुफार से कहीं ज़्यादा नुकसान इस्लाम को इन मुनाफिकों की वजह से पहुँचा है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक ताला ने कुरान हकीम में इन मुनाफिकों के किरदार को पूरी तफसील से बेनकाब किया है। यही नहीं बल्कि इनके दर्दनाक अंजाम की भी मुफस्सल खबर दी है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह ताला कुरान करीम में इन मुनाफिकीन के बारे में क्या फरमाता है। सूरतुल बकर की आयत नंबर 8 और 9 का तर्जमा है कि और बाज़ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम खुदा पर और रोज़े आखरत पर ईमान रखते हैं, हालांकि वो ईमान नहीं रखते। ये खुदा को और मोमिनों को चकमा देते हैं मगर हकीकत में अपने सिवा किसी को चकमा नहीं देते और इससे बाखबर हैं। मोहतरम सामईन, ज़रा गौर फरमाइए, हालांकि ये मुनाफिकीन अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर रहे हैं और रोज़े क़यामत पर यकीन का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार नहीं कर रहे। ये उस दौर के यहूदियों का रवैया था। और ये कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार ना किया जाए किसी भी बात का यकीन कोई माने नहीं रखता। सूरतुल बकर की आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला का इरशाद है कि इनके दिलों में कुफर का मर्ज था, खुदा ने इनका मर्ज और ज़्यादा कर दिया और इनके झूठ बोलने के सबब इनको दुख देने वाला अजाब होगा। सामईन मोहतरम, इस आयत से ज़ाहिर होता है कि झूठ बोलना कोई छोटा मोटा मामूली गुनाह नहीं है बल्कि झूठ वो गुनाह अजीम है जो एक मोमन को मुनाफिक बना देता है। इसीलिए अल्लाह ताला सुरुल हज की आयत नंबर 30 में झूठ का बुतपरस्ती के साथ जिक्र फरमाते हैं। इरशाद होता है कि अपने आप को बुतपरस्ती और झूठ बोलने से बचाओ। मुनाफिकों के बारे में अल्लाह ताला कुरान करीम में मजीद फरमाता है सूरतुल बकर की आयत नंबर 11 और 12 का तर्जमा, और जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना डालो तो कहते हैं हम तो इसलाह करने वाले हैं। देखो ये बिलाशुबा मुफसद हैं लेकिन खबर नहीं रखते। आगे चलकर अल्लाह ताला फरमाता है सूरतुल बकर की आयत नंबर 13 का तर्जमा, और जब इनसे कहा जाता है कि जिस तरह और लोग ईमान ले आए हैं तुम भी ईमान ले आओ तो कहते हैं भला जिस तरह बेवकूफ़ ईमान ले आए हैं इसी तरह हम भी ईमान ले आएँ। सुन लो कि यही बेवकूफ़ हैं लेकिन ये नहीं जानते। मोहतरम सामईन, ईमान की कसौटी ये है और काबिल कबूल ईमान सिर्फ वो है जो कि सहाबा कराम की तरह का हो। गौर फरमाइए कि सहाबा कराम की कितनी इज़्ज़त अफजाई है। अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की एक और किस्म इस तरह बयान फरमाई सूरतुल बकर की आयत नंबर 14, 15 और 16 का तर्जमा, और ये लोग जब मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए हैं, और जब अपने शैतानों में जाते हैं तो इनसे कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं और हम तो उनसे हंसी किया करते हैं। ये मुनाफिकों से खुदा हंसी करता है और इन्हें मोहलत दिया जाता है कि शरारत और सरकशी में पड़े बहक रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हदायत छोड़कर गुमराही खरीदी तो ना तो इनकी तजारत ही ने कुछ नफ़ा दिया और ना ही वो हिदायत याब हुए। बस अल्लाह ताला मुनाफिकीन को मोहलत दे रहा है कि वो मुनाफिकत से बाज आ जाएं, और इसने इन्हें मोमिनीन की दुश्मनी के अंधेरे में भटकता हुआ छोड़ दिया है। ये लोग वो हैं जो हदायत के बदले गुमराही खरीद रहे हैं और ये सिर्फ नुकसान का सौदा है। इसके बरक्स आइए देखिए कि अल्लाह ताला मोमन मर्दों और मोमन औरतों के बारे में कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाता है। सूरतुल हदीद की आयत नंबर 12 का तर्जमा है कि जिस दिन तुम मोमन मर्दों और मोमन औरतों को देखोगे कि इनके ईमान का नूर इनके आगे आगे और दाहिनी तरफ चल रहा है तो इनसे कहा जाएगा कि तुमको बशारत हो कि तुम्हारे लिए आज बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और इनमें हमेशा रहोगे और यही बड़ी कामयाबी है। मोहतरम सामईन, यहाँ कई बातों की वजाहत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि मोमन मर्दों और मोमन औरतों के अजर यकसा हैं। रोशनी उनके दाहिनी तरफ होगी यानी इनका आमाल नामा इनके सीधे हाथ में दिया जाएगा, और रोशनी یا نور کا سامنے ہونا تو یوں بھی صحیح معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم تاریکی میں راستہ طے کر رہے ہوتے ہیں تو نور یا روشنی عموماً ہمارے سامنے ہوتی ہے تاکہ ہمیں راستہ صاف نظر آئے۔ نور یا روشنی کا مومن مردوں اور مومن عورتوں کے آگے یا سامنے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ان کے اچھے کاموں یعنی دنیا میں نیکیوں اور تقوی اختیار کرنے کا انعام دیا جا رہا ہے۔ اس ایک نقطہ کی وضاحت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ مثلاً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش کہا کہ خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو رات کی تاریکی میں مسجدوں میں عبادت کے لیے جاتے ہیں، قیامت میں ان کے لیے ایک خاص قسم کا نور ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ نے کہ جو لوگ پانچ وقت نماز با جماعت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں ان کو قیامت کے دن ایک خاص نور عطا کیا جائے گا، جو لوگ نماز کے سلسلہ میں اس کے برعکس ہوں گے ان کا حشر قارون، حامان اور فرعون کے ساتھ کیا جائے گا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جمعہ کے روز باقاعدگی سے سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن اس کو ایک نور عطا کیا جائے گا جو اس کے قدموں سے شروع ہو کر آسمان کی بلندیوں تک جائے گا۔ اسی طرح

0: जो है उस हक कभी इतबा करने की तौफीक अता फरमा दे। वारना बातिल बातिल वर्जुकना इज्तनाबा, और बातिल का बातिल हमें दिखा दे, हमें आंखें आंखें बंद हैं, अकल बंद है कि हमें बातिल नजर नहीं आ रहा है, हमें खतरा नजर नहीं आ रहा है, हमें अपनी हलाकत नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हमें दिखा दे अल्लाह ताला और फिर हमें अकल दे तौफीक दे कि हम उस बातिल से बच भी जाए। तो मुसलमानों, ये हर मुसलमान के फर्ज बनता है कि जो है अपने घर की जिंदगी में, हम हर इनफरादी जिंदगी में, इनफरादी जिंदगी में कामयाबी चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि मेरी औलाद मेरी फरमाबरदार बन जाए, मेरी बीवी जो है वो मेरे जो है हकूक को जानने वाली बन जाए, तो हमें उस तालीमात को लेना पड़े जो इस्लाम ने दी हुई है। आप अल्लाह ताला के फरमाबरदार बनोगे तो अल्लाह ताला जो है आपके बीवी बच्चों को उनको आपका फरमाबरदार बना देगा, लेकिन आप अल्लाह के बागी बनो और ये तवक्को रखो कि वो औलाद आपके फरमाबरदार बन जाए, बीवी आपके जो है हुकूक अदा करना, बस ऐसे कभी नहीं होगा। तो ये हकायक के ऊपर आप आ जाओ, और आप चाहते हो कि आपकी आखिरत अच्छी हो जाए, आपकी जो है माल में बरकत हो जाए, तो आपको जो है ये इस्लाम के उसूल हैं, सिद्क और सच्चाई और अमानदारी ईमानदारी, इसको अगर अपनाओगे तो अल्लाह ताला आपके थोड़े से रिज्क बरकत अता फरमा दे। लेकिन अगर आपने इस सच्चाई अमानदारी को इसको छोड़ दिया और झूठ का लिबास पहन के रखा रहा, तो कुछ अरसे के बाद ये झूठ का लिबास उतर जाएगा और फिर आप सब दुनिया देखेगी आप किस तरह से लोगों के सामने बेपर्दा होके हुई। तो बड़ा इस्लाम एक हकायक की दावत देता है, इस्लाम आदमी को वहम वहम से निकालता है और हकायक पर आ जाए। और इस्लाम की यही खूबी है, इस्लाम की तारीख है कि वो लोग जो पहले बुतों को पूजा करते थे और बुतों की पूजा करते करते आपस में जो है एक दूसरे दस्तों के रवान होते थे, खूनरेजी होती थी, जब उन्होंने इस हकायक को मानना शुरू कर दिया तो उन लोगों ने दुनिया के अंदर इस्लाम की रोशनी से दुनिया को मुनव्वर कर दिया। ये तो आज का मुसलमान खास करके हमारे आप मुल्क पाकिस्तान नए इंतहाई खतरात में है, और वो खतरात इसी वजह से हैं कि हमने अल्लाह की तालीम को छोड़ दिया, हमने अल्लाह ताला से जो वादा किया था उस वादे को पूरा नहीं किया, उस झूठ की वजह से, उस जो है अल्लाह ताला वादा खिलाफी की वजह से हमने दूसरों को खुश करने के लिए जिंदगियां लगा दी, दूसरे खुश भी ना हुए और अल्लाह ताला जो है उससे भी हमारी नाराजगी हुई। तो आज जो है हमें हर तरह की जमीनी आसमानी सारी परेशानियां हैं। अल्लाह ताला मुसलमानों को हिदायत दे और अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करे हर खतरा से, और अल्लाह तबारक व ताला बीमारों को शिफा कामला आजरा नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला मरहूम की मगफरत फरमाए। वाखर दुआ अलहम्दु रब्बिल आलमीन।
1: सामाईन नाज़रीन, आप समात फरमा रहे थे हजरत मौलाना फारूक सुल्तान साहब का खिताब। सामाईन नाज़रीन, आपने उनका खिताब सुना, आप भी ये कुतुब खोला करें, आप भी पढ़ा करें, ताकि आपको दुनिया का इलम भी हो और बाकी चीज़ों का भी इलम हो। समय नाज़रीन, हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है, कोई बात करना चाहे अपनी राय देना चाहे उसके लिए अदर आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है।
2: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो बच्चियों ने दफ बजा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। यूँ तलअल बद्रु अलैना दफ के साथ पहली नात ठहरी। इसी मोहब्बत और अकीदत को मद्देनज़र रखते हुए दफ के साथ नजराना अकीदत बहुज़ूर सरवरे कायनात हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पेश खिदमत है।

0: उसका मैं उस भी सिलसिले में हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि उनको फंड भी मिल रहा है, उनको हर चीज मिल रही है और वो चला भी रहे हैं, और उनका मतलब के लोग जो है उसके अंदर आते हैं, बैठते हैं, गप, जाहिर सी बात है यहाँ पे तनाई है, और लोग जो मतलब के इस उम्र में चले जाते हैं वो चाहते हैं कि हम बैठे आपस में कोई बातचीत करें, कोई मुल्की हालात देखें, कोई वैसे बातचीत।
1: जी शाह साहब, इसको ज़रा आप क्लोजिंग की तरफ लेके जाते हैं, आखिर में कुछ शाह साहब हाल भी होना चाहिए, हमारे पास 5 मिनट है।
2: जी, इसका हाल बस यही है कि लोग सामने आए और आकर
0: हाँ
2: खुलकर बात करें।
0: अब बिल्कुल बिल्कुल
2: ये जो मुजीब कुरैशी साहब बात कर रहे हैं ना, ये देखें कि हर फ्राइडे को वहाँ पे मुख्तलिफ फाइंडिंग जो है, किसी का फ्राइडे को है, किसी का ट्यूसडे को है, किसी का वेडनेसडे को है, ओडेंसे के अंदर, इसी तरह दूसरे शहरों के अंदर ये सारे बैठे हुए हैं। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम यह है, वहां किसी में, जैसे मुजीब कुरैशी साहब ने बोला, किसी में चौधराहट नहीं। सारे मुल्कों की, कोई टर्किश है, कोई मोरक्को का, कोई अल्जीरिया ना, कोई अफ्रीका का, सब भाइयों की तरह है और खाना भी खा रहे हैं, लेके भी आ रहे हैं, किसी के जुम्मे ये चीज है, वो कोई काफी बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वियतनामीज भी है, सब इकट्ठे मिलके, और ये सुबह से लेके शाम तक ये इकट्ठे बैठते हैं, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से लेके, तो उनमें काफी
1: तो शाह
2: कन्वर्सेशन
1: साहब,
2: होती है
1: हम
2: उसके
1: कहीं
2: अंदर।
1: अपने पाकिस्तानी सियासत में मुलव्वस तो
2: नहीं
1: नहीं हो
2: राजा
1: गए?
2: साहब, राजा साहब उसके अंदर काउंसलर भी आगे बैठते हैं, जो वहां पे इलेक्टेड काउंसलर है ना, वो भी आगे बैठते हैं, वो भी उनसे बात करते हैं, वो उनसे पूछते हैं कि भाई आगे मसाइल क्या है, आप बताएं, आप फलाने जगह के
0: नाश्ता
2: लिए, आप
0: करते हैं
2: फलाने के,
0: इकट्ठे बैठ के, नाश्ता करते हैं इकट्ठे बैठ के, सारी बातचीत होती है बकायदा
2: तो
0: उनके
2: अगर
0: बीच
2: यहाँ पे
0: में।
2: हम लोग नहीं करेंगे तो कौन जाएगा, कौन?
1: तो शाह साहब,
2: मेरा तो एक
1: यहाँ
2: ही,
1: आकर जो पाकिस्तान में मुजीब साहब बेहतर समझते हैं, जो जिनके लिए हम डिवाइड हो जाते हैं, वो हमें आकर क्या देते हैं?
0: वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन राज साहब देखिए, मैं अभी जो सिस्टम की बात कर रहा था ना, उसका एक न्यारा ब्रो का ग्रुप है, एक उसका सूद है उनका
1: बिल्कुल
0: ग्रुप है,
1: ठीक कह रहे हैं आप,
0: एक
1: क्योंकि
0: उसका
1: आप
0: आमा
1: जाते
0: का
1: हैं, आपके
0: ग्रुप
1: पास
0: है,
1: लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है।
0: और उसके बाद एक आमा का ग्रुप है, अभी अभी अगस्त के आखिर में एक नॉर्थ वेस्ट का ग्रुप वो शुरू कर रहे हैं वहां, हालांकि आमा में और सूद में ज्यादा लोग नहीं है, सबसे बड़ा ग्रुप न्यारा ब्रो, लेकिन वो मुख्तलिफ लोग हैं, बैठते हैं मुख्तलिफ ने लेकर, सारे फार्मर और 67 से ऊपर आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, थोड़ा सा दो दो से 3 घंटे का प्रोग्राम होता है वो, 2 से 3 घंटे, तो 2 से 3 घंटे तो कम से कम लोग बाहर तो निकलते हैं ना, बाहर निकल के, ये बड़ी जरूरी, घरों से बाहर निकलना होता है, क्योंकि जब आप सीनियर सिटीजन हो जाते हैं तो आपके बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं कि आपको घरों में बैठ के बीमारियां लगती हैं, तो बेस्ट तरीका होता है कि आप बाहर निकले, तो मेरा ख्याल है इस पर सबको काम करना चाहिए अपने अपने कमूनों के अंदर, और जो कमूनों के अंदर मुंतखब हुए हैं उनको थोड़ी सी अल्लाह ताला हदायत दे दे, और उनको पता होना चाहिए कि हमारी वोटों से वो मुंतखब हुए हैं, वो कम अज कम इन चीजों के लिए अप्रिशिएट आगे आए और कहें जी आए 15-20 बंदे इकट्ठे हुए हैं, हमें फ्रेनिंग बनाते हैं, फिर उसमें आस्ता से लोग बढ़ते जाएंगे, तो उसमें एक ही चीज होगी कि भाई चौधराहट किसी की नहीं है, ये सबकी फ्रेनिंग है, और सब आए बैठे काफी पिए बातें करें, 2-3 घंटे मखसूस हो हफ्ते में एक दिन, सबका दिल भी खुश हो जाए और सब अपना आके एक दूसरे के साथ बेशुमार चीजें शेयर कर सकते हैं, हम टेलीफोनों पर भी शेयर करते हैं, जब एक दूसरे को देखेंगे तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा।
1: बड़ी अच्छी तजवीज़ है शाह साहब, आप क्लोज कीजिएगा।
2: जी बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ। एक्चुअली बात यह है कि इन सम का मतलब होता है कि जो आप बहुत ही समफोन में, बिल्कुल माशरे में अकेले रह जाते हैं, आप उनके साथ जाके बैठ सकते हैं और उनके साथ फंडिंग में मेंबर बन सकते हैं, और गवर्नमेंट जो है, ये कम्यून जो है, वो उसकी सपोर्ट करती है, उसके पैसे वो देते हैं। जितने ज्यादा मेंबर आपके बनेंगे, उतने ज्यादा मेंबर लेडीज हो, जेंट्स हो, ये उनके लिए वो करते हैं। मसला भी यहाँ पे ये है कि कई लोगों ने, जिनका मुझे इल्म है, कि कई लोगों ने ऐसी फेनिक्स बनाकर वो पैसा अपने 3-4 बंदों में, चौधराहट में बांट लेते हैं, और उसके बाद मसला जो है वो वही का वही रहता है। वो नहीं चाहते कि कोई और आदमी जो है वो जंप करके इस तरह की चीज बनाए, उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। काउंसलर, क्योंकि उन लोगों के अपने होते हैं, वो उनको आगे नहीं आने देते, और इस तरह की फाइनिंग नहीं बन रही। लेकिन अब क्योंकि ये फेसबुक पे भी आ रहा है, ये तो ये इस चीज को डैलिश जो है, सियासतदान वो भी ये चाहते हैं कि इंटरग्रेशन जो है ये स्टॉप हुई हुई है इन वादा की तरफ से, इसको बहाल करना चाहिए। और ये इसको बहाल करने का यही तरीका है कि हमें ज्यादा से ज्यादा फाइनिंग्स बनानी चाहिए, जिसके अंदर डेनिश भी आए, दूसरे भी आए, अपने लोग भी आए, ठीक है आप उनका टेबल, आधा टेबल पर वो बैठे हैं, आधा टेबल पर आप बैठे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इससे

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: شاہ جی،
2: وعلیکم السلام۔
1: شاہ جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟
2: ٹھیک، تسی سناؤ؟
1: بس شاہ جی، اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک ٹھاک۔ میں کہ میسج بھیجے سے ٹیکسی والا کیڑا سی، کار والا
2: جی؟
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامع ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر اپنی ٹیم کے ساتھ حاضر ہیں۔ مین موسم اچھا ہے، بادل بھی چھائے ہوئے ہیں اور آن دا ہول بارش بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ لگی رہتی ہے، زوردار بارشیں، چونکہ ساون کا مہینہ جو ہے وہ گس چلتی شروع ہونے والا ہے۔ تو شاہ صاحب سے ہم بہت ساری خبریں شیئر بھی کرتے رہتے ہیں، وہ بھی سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، حالات حاضرہ پر تبصرہ بھی کرتے ہیں۔ تو ہم آپ کو اپنے تھنک ٹینک سے یہ توقیر حسن بخاری شاہ صاحب کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ شاہ صاحب، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ فور صاحب، آپ کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کے جتنے لسنر ناظرین ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ موسم بہت پیارا ہے اس وقت، 18-19 ڈگری گرمی ہے اور ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے ہیں اور کبھی دھوپ کبھی بادل، لیکن جو پیش ہوئی ہے کہ موسم جو ہے شام کو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ بادل برسیں، لیکن کس وقت برسیں یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ کس وقت وہ آئیں گے، کیونکہ بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ طوفان آنے والا ہے اور جب وہ تھوڑی سی ہوا چلتی ہے لیکن طوفان نہیں آتا۔ تو یہ سب کچھ اللہ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا اس کا دنیا اس کی ہے، کیسا موسم ہوتا ہے۔ تو راجہ صاحب، لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں اور اب چھٹیاں جو ہیں، کافی لوگوں کی چھٹیاں جو ہیں کل سے ختم ہو رہی ہیں، کافی بان ہیمن جو ہیں وہ دوبارہ کھل رہے ہیں، تو کافی لوگ جو ہیں وہ کیونکہ لوگوں نے مختلف ٹائموں میں چھٹیاں لی ہوئی ہیں، کچھ کی چھٹیاں جو ہیں وہ کل منڈے کو ختم ہو جائیں گی، لوگ بان ہیمن میں بچے جانے شروع ہو جائیں گے، کچھ جو ہے وہ اگست کے پہلے ہفتے میں ختم ہوگی، کچھ اسکول وغیرہ جو ہیں وہ 3 یا 5 اگست تک یہ اسکول وغیرہ بھی کھل جائیں گے۔ تو اس طرح پھر جو زندگی کا ایک پیا ہے وہ دوبارہ چل پڑے گا۔ جی راجہ صاحب،
1: تو شاہ صاحب، سیاسی پہیا کب چلے گا؟
2: دیکھیں جی، اس وقت دو سیاسی پیے یہاں پہ گرم ہیں، ایک ڈینش سیاسی پیا اور دوسرا جو ہے وہ مینگو سیاسی پیا، اور جو مینگو سیاسی پیا ہے وہ تو 8 کو یہاں پہ البسلون میں دوبارہ لگنے جا رہا ہے، اور وہ 8 اگست کو، اور اس کے بعد ایک جو ہے وہ 14 اگست منائی جا رہی ہے، اور اس طریقے سے یہ سارا سلسلہ جو ہے آگے تک چلے گا۔ اور اس کے بعد
1: شاہ صاحب، سارا نام جو ہے پاکستان فیسٹیول کے نام سے آتا ہے،
2: یہ مینگو جو ہے یہ پاکستان فیسٹیول کے نام پہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ پاکستان سوسائٹی 14 اگست کو منا رہی ہے، اور باقی جو ہے وہ میرا خیال میں 19 اگست کو دوبارہ جو ہے وہ ایک فیسٹیول ہونے جا رہا ہے، تو اس کا مجھے نہیں پتا کہ وہ کون کر رہے ہیں، لیکن میری نظر سے گزرا تھا کہ 19 کو بھی ایک مینگو فیسٹیول ہوگا۔
1: تو 16 اگست بھی منایا جا رہا ہے
2: جی، اب لوگ دن منائیں گے کوئی 12 کو، لیکن جو آفیشیل جن کے اناؤنسمنٹس ہو رہی ہیں، جن کا فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ آ گیا ہے، تو ان کا تو ہمیں علم ہو جاتا ہے، لیکن جو صرف ابھی اندازے لگا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔
1: تو چلیں شاہ صاحب، آفیشیل تو 14 اگست کو پاکستان امبیسی میں ہوتا ہے، پرچم کشائی ہوتی ہے، تو وہ تو ہر سال کی طرح اسی طرح ہوگا۔ تو شاہ صاحب، اب جو سیاسی موسم ہے یہ بالکل ٹھنڈا پڑ چکا ہے، چھٹیوں پہ چلا گیا ہے، خالی سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں سیاستدان۔
2: جگہ جی، اس دفعہ سیاستدانوں کے بارے میں جو ہے وہ کافی لے دے ہو رہی ہے، صرف یہ نہیں کہ ہم ریڈیو پہ ہی ان سے بات کرتے ہیں، بلکہ اب عوام الناس جو ہے، عام لوگ جو ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں کہ کیا فائدہ ایسے ینگسٹرز کا، کیا فائدہ ایسے لوگوں کا جو اہل زبان ہونے کے باوجود ہمیں کچھ انفارمیشن نہیں دے رہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کافی گڑبڑ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 11 دن کے اندر 11 दिन के अंदर यहाँ पे 7 छुरियों के हमले हुए हैं कोपेनहेगन के अंदर, और ये बहुत बड़ी बात है कि 11 दिन में 7 हमले होना, और उनके अंदर सिर्फ सारे फॉरनर्स हैं, मेजॉरिटी फॉरनर्स की है, क्योंकि यूक्रेन के हमारे यहाँ के रहने वाले दूसरे आगे पीछे बहुत सारे लोगों के नाम जो है वो पुलिस ले रही है, और ये पब्लिक प्लेसों के ऊपर जो है खुसूसी तौर पे मेन स्टेशन पे या पब्लिक प्लेस जैसे फील्ड्स होगी, सेंटर्स होंगे, इनके अंदर इस तरह की बदमाशी करने से
1: ये
2: जो
1: है, जितनी जो कारोबारी ये जगह हैं या पब्लिक प्लेसेस हैं, यहाँ तो हर तरफ हर कोने खुरदरे में जो है वो कैमरे लगे होते हैं, कोई चीज तो छुप नहीं सकती शाह साहब यहाँ से।
2: जी वो छुपती नहीं, वो पकड़े जाते हैं, लेकिन जलालत ये है कि वो खुद तो अपने दिमागी या रंजस की वजह से किसी के ऊपर वार तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद बदनामी जो है वो सारे फॉरनर्स की हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है, और ये ज्यादातर बच्चे जो हैं ये 15 साल से लेके तो 20 साल 21 साल की उम्र
1: तो
2: के हैं।
1: सब इन बच्चों को मसरूफ रखना चाहिए ना, स्कूलों में तरबियत होनी चाहिए, उसके बाद माँ बाप का भी तो हक बनता है, वो भी तरबियत करे। कुछ बच्चे जो इंसाफ भी नहीं मिलता तो बच्चे जो है वो अपना जहनी तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं, इंसाफ नहीं जब मिलता।
2: राजा साहब जब लुटेरे घर का सफाया कर जाएं, डाकू डाका मारने में कोई चीज ना छोड़े तो उस घर के अंदर भूख की हालत होगी। यही हाल यहाँ हमारे चीजों का है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने, मुझे कोई दो राय नहीं, जब यहाँ गवर्नमेंट ने शुरू से ही ऐसे पोलियो रखे हुए हैं, ऐसी चीजें रखी हुई हैं कि जो कल्चर के लिए जुमले में आता है, यानी कि आप अपनी कोई कल्चर करना चाहते हैं, आप स्पोर्ट करना चाहते हैं, आप हॉकी खेलना चाहते हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं, बैडमिंटन खेलना चाहते हैं, आप कोई भी किसी किस्म की गेम करना चाहते हैं, आप कोई बस टूर करना चाहते हैं, कोई भी, बूढ़ों से लेके बच्चों तक गवर्नमेंट ने यहाँ कम्यून ने अदारे बनाए हुए हैं, आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। आप अभी 50-60-100 बंदे की मेंबरशिप करके वहां से हेल्प ले सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं हर चीज, लेकिन ये मेरा काम नहीं बताने का, ये काम है जो यहाँ के सियासतदान हैं, जो यहाँ कहते हैं जी ओ जी असी तो बहुत बड़ी डैनिश जबान बोल रहे हैं जी, असी तो PhD हैं जी, असी तो बड़ी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से हम पढ़ के आए हैं, क्या वहां पे ये सियासत पढ़ रहे थे? अगर सियासत पढ़ रहे थे तो क्या वहां पे ये लॉ पढ़ रहे थे? भाई आकर सामने बताएं तो सही आप क्या कर रहे हैं, आप लोगों को तो बताएं नहीं, बाहर तो निकले अपने। ये जो क्राइम आज हो रहे हैं, अगर इन बच्चों को, इन पेरेंट्स को बराबर के हकूक मिले होते हैं जैसे डेंचो के होते हैं, तो ये कभी भी क्राइम ना करते।
1: शाह साहब हकूक तो मिलते हैं, हकूक लेने का आपने जिस तरह तरीका बताया, शाह साहब मैं जरा आता हूँ महंगाई की, आपने बात की है तो शाह साहब अगर एक महीने में 5-6 मेले होते हैं तो एक फैमिली वाला अगर हर मेले में जाकर 200-250-400-500 करोड़ खर्च करके आ जाता है तो शाह साहब एक पेंशन वाला कैसे फिर गुजारा करेगा? बच्चों के साथ जाएगा, कोई 1,000-1,200 लगा के आ जाते हैं। तो शाह साहब हम इन चीज़ों को देखते नहीं हैं, हम अब गाड़ियाँ हमारे पास बड़ी बड़ी हैं, गाड़ियाँ लेते हैं, सड़क पर आप खड़े हो जाएँ तो कहीं आपको गुर्बत नज़र आती है, किसी स्टोर में चले जाएँ आपको कहीं गुर्बत नज़र आती है, किसी भी पब्लिक प्लेस पर चले जाएँ, सैर वाली जगहों पे चले जाएं, झूलों वाली जगहों पे जाएं, कहीं आपको गुर्बत शाह साहब नजर आती है? किसी मेले में चले जाएं, कोई आपको गुर्बत नजर आती है?
2: नहीं, हमें वो तो हमें माजरत के साथ एक फैशन शो नजर आता है कि हर कोई अपनी जो है, हर कोई अपने ड्रेस का या अपने पैसे का, ताकत या अपनी गाड़ी या और दूसरे इमारत की शो जो है वो सामने।
1: शाह साहब महंगाई का जिक्र तो नहीं होना चाहिए ना?
2: नहीं, देखे वो भी जमाना था जब हम बसों पे सफर करके काम पे जाते थे, पैदल चल के काम पे जाते थे, घोड़े घोड़े बर्फ पड़ती थी उस वक्त, उसके अंदर कई कई मील लोग पैदल चल के जाके काम करने जाते थे, साइकिलों पे जाते थे, खनेलट होते थे, उनके अंदर 5 करोड़ का पेट्रोल डलता था तो वो पूरा हफ्ता 2 हफ्ते वो गुजारा
1: तो
2: कर लेते थे।
1: लोग स्टेट को गिला नहीं करना चाहिए ना?
2: नहीं, स्टेट को नहीं है, हमारे अपने अपने जो रवायात हैं, हमारे हमने अपनी रवायात को बदल लिया है, हमने 2 कल्चर बना लिए हैं, हमने सबसे ज्यादा बड़ा कल्चर जो है वो पाकिस्तान का कल्चर बनाया है, हम शो मारने के लिए पाकिस्तान चले जाते हैं, हम सबसे ज्यादा पैसे, पहले तो आप ये हिसाब लगाएं, आप अकेले जा रहे हैं, 2 बंदे जा रहे हैं, तो कम से कम 25-30-50 हज़ार करोड़ का खर्चा जो आप पाकिस्तान लेके जा रहे हैं। फिर यहाँ पे आपने फैमिली स्टैंडर्ड रखना है, यहाँ पे भी आपने हर चीज रखना है, गाड़ी रखनी है, तो फिर आपके बच्चे जो हैं, जो बच्चों का हक है उनको आप नहीं दे रहे। अब बच्चे जो हैं अब छुट्टियों से वापस आएंगे, आप खुद निकल जाएं, आप जर्नलिस्ट हैं बाहर निकल जाएं, जाके बच्चों से पूछें आपने बेटा कहाँ पे छुट्टियां गुजारी, तो वो कहेगा कि फलाने कजन के घर चले गए, फलाने के पास चले गए, मैंगो फेस्टिवल चले। तो जो डैनिश बच्चे हैं उनसे पूछेंगे वो कहेंगे जी हम इटली गए, हम टर्की गए, हम इजिप्ट गए, हम फलानी जगह गए, हमने फलानी जगह स्केटिंग की, हमने फलानी जगह फिशिंग की, वो ऐसी बातें आपको बताएंगे। तो उससे हमारे बच्चे जो हैं वो नफसियाती तौर पे जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, और जब वो कमज़ोर होते हैं तो फिर वो करते क्या हैं, वो फिर पैसे के पैसे को हासिल करने के लिए, क्योंकि ज़हनी तौर पे आदमी कमज़ोर हो जाता है तो फिर वो ऐसी बातें करता है कि ये हमारा डिफरेंस क्या है, वो अपने माँ बाप से चीज़ें छुपाता है, वो बाहर भागता है और बाहर जाके वो क्राइम करता है। तो इन चीज़ों को देखें, आप हमारे ड्रामे देख लें, हमारे कल्चर देख लें, आप घर में बैठे हैं ड्रामा आपने लगाया देखा है स्वाइड वो उसके लव मैरिज, ये शादी किसी से हुई है, लव किसी से हो रहा है, ये सारा का कल्चर हमारा जो है, हम लोगों ने कभी भी इसके ऊपर प्रोटेस्ट नहीं की, खुद ही इसके ऊपर इसकी तबाही के हम जिम्मेदार हैं। यहाँ पे कितने घर हैं, यहाँ पे अगर आप जाकर किसी से गवर्नमेंट से बात करें, मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि यहाँ पे हमारे बच्चियों के हकूक कैसे किस तरीके से पमाल हो रहे हैं, हमारी बहनों के बेटियों के हकूक कैसे पमाल हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे डिवोर्स हो रही है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फिर यहाँ का जो कानून है वो उसकी पमाली की जाती है। तो राजा साहब ये जो
1: शाह साहब हम कोई काम कानून के मुताबिक नहीं करते, लेकिन हम सिर्फ मांस व गिले करने के अलावा हमारे पास कोई टॉपिक नहीं है।
2: देखिए जी, जो भी इस वक्त बात होगी, आप किसी मैंगो फेस्टिवल पे चले जाएं, किसी डिजाइनर फेस्टिवल पे चले जाएं, किसी आप गाने बजाने वाली महफिल में चले जाएं, यहाँ के काउंसलर्स आए होंगे, यहाँ के सियासतदान आए होंगे, वो घूम फिर के बात होगी अपने गांव की, घूम फिर के बात होगी अपने इलाके की, घूम फिर के बात होगी कि मैं किस मिनिस्टर को मिजा, मेरा कजन कौन जनरल है, मेरा कजन कौन बड़े बड़े ओहदे पे बैठा हुआ है, ये बातें आप सुनेंगे, लेकिन हकीकत कुछ और होती है, हकीकत बिल्कुल बरअक्स होती है।
1: शाह साहब आते हैं, दोबारा वापस आते हैं, शाह साहब आपसे ये सवाल भी करते चले, शाह साहब इलेक्शन जमहूरी इलेक्शन होना, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, जमहूरी जितने इलेक्शन होंगे बेहतरी आएगी। तो शाह साहब जहाँ गुर्बत होती है, जहाँ आपको 20-20, 20-20, 40-40 लाख लगाने की जो है वो इजाज़त होती है अपने इलेक्शन कंपेन में, करोड़ों अरबों का इलेक्शन हो जाता है, जलसे जुलूस हो जाते हैं, बड़े बड़े लीडरान जाते हैं, उनकी खातर तो आज़ा होती है, तो शाह साहब जब इतने अखराजात करने के बाद जमहूरियत फिर भी उस तरह की नहीं आती, गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं, आपस में कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, तो जो लोग बनते हैं जिन्होंने लगाया होता है फिर वो उन्होंने अपना पूरा भी करना होता है, और उसके बाद गिले शिकवे शुरू कर देते हैं, जी फलां हुकूमत ने ये कर दिया, फलां मुल्क ने ये कर दिया, फलां एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया। शाह साहब अपने करतूत हम ठीक करने के लिए तैयार नहीं है, शाह साहब इसकी क्या वजह है?
2: इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो शोबाजी के लिए या अपना अपने क्रिमिनल एलिमेंट्स को छुपाने के लिए, जो उनके जो उनका कारोबार होता है उसको छुपाने के लिए वो सियासत में आ जाते हैं, और जब वो सियासत में आते हैं तो फिर उसको ताकत देने के लिए वो ऐसी हरकतें करते हैं कि लोग जो हैं उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन ज्यादा से ज्यादा हो। अब आप ये देखें कि आपने बात की तो आपने पाकिस्तान की तरफ इशारा किया, वहां पे एक डॉक्टर एक बच्चे को डॉक्टरी पढ़ने के लिए जो है वो एक मामूली से मेडिकल कॉलेज के अंदर सिर्फ जो उसने डिपॉजिट कराना है वो 25-30 लाख रुपया है। अब वो 25-30 लाख रुपया कहाँ से लाएगा, उसको कौन देगा, क्या उसको कोई बैंक एसयू मिल रही है, बैंक लोन दे रहा है या क्या कर रहा है। इसी तरीके से इंजीनियर, इन्होंने एजुकेशन को इतना इतना गंभीर इतना ज्यादा महंगा कर दिया है कि लोग जो है और बस शोशा, और कुछ सबसे बड़े मुजरम हम हैं जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, मैं अपने आप को भी इसमें शामिल करता हूं क्योंकि मैं इस माशरे का एक हिस्सा हूं। हम लोग जब वहां जाते हैं बच्चियों की बेटों की शादियां करते हैं एक महीने के लिए हम जाते हैं, टोयोटा लैंड क्रूजर और बड़ी बड़ी गाड़ियां हम वहां रेंट पे ले लेते हैं और फिर वहां पे शो मारते हैं, ये है ये हमारी फोटी। तो अब उनको ये पता नहीं है, उन लोगों को ये पता नहीं कि हम यहाँ किस तरीके से मजदूरी कर रहे हैं, हम यहाँ किस तरह। ये अच्छी बात है कि अब आगे हमारी जो जनरेशन है सेकेंड और थर्ड जनरेशन, ये अच्छे अच्छे ओहदों पे यहाँ पे लग गए हैं, लेकिन इससे पहले तो हम सब मजदूर थे। यहाँ पे कौन सा डॉक्टर था, कौन सा इंजीनियर था, कौन कुछ था।
1: लेकिन शाह साहब आपसे जानना चाहेंगे, आपके शाह साहब आप अपने तजुर्बे की बुनियाद पर बताएं और हकायक की रोशनी को सामने रख कर रोशन करें। शाह साहब, क्या यहाँ डेनमार्क में रहते हुए अपनी सियासी जमातें होनी चाहिए या डेनिश सियासी जमातों में हिस्सा लेना चाहिए?
2: देखिए जी, मैं तो प्रायोरिटी दूंगा कि यहाँ पे डेनिश सियासत जो है उसमें लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, ख्वाह वो पाकिस्तानी जमातें क्यों ना हों, ख्वाह वो पाकिस्तानी जमातें यहाँ रख रहे हैं, उन सबको ये हक हासिल है कि वो अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने आवाम के लिए यहाँ की सियासत में को सबसे पहले नंबर वन समझे, यहाँ के लोगों को इनवाइट करें जो आइन को समझते हैं, जो यहाँ के तरीकाकार को समझते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि हमारे 90% बल्कि 90% ही 99% जिस वक्त हमारे यंग काउंसलर पहली दफा इलेक्ट होते हैं, लोगों को गुस्सा तो लगेगा लेकिन मैं हकीकत बोल रहा हूं, तो उनको ये नहीं पता कि उम्बसमैन जो होते हैं, जो लॉ मेकर्स होते हैं, जो यहाँ हमारे कम्यूनों में या अपने मुख्तलिफ अदारों में बैठे होते हैं, वो उनको किस तरह ट्रिकल करना है, उनसे किस तरह हमने सीखना है। वो जब सीख जाते हैं तो 4 साल गुजर जाते हैं या फिर अगली दफा 4 साल के लिए वो इलेक्ट नहीं होते बदकिस्मती से, क्योंकि उनका उनको तजर्बे थी, या फिर अगर वो दोबारा इलेक्ट हो जाते हैं तो फिर वो कुछ अरसे के बाद कहीं अच्छी नौकरी करने उनको मिल जाती है क्योंकि वो सियासत में रहे होते हैं। ये याद रखें कि हमारे लोग मेजॉरिटी जो हैं वो 2 मकासद हासिल करने के लिए सियासत में आते हैं, एक अपने फैमिली अपने इलाके में अपना नाम रोशन करना, हालांकि ये वो ही काउंसलर हैं जो पाकिस्तान में काउंसलर होते हैं और वही पार्लियामेंट के मेंबर हैं जो पाकिस्तान में होते हैं, तो इनमें कोई बड़ा फर्क नहीं। असल में बात यह होती है कि आपका कद काठ तब ऊपर जाता है जब आप अवाम के लिए कुछ करते हैं। चलो पाकिस्तान में तो फिर वो नालियां सड़कें और लोगों को कुछ ना कुछ तो बताते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं, यहाँ तो ये भी नहीं होता। यहाँ पे तो एक मिनट के लिए इनके पास टाइम नहीं कि यहाँ आकर, मैं 2 साल हो गए हैं, 2 साल से मैं आपके रेडियो पे ये बिल्कुल बगैर किसी खौफ और खतरे के ये बात करता हूँ कि देखें कि पूरे डेनमार्क के अंदर बाउ सर्विस जो है वो उलेनिंग के साथ जो है वो उलेनिंग डॉक्टरेट के साथ वो काम करते हैं। सिर्फ जो ये हमारा वेस्टाइन है और कोपेनहेगन, यहाँ के लोगों को नेस्ट विज वहाँ उलेनिंग डॉक्टरेट में खुद जाना पड़ता है, तो ये कितना बड़ा जुल्म है, ये क्यों नहीं लोग कहते हैं कि हमारे लोगों को जो है ये सहूलत दे।
1: तो शाह साहब, इससे पता है कि फिर पाकिस्तान की सियासत ज्यादा बेहतर है बनिस्बत डेनिश की सियासत से।
2: जी, एक दफा फिर कहिएगा।
1: तो शाह साहब, इससे तो फिर साबित हो रहा है कि पाकिस्तान की सियासत में ज्यादा सहूलियात है, डेनिश सियासत में सहूलियात नहीं है।
2: नहीं जी, डेनिश सियासत में सहूलियात हैं, अगर आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें, आप अपने आप को सही सियासत में देखें। सियासत जो है, आप जब अवाम के लिए, दो किस्म की सियासत है, एक है क्रिमिनल सियासत जिसके अंदर आप कमाई करना चाहते हैं, आप अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, आप अपने आप का कद काठ ऊंचा करना चाहते हैं। एक सियासत होती है ईमान की, जिसके पीछे आप अपने ईमान को पुख्ता करते हैं, अवाम के लिए काम करते हैं, आप अपने मुखालफिन जो हैं उनके लिए काम करते हैं, क्यों वो उन्होंने बेशक आपको वोट दिया या नहीं वोट दिया, आपको डाउट हो सकता है कि उन्होंने मुझे वोट डाला या नहीं वोट डाला, लेकिन सब लोग जो होते हैं जो आपके एरिया में रह रहे हैं आप उनके लिए काम करते हैं, तो ये चीजें जहाँ सियासत में।
1: तो शाह साहब चले आते हैं ये टेक्सा की तरफ, ये गाड़ियां जो मैं देख रहा हूँ कि इक्की दुक्की गाड़ी जो है वो सड़कों पर आ चुके हैं, जो नई कंपनी आ रही है, नए ड्राइवर आ रहे हैं तो नए मुलाजम आ रहे हैं। शाह साहब, इसमें कोई दो रोशनी डालें इस पर।
2: ये बिल्कुल, ये ग्रीन जो वियतनाम की टैक्सियां हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा बंदे जो है वो एनसेट कर लिए रखती हैं ड्राइवर। और देखें, बेशक ये कानून की खिलाफ वर्दी है कि ये 34-35 हज़ार जो मिनिमम, जो इन्होंने 47,000, अगर आप गूगल करें ना तो डेनमार्क ने जो दुनिया को बताया हुआ है वो ये है कि यहाँ पे कम से कम जो तनख्वाह है महीने की वो 47,000 करोड़ है। हालांकि ये बिल्कुल सरासर झूठ है, इसलिए डेनमार्क को टॉप प्रायोरिटी मिलती है। यहाँ पे 29,000 करोड़ पे जो है ये लोगों को इन्होंने एनसेट किया, लेकिन उसके साथ कुछ उन्होंने लोजमात ये रखे हैं कि आपको हम जो है थोड़ा सा बोनस वगैरह भी देंगे तो जो है। लेकिन ये जो 29,000 की जॉब है, ये इसके अंदर आपने 5-6 घंटे काम करना है उसके अंदर, क्योंकि आपको काफी पोस्ट भी होगा, आपको फोकस पोस्ट भी होगा आपके लिए, तो वो 7.5 घंटे की जो 7 घंटे की ड्यूटी है, क्योंकि आपने वापस जाके उनके दफ्तर में जहाँ उनका लैगन है, जहाँ गाड़ी खड़ी करनी है वहां आपने खड़ी करनी है, तो आपको 7.5 घंटे के अंदर ये सारे मरहले तय करने हैं। तो अब वो सबसे बेहतर है कि बनिस्बत के आप, जैसे कि कल मैंने ये बताया था कि एक आदमी अपना रॉस किल्डे से 552 करोड़ के अंदर जो है वो रॉस किल्डे से लुफ्त आमन कोपनहेगन लुफ्त आमन में टूर लेके गया, और वो भी म्यूर चीज के अंदर, तो इससे बड़ी ज्यादती क्या है। अगर वो वोन मैन है तो उसको तो 100 करोड़ से भी कम पैसा जो है वो बचत हुई, क्योंकि लागत ही इतनी ज्यादा है टैक्सियों की जो आप ले रहे हैं। तो इस कंपनी के अंदर जो है ना, मैं उनका मशहूर हूँ ना मैं उनकी तशरीह कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि इसने जो है वेकअप कॉल दे दी है और अब लोगों को प्रॉब्लम नजर आ रही है। जब हम बात करते थे कि
1: इसका फायदा मालकान को होगा या पब्लिक को होगा,
2: इसका कंपनियों को फायदा है और पब्लिक को भी फायदा है। पब्लिक को ये है कि कल एक आया हुआ था पेपर में, बल्कि आज भी आया हुआ था, मैंने आपको कटिंग भेजी ताकि कोई बंदा एतराज करे तो आप उसको वो भेज सकते हैं। उसके अंदर ये है कि अब आप हेलसिंगोर के अंदर आप खुद जाके टैक्सी को वेल कर सकते हैं, कौन सी टैक्सी आपकी नजर में बहुत सस्ती है और आप उसके अंदर बैठ कर जाना चाहते हैं। आप पहली दो तीन आगे ही होता था, जो पहली गाड़ी है आप उसी को उसी में बैठ के जाएं, लेकिन अब जो टैक्सी स्टैंड पे खड़ी है, टैक्सी है स्टेशन पे खड़ी है, कहीं भी खड़ी है, तो वहां पे आप चूज कर सकते हैं, आप वैल्यू कर सकते हैं कि इस टैक्सी में। तो अब लोग अगर ये कह सकते हैं, मैं कह सकता हूँ जी, एक कहता है जी मैं 2,000 में जाना चाहता हूँ, मैं पीछे से आवाज लगाता हूँ जी मैं 1,500 में, मेरे पीछे कोई खड़ा वो कहता है जी मैं 1,000 में, तो वो बंदा जो है वो 1,000 वाले की तरफ चला जाएगा, वो लेकर टूर चला जाएगा। अब कंपनियों ने ये जो काम किया है, इसकी वजूहात क्या है? इसकी वजूहात ये है कि इस वक्त 97% पूरे डेनमार्क के अंदर 97% फॉरनर टैक्सी ड्राइवर चला रहे हैं, कैब ओनर भी फॉरनर्स हैं। आप यूलैंड में चले जाएं, फ्यून में चले जाएं, आपको हर जगह फॉरनर नजर आएगा। और ये जो फॉरनर्स जो हैं, इनके इनसे क्या होगा कल को, ये सारे के सारे जब ये कंपनियां जो हैं ये स्कूलों के बच्चों को ड्राइव करना शुरू कर देंगी, ये इन्होंने तो पैसा कमाना है, ये तो अमीर आदमी है, इनको तो परवाह नहीं। इन्होंने कहना जी ठीक है हम बच्चा ड्राइवर भेज देते हैं, ड्राइवर को क्या, उसको उसने तो वेज लेनी है, उसको तो टूर का उसकी तो उसका मसला ये नहीं कि उसको अब 500 का 1,000 का टूर मिले, 2,000 का टूर मिले, नहीं
1: टूर का मसला नहीं है। शाह साहब हमें शायद नसीम ने भी ज्वाइन किया है, इनसे भी बात करते हैं, चूंकि ये भी इस पर बोलते रहते हैं, इस पर भी बात करते हैं, तो शायद आपको भी एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं।
3: जी अस्सलाम वालेकुम। जी राजा साहब, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, अगर आपके पास 5-6 मिनट है। मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि राजा साहब ये होना था, अब हम इसके ऊपर तकरीरें करें, डिबेटे करें, क्योंकि हमारी कौम का ये अलमिया है जो चीज हो जाए उसके ऊपर हम जो है ना तकरीरें करते हैं, तो कोई फायदा नहीं है। अभी क्या कहते हैं, शाह साहब ने फरमाया कि 97% या मैं तो बल्कि 99% कहूंगा, 99.5% यानी कि 99.5% पक्ट है इसके ऊपर फॉरनर जो हैं वो डेनमार्क में हो जाएं या यूरोप में हो जाएं, खासकर डेनमार्क की चलो बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर डेनमार्क के जो फॉरनर हैं वो टैक्सियों के ऊपर हैं, कोपनहेगन से लेके पूरे यूलैंड तक, यूलैंड से लेके पूरे डेनमार्क तक। तो हम कोपनहेगन की बात करते हैं तो कोपनहेगन में भी 99% ही है, और उसके अंदर तकरीबन तकरीबन 76% या 75% पाकिस्तानी है, बाकी दूसरे गैर मुल्की हैं। पहले पहले गैर मुल्की और जो पाकिस्तानी थे ये भी गैर मुल्की हैं। तो दूसरी जो कौमें थी जिसमें अरबी, तुर्की, कुर्द और जो दूसरे बहुत से वो भी थे इसके अंदर, लेकिन वो फिर आहिस्ता आहिस्ता छोड़ गए इसको। बहुत से लोग छोड़ गए हैं, बहुत से यंग लोग नहीं आ रहे। बहुत से लोग जो यंग अभी आए हैं, जो नए नए आए हैं टैक्सी के अंदर, बिल्कुल यंग जो डेनिश बोलते हैं, वो सारे टैक्सी चला रहे हैं, वो सारे उबर चला रहे हैं, उबर ब्लैक चला रहे हैं। सबको पता है, शाह साहब को भी पता है। इसमें इसमें आप ये नहीं है कि मैं किसी को कोई टीज कर रहा हूँ या मैं किसी को बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये इसको आप समझें कि इसका मैं मतलब क्या ले रहा हूँ। तो उसको नए जो आए हैं वो ज्यादातर जो फिर और जो यंग आ रहे हैं वो आ रहे हैं पाकिस्तानी। अब आ जाए, मैं क्योंकि पूरी तमीज इसलिए बांध रहा हूँ ताकि आपको पूरा पूरी समझ आ जाए। अब आ जाए एसएम ग्रीन। एसएम ग्रीन ने तो एक पैसा फेंका है, उन्होंने एक ये भी मंगवाई है जो हमारे अपने लोग, हमारे जो हैं जिनको पता कोई से बात का नहीं है, जो बहुत से इधर बाजार में चला रहे हैं टैक्सी और ये बातें करते हैं जी, वो कुछ नहीं, ये हर बात को यही लेते हैं, सीरियस नहीं लेते किसी बात को, वो कुछ नहीं होता, छोड़ो पड़ा। इन्होंने उबर आई थी तब भी यही कहा था, इतना इनको इन्फॉर्मेशन से दूर है हर चीज से। अगलों ने आपके यहाँ आके, जबकि आप लोग को कि ये मार्केट थी, ये जो टैक्सी वॉनमन पाकिस्तानी थे सबसे ज्यादा, उसके बाद दूसरे गैर मुल्की थे, इन्होंने ना कोई अपनी फाइनिंग बनाई मजबूत, यानी कि कोई यूनियन मजबूत, जैसे डेनिश लोग पहले होते थे उन्होंने बनाई हुई थी, उसके ऊपर पूरा उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था कि बाहर से कोई ना आ जाए। और ये बात मैं आपको 2013-14 की बता रहा हूँ, जब उबर ने पहली दफा पड़ाव रखा था डेनमार्क में, तो तब डेनिशों ने, डेनिश वॉनमैनों ने जो स्टैग थी उन्होंने, जबकि तब पक्षनी भी वॉनमैन जो थे डेनिशों से ऊपर ही थे तब भी, लेकिन फिर भी डेनिश वॉनमैन काफी थे, उन्होंने ये अपनी कोशिशों से के जरिए इसको यहाँ से भगा दिया और ये यहाँ से चले गया उबर। और उसके बाद यारी बात है, 10 साल फिर आ गए, 10 साल बाद वो इसलिए आए कि उन ये डेनिश लोगों की, डेनिश ही पीछे जो सिस्टम है, डेनिश मैं यहाँ पर जिक्र नहीं भी करना चाहता, उन्होंने इसको तरीके के साथ ले आए जहां उनको देखा कि इसके ऊपर फॉरनरों का गलबा आ गया है और वो किसी करवट नहीं बदल रहा और बस एक ही जगह वो चल रहे हैं, ना उनकी कोई यूनियन है, ना स्टैग यूनियन, कुछ भी नहीं है। वो उनको पता था कोई चीज नहीं उन्होंने बनाई हुई, सिर्फ ये अपना अपना सोचते थे सारे ही। मैं खाली पक्षियों की बात नहीं कर रहा, इसमें दूसरे भी अब आ जाते हैं, सबको ले लेता हूँ। अपना अपना सोचते थे, अपनी अपनी दिहाड़ी लगा के अपना अपना करके, तो कहते थे हमें क्या लगे। जहरी बात है, बाहर से आके किसी ने वो कहते हैं कब्जा कर लिया है, और वो उन्होंने उन्होंने वो करना था, और वो क्या कहते हैं वो आके वो बिजनेस कर रहे हैं। पहले उबर ने किया है, अब एसएम आ गई है। 600 गाड़ियों का सवाल नहीं है कि 600 गाड़ियां आई हैं वो 1000 भी लेके आ सकती हैं, और ये भी नहीं है सवाल कि वो कामयाब होते हैं कि नहीं होते। उनके पास पैसा है, उन्होंने रखा है इसके ऊपर 30,000 कर दिया। अब वो उन्होंने अपने पहले 26,000 से शुरू हुए हैं, 30,000 फर्स्ट उतना है। पहले ये छोड़ा गया मार्केट में क्योंकि मैं तो वहां गया हूँ और भी दोस्त किए हैं, मैंने वहां जाके पूरा वो पढ़ा है, बात की है, और वाकई ऐसा ही है। 30,000 उन्होंने तनख्वाह देनी है और कस्टमर उन्होंने देना है, उनके पास अभी है या नहीं है। आपने अपने 8 घंटे या 7.5 घंटे जो आपके हैं दिन के, वो आपने लगाने हैं, उसके बाद जो है ना वो आपको 30,000 मिलेगा। और उसके पास कुछ ज्यादा काम कर रहा है या एक्स्ट्रा काम कर रहा है वो उसके कहते हैं डेनिश में ते ओनी, वो बात की बात है। अभी वो 30,000 दे रहे हैं, कामयाब होते हैं या नहीं होते, ये कोई ऐसे नहीं है लोगों, वो जो बड़े बड़े जिन जो बड़े बड़े फंड है, ये फंड होते हैं, ये बड़े बड़े मीर लोग होते हैं, ये इनके पास ये पैसा नहीं सिर्फ होता, वो कई बिजनेस शुरू किए थे, बिलियनियर होते हैं डॉलरों में। और ये यहाँ एशिया में, ये एशिया से आए हैं, एशिया में ये ऑलरेडी चल रहा है, बड़ा पैसा है इनके पास। उन्होंने इधर फेंका है, यूरोप में फेंका है पैसा, यूरोप के कुछ मुल्कों में, और वो उन्होंने 100% कामयाब होना है। उन्होंने बंदे हायर किए हैं, उन्होंने डेनमार्क से क्या कहते हैं जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है जो सारी डेनिश है वो तकरीबन सारी वो ली है, उन्होंने पूरा कानून पढ़ा है, पूरा उसका पहले सर्च किया है कैसे करना है क्या करना है, वो सारा करके होमवर्क, उसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ियां जो उनकी अपनी है वो यहाँ पर लॉन्च की हैं। और 600 गाड़ियां या 800 गाड़ियां ये कोई कोई कोई भी है वो मैटर नहीं है, लेकिन वो उनको पता है, उन्होंने ये एक मार्जिन रखा है कि हमने ये पाया तक मील तक 6 महीने में पहुंचाना या साल तक। वो हर हर हर हर उस क्या कहते हैं जो बड़ी कंपनी को शुरू करती है ना, उन्होंने एक मार्जिन रखा होता है, इसके अंदर हमने ये सारा कुछ करना है। और फिर वो, और ये भी कहा गया है, नहीं नहीं जी, ये ऊबर उसका मुकाबला है यार, जो भी है आप, और मैं आपको ये भी बता दूं, एसएम ग्रीन खुद ही वॉनमैन है, ऊबर वॉनमैन नहीं है, ऊबर में आप वॉनमैन खुद बनते हो, उनका ऐप है। ऐप और छाक साफिया कंग फेमस खालवा हो गई, डैन हो गई, आमा हो गई, जो भी हो गई, वो एक लहदा चीज है, ऐप एक लहदा चीज है। ऐप सब लोगों ने अपना लिया हुआ बना, लेकिन ऊबर ये एक इंटरनेशनल ऐप है। वो ऊबर ऐप जो है जिसने बनाया था, जिस आदमी ने, उसने वो ऐप बनाने के कुछ अरसे बाद, क्योंकि वो सिर्फ अमेरिका में चलती थी वो टैक्सी ऊबर, उसने वो बेच दिया था। उसको फिर किसी बिजनेसमैन फंड को, बिजनेस जो जो रन, उन्होंने रनिंग बिजनेस ये खरीद लिया, ये ऊबर, ऊबर से खरीद लिया जिसने ऐप बनाया था। वो सिर्फ ऐप बनाता था, वो उसको चला नहीं सका था उस तरह पूरी दुनिया में, वो सिर्फ अमेरिका में चल रहा था। उससे खरीद लिया था उन्होंने 2008-09 को, ये अमेरिका में आया था, 2016-17 को ये खरीद लिया गया था। उसके बाद ये फिर बाहर निकले थे पूरी दुनिया में। ये तो ऊबर की कहानी होगी मुख्तसर। अब एस एम ग्रीन, मैंने फिर कहा कि वो ऐसे नहीं बैठे हुए, वो सारा कुछ होमवर्क करके आए हैं, अब उन्होंने ये काम करना है। और यहाँ से आपकी जो बाला दस्ती, जिसको मैं कह दूं, मैं ये जरादारी नहीं कहूंगा, बाला दस्ती जो थी हमारी वॉन मैंने की, वो आपकी इसको ले पॉइंट को मैं, और ड्राइवरों का कुछ नहीं जाएगा। वहां पर जो ड्राइवर काम करेगा वो फर्स्ट लाइन पे काम करेगा, उसको तो फायदा है। कस्टमरों की तो बात जो कहते थे शाह, वो तो है ही है, कस्टमर को फायदा है वो तो होना ही है, वो तो ऑलरेडी उनको पहुंच रहा है उबर से भी और बॉल्ट से भी। अब इनका मुकाबला होगा, वो एक लहदा चीज है, ये प्राइसें कम करेंगे प्राइसें करेंगे, लेकिन ड्राइवर जो उसमें चला रहा है जाके, वो वहां पर वॉनमैन आपके खत्म हो जाएंगे।
1: शायद वो वॉनमैन, अपना कहना शायद ये गाड़ियां शहर में पार्क कहां होगी, ट्रैफिक का निजाम कैसे चलेगा, इतनी गाड़ियां आ जाएंगी कोपेनहेगन में।
3: जी मैं ये आपको बताता चलूं कि जब शाक्षा नेऊन थी 2018 तक, तो अब तब वो, आपने ये बार का कहा इतनी ज्यादा गाड़ियों का, तब वो उनके कंट्रोल में थी, डैनिश उसके पीछे थे, डैनिश बड़े वॉनमैन पीछे थे, स्टैक फ्रेनिंग थी वॉनमैनों की, एक तो ये क्लियर हो गया। तब गाड़ियां आपकी होती थी 1500 से लेकर 1800 तक रोड के ऊपर, वो उसका मतलब था कि वो हर साल या दो साल या साल के बाद स्टैटिस्टिक देखते थे कि कितने कस्टमरों की हमें जरूरत है। और उस वक्त शाह साहब को पता था, जब वो चलाते थे तो वो एक ग्रीन रंग का एक बिलिंग नंबर होता था, वो आपको मिलता था और क्यू में आप लगते थे। और तब ये हमारे पक्ष से नहीं, हम लोग रोते थे यार सानू बिलिंग नहीं मिलता, वो पागल थे, क्यू में लगे थे, बिलिंग क्यों दें, बिलिंग इसलिए नहीं वो देते थे कि आपको जरूरत नहीं है रोड के ऊपर, गाड़ियां ज्यादा हो जाएंगी। जब आप देखें इस टाइम अभी उसकी, उसको ग्रीन को छोड़ दें, वो भी 10-15-20 गाड़ियां रोड पे अभी आई हैं अभी 2-4 दिन पहले, और पहले उसको भी पीछे रखें, इस टाइम 4300 गड्डी है पार्टी कोपेनहेगन दे बेच, डैन टैक्सी ऊबर और ड्राइवर और आमा और ये बॉल्ट और ये सारा कुछ, ये अपना खिपना चकसा मिला के आपकी तकरीबन 4300 गड्डी है। और हर रोज मुंशेरिंग होके आपकी 10-15 गाड़ियां रोड के ऊपर आ रही है, क्योंकि वो ओपन कर दिया हुआ है। और उसमें ज्यादातर, फिर मैं कहूंगा, ज्यादातर पाकिस्तानी यंग जनरेशन है जो आ रही है। ये किस काम पे लगा दी है, आप यार डेनमार्क में पढ़े लिखे लोग हैं, ये यंग है, चलो शाह साहब की समझ आती है मुझे, चलो मुझे किसी ओवर 60 साल के या 50 साल के बंदे की जो काम कर रहा है वो भी समझ आती है। मैं ये अब तंज नहीं कर रहा, मैं ये अपनी कौम को बता रहा हूँ कि यंग जो लोग हैं कि ये कोई फ्यूचर नहीं है अब आपका, देख लिया अब आपने, ये अब ग्रीन एसएम भी आ गई है, उसके नीचे लाके आप काम करेंगे, टैक्सी चलाएंगे, जो बड़े चला रहे हैं ठीक है, उनके पास कोई वेल नहीं है, कोई पेंशनिस्ट चला रहा है कोई वेल नहीं है, लेकिन ये जो यंग हमारा तबका जो देखा है, शाह साहब ने भी देखा है, मुझे भी पता है, शाह साहब को भी पता है, आया मैं देख के हैरान हो गया, मैं भाई यार ये डैनिश बोल रहा है, अच्छा भला लड़का है 24-25 साल का, फुल काम कर रहा है, क्या हो गया इनको। उसके बरक्स यहाँ पर आपके बंगाली हैं, उसके बरक्स आपके इंडियंस हैं, यहाँ पर सिख है कम्युनिटी, श्रीलंकन है, नो वे, कोई नहीं, जो पहले थे चंद शाह साहब को पता है जो चला रहे हैं 20-25 साल से, वो कुछ हैं कुछ चले गए हैं, और ये नया कोई नहीं आया। उस जो है जो जो जो दूसरी जो ओवरसीज हैं, जो दूसरे मुल्कों के, और उसमें बालकन के और मैकडोन, योगोस्लाविया और मैकडोन, ये बहुत ज्यादा थे चलाते, ये भी नए कोई नहीं आए, ये भी निकल गए हैं। लेकिन हमारे तो कहते हैं कि असी ना टैक्सी छटनी है ना असी पिज्जा छटना है, यार कोई आगे बढ़ो, कोई पाकिस्तान को भी कोई नाम हो, नाम ही कोई नहीं है आपका कहीं भी, डेनमार्क में तो फिलहाल कोई नाम नहीं है किसी का।
1: लेकिन इसमें ये भी शामिल करना था पाकिस्तानी सियासत भी नहीं छटनी,
3: वो तो चल एक پاکستانی سیاست بھی نہیں چھوڑنی, یہ بھی ٹھیک ہوگا. چلو شاہ صاحب کو موقع دیں, ان کو بھی جانا ہوگا.
1: آپ نے شاید کی باتیں سنی, اس نے بڑے تفصیل سے باتیں بتائیں, آپ کرتے بھی رہتے ہیں, آپ کیا کہیں گے شاہ صاحب؟
2: جی میں تو بالکل بہت خوش ہوں شاید کی باتیں سن کے, کہ میرے بات اگر کوئی یہاں پہ اپنی عوام کو کوئی ایجوکیٹ کر رہا ہے تو وہ یہ بالکل صحیح طریقے سے کر رہا ہے. دیکھیں اب فیوچر کیا ہو گیا, ہم فیوچر دیکھیں گے. فیوچر یہ ہو گیا ہے کہ جیسے گرین ٹیکسی نے ڈرائیور جن کو شوق ہے گاڑی چلانے کا ان کو فکس پے کر دیا ہے. اب جب یہ فکس پے ہو گیا تو اس میں ڈرائیور کو واقعی ہی بہت زیادہ سہولتیں ملیں گی. لیکن جو فیوچر ڈارک ہوا ہے وہ ہوا ہے ان کا, جنہوں نے وون مین, اپنے آپ کو وون مین سمجھتے ہیں لیکن وہ وون مین نہیں ہے. ان کو ایک ٹریلیل سے ایک اجازت نامہ ملا ہوا ہے, جیسے کہ ہم نے 10,000 دفعہ بتایا ہے کہ جیسے آپ انشورنس ٹریلیل سے لیتے ہیں کہ بھائی مجھے نمبر پلیٹ چاہیے, میں آپ کے پاس انشورڈ ہوا, اور جس دن آپ کی انشورنس ختم ہو جاتی ہے تو وہ پولیس کو کہہ دیتے ہیں, اسی وقت آپ کی گاڑی کو روک کر وہ نمبر پلیٹ اتار لیتے ہیں, آپ کا ٹریلیل سے ختم ہو جاتا ہے. یہ جو نیا اوبر قانون بنا تھا, شاید میں آپ کے لیے بھی آپ کو بات بتا دوں کہ میں اس چیز کے مخالف تھا کہ اوبر یہاں سے باہر جائے. میں یہ کہتا تھا کہ اوبر کو یہاں رہنا چاہیے. اب وہ آگے ہیں, یہ امیر آدمی ہیں, انہوں نے سیاستدانوں کو بھی خرید لیا, انہوں نے مارکیٹ کو خرید لیا ہے, تو اب ان کو رہنے دیں, ان کی مخالفت نہ کریں. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنی وومنشپ جو ہے, جو تو آپ کے پاس جیسے لندن میں بلیک کیب چل رہی ہے, جرمنی میں چل رہی ہے ایسی, تو میں نے کہا وہ اس کے ساتھ اوبر بھی چل رہی ہے, دوسری کمپنیاں بھی چل رہی ہیں, تو آپ ایسا کریں اپنی وون مین شپ جو ہے پرانی اس کو رکھیں, اور باقاعدہ کمیون جیسے ہیومن نیون دیتی تھی ہیومن نیون رہے, اور وہ جو ہے وہ جو بیولنگز ہیں یا وہ ٹیلال سے جو ہے وہ ایشو کریں. لیکن انہوں نے اوپن مارکیٹ کر دی, ہم لوگ لالچ میں آئے کہ ہم تو بہت زیادہ گاڑیاں رکھیں گے, ان کو بیچیں گے اور اس طرح, لیکن آگے سے الٹی جوتی جو ہے وہ ہمارے چہرے میں پڑ گیا. میں 50 سال سے اوپر میں نے ٹیکسی چلائی ہے ڈنمارک کے اندر, اور میں تو اس چیز سے دکھی ہوں کہ اس وقت ایک وون مین جو تھا, ایک کیب آنر جو تھا, اس کی بہت بڑی ریسپیکٹ تھی سوائے عدالت کے, ان کا وہ گرین نمبر پلیٹ کوئی فیان نہیں کر سکتا تھا. اب جو ہے یہ صرف جو جس کمپنی کے اندر آپ کام کر رہے ہیں وہ جس وقت دل چاہے بند کر دیں, آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے, یہ ڈینش قانون ہے. تو سب سے بڑی شاید انہوں نے یہ بات کی کہ جب اوبر کو انہوں نے کہا کہ آپ اول آڈیٹ ہیں اور آپ یہاں سے چلے جائیں, یہاں کی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا, تو اس وقت اوبر جو تھی وہ ڈرائیور کے رنگ میں یہاں پہ آلریڈی کام کر رہی تھی, اور اس کے بعد دوسری سیلس کے بھی اسی طریقے سے ایپ پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا. یہ ان کی من پر انہوں نے کیا کیا کہ ٹریفک منسٹری نے اسی دن جس دن اوبر کو بین کیا گیا, اس کا ہائپرو پریس پہ انہوں نے کنٹرول جو ہے کو بند کیا, اس کا جو ڈائریکٹر تھا وہ ٹریفک منسٹری میں اسے جاب لے لی, اور وہ اس کو ڈائریکٹر ٹلسون, ٹریفک ٹلسون کا جو تھا اس کو اپنا ڈائریکٹر بنا دیا گیا. اس کے نیچے یہ سارے لاس وون اور یہ واو وون اور یہ ساری ٹیکسی سیلس کے اس کے نیچے آتی تھی. اس نے قانون ہی ایسا بنایا, پھر بھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو 2019 سے لے کے 31 دسمبر 2023 تک ہم آپ کو یہ دیتے ہیں کہ اگر آپ وون مینوں کو اس قانون کے کو پسند نہیں تو آپ آئیں ہمارے ساتھ بات کریں, ہم اس کو چینج کر دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں یہ قانون زیادہ منظور ہے, کیونکہ اب ہر کوئی آدمی جو ہے وہ ٹیکسی لے سکتا ہے. تو اس کی وجوہات جو ہیں وہ اب سامنے آ گئی ہیں, اور اب بالکل آپ کی بات صحیح ہے, یہاں پہ میں تو اپنے جتنے پرانے وون مین چل رہے ہیں یا نئے یگسٹر, ان کو یہ کہوں گا کہ خدا را مت بنے وون مین, بلکہ آپ کو اگر فیسٹ جاب ملتی ہے, شوفر ملتی ہے, تو وہ آپ کے لیے زیادہ سیکور ہے, کیونکہ یہاں اگر آپ کی گاڑی تھوڑی سی سپیڈ اپ ہوئی نئے قانون میں آپ پھنس جائیں گے, اور وہ آپ کی ٹیکسی بھی ضبط کر لے گا. بہت سارے وون مینوں کی یہاں ٹیکسیاں ضبط بھی ہوئی ہیں, تو وہ آپ کو لاس ہوگا, آپ کو اکنامیکلی لاس ہوگا. یہاں آپ نے شوق پورا کرنا ہے, جائیں فکس تنہا لے, اگر آپ اوور ٹائم کریں گے تو وہ آپ کو بونس بھی دیں گے. تو میرا خیال میں کہ یہ جو گرین ٹیکسی آئی ہے, मैं इसकी हमायत तो नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये हमारे ड्राइवरों के लिए बहुत ही महफूज है।
1: और चलें शाह साहब, आगे हमें मियां मुनीर साहब बड़ा तजुर्बा है, एक ब्रांच के ये दो बार जो है वो चेयरमैन रहे, सदर रहे, और उनको वसी तजुर्बा है पिछले कितने दहाइयों से। मियाँ साहब आपको अदर आपकी आवाज़ पर एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं, क्योंकि आप यंग सियासतदान भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, और इस फील्ड को बहुत अच्छी तरह समझते भी हैं।
4: जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुक्रिया रहा साहब, सबको बहुत बहुत सलाम,
2: आप वालेकुम सलाम को,
4: सुनने वालों को। मेरे मोहतरम शाह साहब, पिछले कोई आधा मिनट सुन रहा हूँ इनकी गुफ्तगू, आपका मौजू मैं समझ गया हूँ स्टार्ट में, तो बहरहाल आप सबको बहुत बहुत सलाम, अल्लाह ताला सबको खुश रखे।
1: शुक्रिया मियां साहब, आपका बड़ा वसी तजुर्बा इस फील्ड में, नई एक आ गई है टैक्सी, इसका फायदा होगा, नुकसान होगा, ड्राइवर को फायदा होगा, पब्लिक को फायदा होगा, शहर में ये गाड़ियां आ जाएंगी, पार्किंग के मसाइल होंगे, क्या ये जो जॉब मिलेंगे ये पक्के जॉब होंगे, ये ना दो दिन किया तीसरे दिन निकाल दिया। तो मियां साहब ये जब चीज़ें आती हैं, ड्राइवर अपनी टैक्सी छोड़कर मुलाजमत इख्तियार करता है, तो बहुत सारे हकूक भी होते हैं और बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। जी मियां साहब आप बताएं हमारे सामने नाज़रीन को।
4: जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें ट्रांसपोर्ट, टैक्सी, बसेस, जो भी पुराने ज़माने की चीज़ें, एक टांगा से लेकर और अब जो चीज़ों में तब्दीली आई है, इतना मॉडर्न ज़माना, हमने खुद टैक्सी फील्ड में जो देखा शाह साहब ने मैंने, कि किस तरह की गाड़ियां थी, कौन से उसमें सिस्टम थे, रेडियो सिस्टम था, डिजिटल सारा कुछ है, आईटी, कंप्यूटर, सारी चीजें, आप अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत सारी सहूलतें भी हम इंसानों के लिए। अब टैक्सी की जो बात अब कर रहे हैं, टैक्सी एक जरूरत है और चलती आ रही है और चलती रहनी है, इसमें वो दूसरी कोई बात ही नहीं है। ट्रांसपोर्ट, इंसान एक दूसरे के बहुत नजदीक हो चुका है, कभी भी इतनी टैक्सी नहीं इस्तेमाल होती थी जितनी अब होती है, कभी भी इतना क्या कहते हैं आप ट्रेवलिंग नहीं होती थी जितनी आज। अगर आप देखें फिगर जो आप पढ़े किसी भी एयरपोर्ट के, कोपेनहेगन एयरपोर्ट के, तो एक एवरी मंथ एवरी ईयर आपको उसमें बहुत बड़ा इजाफा मिल रहा है, इसी तरह टैक्सी इस्तेमाल करने वालों में। डेनमार्क में मैं बिल्कुल इस फील्ड में बहुत पुराना हूँ, शाह साहब मेरे उस्ताद भी हैं और मेरे बुजुर्ग भी हैं, मैंने पहले दिन से इनके साथ टैक्सी शुरू की थी। और टैक्सी में यानी के जैसे मैंने पहले अर्ज की कि कितनी तब्दीलियां आई, बहरहाल इन जो फिगर की हम बात करेंगे, नया जैसे एक ग्रुप आया उसकी बात करेंगे, तो फिर इस तरह ही है कि कोपेनहेगन में किसी जमाने में 1800 और कभी 2100 फिर 1800 फिर 1850 इस फिगर में बहुत अरसा टैक्सीज रही, वो जरूरत थी, वो कंट्रोल था, वो निजाम था, ये 13 कमूनों जो है इनका। फिर वक्त के साथ साथ कुछ तब्दीली आई, आज से कोई 5-7 साल पहले यहाँ ऊबर आई, या 4-5 साल पहले डेनमार्क का एक टैक्सी सिस्टम है, एक कानून है, पहले भी इस पर बात हुई है और आज भी है। अब आज भी ईयू से हटकर, बाकी लोगों से या मुल्कों से हटकर, डेनमार्क का एक अपना शख्सी लॉ है, जो उसे फॉलो करे उसमें तब्दीलियां आई हैं, जो उसे फॉलो करेगा वही यहाँ टैक्सी चला सकता है, और उसमें कुछ बिल्कुल कंडीशंस हैं। लेकिन जो हुआ ये है, मैं अनफॉर्चुनेट कहूंगा, बदकिस्मती से उसमें जो तब्दीली आई, उसमें ये मसलन ऊबर यहाँ आ गई, बोल्ट यहाँ आ गई, अब ये नई जो कंपनी आई इसकी हम बात करेंगे, इसकी वजह से अब हम देख रहे हैं। मैं कल की बात करता हूँ, मैंने कल मैं यानी के कल शाम को टैक्सी मैंने चलाई है, मैंने देखा है कि रोड पर जब इंसान हो उस फील्ड का हो तो फिर वो देखता कि क्या हो रहा, यानी कि सर्विस किस तरह दी जा रही है। और शाह साहब आप देखें कि हुवाक्स गेट उसे कहते हैं, कफी भिक्षा, उसके सामने मैं हूँ, गुजर रहा हूँ, तो ये दो तुर्की खड़े हैं एक लाइन में, जनाब इस तरह हो गई निकल गई मुंह से बात, कोई भी हो सकता था। उन्होंने मुझे रोका तो एक बंदा जो उनके साथ जाना चाहता था वो मुझे कहते हैं कद्दश आप ले जाओ, इसलिए कि वो छोटा टूर था। इस तरह नहीं होता था पहले। ये जो चीजें मैंने इसलिए मिसाल दी कि अब वो लोग जो ना सर्विस माइंड थे ना उन्हें वो उस कानून या उस निजाम को समझते हैं या समझना चाहते हैं, अब वो फील्ड में आ गए, अफरा तफरी फैल गई है। जिन लोगों ने इसे एज एक बिजनेस, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की थी, एक अच्छा निजाम बनाया था इस मुल्क के अंदर, उन चीजों को वायलेशन भी की जा रही है, उनमें बहुत सारा अपना भी वो नुकसान कर रहे हैं और दूसरों का भी नुकसान कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। ये यहाँ के पॉलिटिशियन ने, आप बिल्कुल बात करते रहे, मैं सुनता रहा, मैं भी जानता था, मेरे पर एक जिम्मेदारी भी रही। हमने देखा कि यानी कि यहाँ जिस तरीके से ये दूसरी कंपनीज आई है उनके लिए क्या कंडीशंस हैं, वो पेपरों पर तो वो पूरी कर रहे हैं जो यहाँ का वो हमारा टैक्सी लॉ है, जिसके लिए ड्राइवर के लिए कंडीशंस हैं और वन मैन बनने के लिए। लेकिन इन साइड में जानता हूँ कि उसमें बहुत सारी दो नंबरी हो रही है, वायलेशन हो रही है, गलत हो रहा। ड्राइवर सर्विस मैन नहीं है मोस्ट ऑफ देम, मैं कहूंगा थोड़े नहीं बहुत सारे। अभी हमने देखा रॉस्किल फेस्टिवल था, मैं भी फील्ड में था कि आप देखें कि मिसाल के तौर पर, फिर मैं मिसाल अपनी देता हूं कि एक बंदा मेरे पास आया मुझसे 11 लोगों से पहले जाकर, थोड़ा सा पाज था, स्टिक के साथ चलता था, पहले 11 लोगों ने उसे बिठाया नहीं गाड़ी के अंदर, अपनी टैक्सी के अंदर, इसलिए कि उसने वहां से रॉस्किल स्टेशन पर जाना था जो लेस देन 100 क्रोन का टूर था। सो ये चीजें जो है ये है वो कि जो बेतरतीबा और बगैर कोई यानी के सिस्टम को सही मैनों में वो ऑर्गेनाइज करने की या बनाने की कोशिश या एक सिलसिला था, उससे हटकर चीजें चलेंगी।
1: अब इसका हल बताएं।
4: इसका हल ये है कि इस इन चीजों में यानी कि हम तो अपने कंपनी के अंदर भी बात कर रहे हैं, टैक्स ऑफ ईयर का फेमस हाउस जो है उसकी तो एक कंडीशन है अभी तक, ड्राइवर जो है एक तो अथॉरिटी की तरफ से आपको लाइसेंस जो लेना है, फिर वो जो हमारा फेयर कोड होता है, उसके बाद शाह साहब भी जानते हैं, सब जानते हैं, हम खुद टैक्सा के अंदर एक टेस्ट लेते हैं जिसमें हर ड्राइवर को और ड्राइवर ही पहले बनता है कोई या वॉनमैन बनने से पहले भी सेम कंडीशन है कि वो यानी कि पहले टेस्ट देता है जिसमें जुबान का होता है, कम्युनिकेशन जरूरी है। हम डेनमार्क में रहते हैं, डेनिश आनी चाहिए।

0: है कि और उन्होंने तनख्वाह वगैरह फिक्स, और वो अच्छी अमाउंट है, मैं बिल्कुल समझता हूँ सारा सिस्टम, लेकिन ओवरऑल ये क्या होगा? ऊबर का किसी को पता था आज से 20 साल पहले? ऊबर शुरू हुई अमेरिका में, वो यूरोप में आ गई, इंग्लैंड में उसने यूरोप में सबसे पहले आए, आस्ता आस्ता फिर आज यानी कि तकरीबन ऑलमोस्ट हर मुल्क में चल रही है। उसके पीछे कौन है? उसके पीछे एक बहुत बड़ा अमीर आदमी, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उन्होंने सिस्टम को मार्केट को कैचर कर लिया। आस्ता आस्ता यानी कि होगा यही कि वो सारी सिस्टम को कैचर कर लेंगे, फिर वो सर्विस जो मैंने कह दी है पहले जो इस वक्त चल रही है, और फिर यानी कि वो मार्केट को कैचर करके फिर ना वो डिस्काउंट रहेगा ना वो सर्विस रहेगी, सिर्फ एक ही चीज रहेगी कि कितनी गाड़ियां हैं और कितनी परसेंटेज वो लेंगे। जो आज वो लेट्स से 15% ले रहे हैं, कल को वही 25% लेंगे, जो किसी और ने नहीं पे करनी, मैंने और आपने एज ए कस्टमर पे करनी है। इसी तरह एक बंदा जो वियतनाम का है, जो बहुत बड़ा अमीर आदमी है, ऐसे दुनिया में लोग हैं जिनके पास इतना पैसा होता है, उन्हें पता नहीं कि कहाँ क्या उसे किसी ने आइडिया दिया है। उसने जाकर एक कंपनी से एक कोरियन कार खरीदी है, जो डेनमार्क की टैक्सी का मतलब है कि कार साइज जो कंडीशन है वो भी जरूरी है वो पूरी करती है। वहां से उसने बहुत बड़ा फेयर लिया है, फिर वो सबसे पहले उसने शुरू ही दुनिया में कहीं और नहीं है ये ग्रीन टैक्सी, उसने एक आइडिया अपना बनाया कि यूरोप जो है उसके अंदर मैंने जाना, क्योंकि यूरोप का एक सिस्टम है, यहाँ एक जिस तरह क्या कहते हैं एक निजाम चलता है, निजाम जिंदगी चलता है, जिसके उस जिसकी जरूरी जरूरियात है, उस मार्केट में उसने जाना। वो हॉलैंड पहले गया, वहां के कानून जो है उसे इजाजत नहीं मिली, तो उसने जाहिर प्रोफेशनल तरीके से उसने पढ़ा कि ये डेनमार्क की चीजें जो है मैं पूरी कर सकता हूँ, यहाँ जरूरत भी शायद है, तो उसने डेनमार्क आकर अप्लाई किया, उसे इजाजत मिल गई है। अब वो टैक्सी जो है यहाँ 600 टैक्सी की तैयारी में है फिलहाल, जहां तक मुझे पता है 400 साढ़े 300 गाड़ी जो है वो तैयार खड़ी है, जिनमें से अभी तो चंद एक ही चल रही है, हमें पता आ जाएंगी वो भी रोड पर।
1: लेकिन मियाँ साहब, ये
0: बॉस
1: कोपन एग्र में होगी, पार कहाँ करेंगे?
0: पार्क जो टैक्सी पार्क होगी रोड पर नहीं चलेगी, वो तो बहुत बड़ा घाटा होगा, नुकसान होगा, इन्होंने चलना है। टैक्सियां तो मतलब पार्क तो फिर यानी के थोड़ी देर के लिए वो घूमे फिर रहे हैं, जैसे हम घूमे फिर रहे हैं, टैक्सी स्टैंड है, बुकिंग हो रही है, होता ही है। राय साहब मैं आपकी बात समझ गया हूँ, चले आज आराम से बात कर लेते हैं। कोपनहेगन टैक्सा की जो हमारी गाड़ी है ना, मसल 800 है, वो 800 पार्क नहीं होती, उनमें से लेट्स से 200 गाड़ी पार्क होती है मुख्तलिफ घरों में, जैसे मेरी बार खड़ी है, बाकी जो है वो रोड पर होती हैं, जिनमें से लेट्स से 60% जो है जो चलती हैं वो बिजी होती हैं कस्टमर के साथ है। सो गाड़ी याद रखें, गाड़ी गाड़ी जहाज और वकील, वकील का कैलेंडर बिजी रहे, जहाज जो है ग्राउंड पर ना हो, और टैक्सी जो है वो कस्टमर के बगैर अगर खाली चलती हो तो नुकसान ही नुकसान है। मैं इसकी मिसाल आपको इस तरह दे सकता हूँ।
1: मियाँ साहब, ये तो कारोबारी बात होगी ना, लेकिन उसने दाएं बाएं मुड़ना भी है, तो बाकी ट्रैफिक भी होगी, ट्रैफिक के मसाइल कैसे होंगे?
0: देखें ट्रैफिक के मसाइल तो फिर जिसे हम कहते थे कि कोपनहेगन एक बहुत खूबसूरत शहर है, इसमें वो लंदन पेरिस की तरह बाकी मुल्कों की तरह ट्रैफिक नहीं होती, यहाँ यानी के बड़ा एक सिस्टम बड़ा मतलब इजी चल रहा है, माहौलियात सारी चीजें बड़ा कंट्रोल है, तो वो तो चीजें फिर जाहिर है ट्रैफिक में नहीं रहेंगी, बिजी आवर में तो बहुत ज्यादा आप भी हम महसूस करते हैं। तो बहरहाल मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो ये चीज
1: चले
0: जानता
1: मियाँ
0: हूँ।
1: साहब, आपका वर्जन आ गया, शायद आपने बातें सुनी मियाँ साहब की, शाह साहब की भी, शाह साहब की भी तरह चलेंगे, क्लोज करेंगे बाद में वो, तो शायद आप किस तरह देख रहे हैं मियाँ साहब की बातों के, कोई और क्या इजाफा करेंगे आप?
2: राजा साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि आपका मुझे सवाल एक समझ आया थोड़ा सा मेरी भी जेन में, कि आपने कहा पार्किंग कहाँ होगी, वो छोड़ो मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ। एवेजो हॉलमन में जहाँ पर मियाँ

0: दफ्तर है उसके करीब ही कैनाल हॉल मैन है, उधर इनका बहुत बड़ा जहां पर इनकी 600 400 या 350 गाड़ियां खड़ी हैं, इससे ज्यादा भी खड़ी हो सकती हैं। और उसके बाद जो इन्होंने जो प्राइवेट पार्किंग जो उनकी अपनी है वही उधर भी 200 300 गाड़ी खड़ी हो सकती है प्राइवेट। अंदर टैक्सी है तो जैसे ग्रिल के अंदर जो फोर्ट बना हुआ है, जैसे फोर्ट खुलता है उसके बाद टैक्सी उनकी पार्क है, उधर पार्क करनी है आपने टैक्सी। जब मैंने इंफॉर्मेशन ली थी, जिस ड्राइवर ने काम खत्म करना है गाड़ी उधर पार्क करनी है और उसके बाद अपनी गाड़ी वहां से अगर लाया होगा चला के ले जानी है। और स्टार्ट में ये भी है कि इफ द आउच है, अगर उनके पास ड्राइवर नहीं है अभी गाड़ी में, तो वो गाड़ी अपने घर लेके जा सकता है। वो उसका पहले उसे पूछना होगा घर किधर है, किस नवाइयत का है, और वो उसकी जिम्मेदारी लेता है। ये सारी बातें उन्होंने की थी। और स्टार्ट में जो एक गाड़ी के ऊपर एक शोफेर है तो वो फिर गाड़ी घर लेके जा सकता है और गाड़ी को जो है ना उसकी देखभाल कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि आपने बात की कि मियाँ साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं और उनकी बातों से मैं मुतफिक हूँ। जहरी बात है वो इस ब्रांच से 40-45 सालों से मुंसलिक है, लेकिन ये जो चीजें हुई हैं ये आपकी मैं फिर बताऊंगा 66 ने उनके खत्म होने के बाद हुई हैं, या इसको खत्म करवाया गया है जैसे भी करवाया गया है। अगर वो खत्म ना होती तो आज इसका रिजल्ट कुछ और होता। और उस वक्त मुझे याद है मेरे वाले साहब भी बताते थे, हम छोटे होते थे बताते थे कि यार वॉनमैन थे वो भी, तो वो बताते थे कि 1600 गाड़ियां हैं, 1800 गाड़ियां हैं, 1700 हैं, कभी ज्यादा से ज्यादा 2100 हुई। तो तब और उनके कंट्रोल में इसीलिए था कि आपकी 13 कमोने थी कि इस तरह का जो है जो जो वो गांधना मच जाए। छोटा सा शहर है, छोटा सा मुल्क है, और आज देख लें 4000 के करीब गाड़ियां हैं इस वक्त, और उसमें और गाड़ियां भी होने जा रही हैं। और ये सारा खुद कुछ बकायदा मनसूबे के तहत किया गया है। कैसे किया है ये अभी शाह साहब ने भी बताया कि उन्होंने शुरू से ही ये तैयार कर लिया था। जो बंदे थे इसके अंदर डेनिश कुछ इन्वॉल्व, जैसे बताया कि हर मुल्क में हर चीज होती है, यहाँ पर जो है मिल बैठ के प्यार मोहब्बत से गायसा करा के दो दो 5-5 लाख के गायसे भी होते हैं, वो गायसे इस तरह के करवा के प्यार मोहब्बत के अंदर सारे काम लिए जाते हैं। और ऊबर ने ऐसे ही पैसा फेंका है। मेरी बात को आप जरा कहते हैं फॉलो कर जाएं। और इसी तरह जो दूसरी आई है ये भी ऐसी कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत के साथ आप बड़ी चीजें करवा लेते हैं उसमें। ये हमारे मुल्कों की तरह थोड़ा होता है कि वो डायरेक्ट ही हो जाए हर चीज में, तो वो फिर आपको जो है सब कुछ सामने आ जाता है। तो इसमें प्यार मोहब्बत के साथ जब चीजें होती हैं तो वो प्यार मोहब्बत के साथ उन्होंने करना था। और उन्होंने ये मोनोपोली खत्म करनी थी। डेनिश कुछ लोग थे, कुछ लोग इसके पीछे हैं, वो ये चाहते थे कि ये वोन मैनी की जो है ना फॉरनरों के हाथ से खत्म की जाए। इसमें हम माने वो कुछ लोग थे जिन्होंने ये करवा के, वरना उनको क्या जरूरत थी कि बाहर से गाड़ियां लेके आए, कभी ऊबर आ गई कभी आ गई। इसकी तो हम अच्छा भला चल रहा था, इसकी मतमल नहीं थी। उन्होंने देखा यार इतने 97% 98% फॉरनर हो गए हैं, 80-90% वोमेन सारे फॉरनर है, और ये पैसा सारा इनको जा रहा है। इसकी तकलीफ थी डेनमार्क में, खासकर मैंने ये देखा है दूसरे यूरोप के मुल्कों की बनिस्बत। मेरी ये राय है, हर की अपनी अपनी राय होती है, यहाँ पर वो एक लिमिट तक किसी फॉरनर को अमीर होने की इजाजत देते हैं। और ये इनका सिस्टम है, वो फिर सिस्टम हरकत में आ जाता है, वो उसके मुताबिक वो फिर वो सिस्टम जो है ना उसको करता है फॉलो, क्योंकि ये आपको कि आगे
1: तो शायद
0: एक
1: क्या ये आप लोगों के सिस्टम में भी कोई मीर जाफर मीर सादक थे?
0: ये तो मियाँ साहब बताएंगे बड़े हैं।
2: मैं राय साहब, मुझे नहीं पता था कि मेरे बुरखुरदार शाहिद भी हमारे साथ है। मैं शाह साहब की, मैं तो अभी उठा ही हूँ, जो सच्ची बात है, ये साथ में गर्म पानी पी रहा हूँ, आपने मैसेज लिखा तो हम हाजिर हो गए। शाहिद आपको बहुत बहुत सलाम।
0: जी मियाँ साहब, थैंक
2: मैं
0: यू।
2: आपको सुनता रहता हूँ, आपका तजिया, आपके जज्बात, आपकी सोच, मैं बहुत ज्यादा उसकी कदर करता हूँ। आप एक दलेर इंसान हो, हमेशा दलेरी के साथ बात करते हो, लॉजिक और पढ़े लिखे इंसान हो। मेरे तो आप बेटे भी
1: मियाँ
2: हो,
1: साहब
2: छोटे
1: हमारे
2: भाई।
1: शाह साहब उस दिल हैं।
2: नहीं, शाह साहब तो हमारे बड़े हैं, ऐसे ना करें। ये जो ना, ये जो शिक्षा का आप ना किया करें। मैं उस बरखरदार की, शाह साहब के हाथों मैं जवान हुआ हूँ, वो कहते भी होते हैं
0: राजा
2: शाह
0: साहब,
2: मेरे।
0: राजा साहब, मियाँ साहब की जो गोद नहीं है उसके ऊपर मैं, उन्होंने मुझे खिलाया हुआ है, पूछ लें अभी
2: मेरा
0: जाके।
2: ये मुझे फखर है, इस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए। शायद हम मिलते तो हम अपनी जगह हैं, लेकिन मुझे इस बात पर फख्र है कि शाहद जो है ये मेरे हाथों में बड़ा हुआ है, ये मेरी गोद में ये खेला है। ग्लेर शख्स वाये मेरे अंकल और इनके वालिद, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदरुस्ती दे, मेरे वो बड़े भी हैं और हमने इकट्ठे इस फील्ड में काम किया, शाह साहब भी जानते
1: अच्छा, अब
2: हैं।
1: मुझे पता चला
2: शायद
1: कि इतना समझदार क्यों है।
2: बस मुझे वो पीरों से, मेरे पीर हैं शाह साहब, उनसे ये क्या कहते हैं कि ये मिला सारा कुछ। शायद सबसे पहले तो इसके माँ बाप, जो अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदरुस्ती दे, और उसके बाद ऐसे ही होता है। और हम जैसे जो दरमियान में आप जैसों के साथ लड़के रहे तो फिर पीछे रह गए, तो बात तो कुछ इस तरह ही है। शायद आपने बिल्कुल ठीक बात की है, और राजा साहब ने 2-3 दफा पार्क की बात की है। अब राजा साहब शॉर्ट ये करता हूँ कि जो डेन टैक्सी है, ये ग्रीन वाली, इनकी तकरीबन 1600 गाड़ी हो चुकी है डेनमार्क में इस वक्त, प्लस इससे भी प्लस है मेरे ख्याल में, मैं आखिरी फिक्र नहीं जानता। लेकिन आपने देखा उनकी पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं है, बात पार्किंग की नहीं है, बात टैक्सी सिस्टम की है। टैक्सी एक जरूरत है, ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरत है। उसके अंदर जो बिजनेस हो रहा था, जो निजाम चल रहा था, जो सर्विस दी जा रही थी, जिसके लिए कुछ कंडीशन थी, उनको किस तरह वायलेशन उस पर हमें हुई है, और बाहर से आकर कंपनियां, उन्होंने इस सिस्टम को, इस बिजनेस को कैचर कर लिया है। पहले एक ऊबर था, फिर एक बॉल्ट था, अब एक तीसरा फार ईस्ट से आकर एक कंपनी जो है उसने यहाँ डेरे डाल ली। ये है हम लोकल्स के लिए, हमारे लिए एक एक प्रॉब्लम। और शायद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ऐसे ही है। अब मैं कल कुछ लोगों के दरमियान था जो जिनका 3-4 का कियोस्क के साथ तलक था, आपको पता क्या हाल है उनका, यानी कि बहुत बुरा हाल है। क्यों? कि ये सारी ठीक है ओपन, मैं कहता हूँ शायद कि जो चीज पब्लिक के लिए इजी हो, पब्लिक के लिए अच्छी हो, वही होनी चाहिए। लेकिन इसमें ये नहीं है कि आप कुछ लोगों पर कंडीशन लगा दें, दूसरों को आप रिलीफ दे दें, या निजाम इस तरह बना दें कि वो उनका सारा कुछ जो है वो जाता रहे और दूसरे सारा कुछ लूट कर ले जाएं। मैं यानी कि
1: जी
2: मेरी ये सोच है। जी
1: जी मियाँ साहब, आपने बात की, शाह साहब आपकी तरफ चलते हैं। शाह साहब, मियाँ साहब आपकी सरपरस्ती में, आपकी गोद से निकले, मियाँ साहब की सरपरस्ती में शायद गोद से निकले, तो ये चीज़ें तो बड़ी अच्छी हैं। ये 40-35 साल का जो तजुर्बा, ये बड़ी चीज़ होती है। ज़ाहिर है जब किसी इंसान के पास तजुर्बा होता है, उसने 30-40 साल पहले की जो चीज़ें हैं वो देखी होती हैं। नए आने वालों ने तो फिर वो 30-40 साल लगाएंगे तो वो देखेंगे। तो शाह साहब, इन सारी चीज़ों को आप किस तरह देख रहे हैं?
3: देखिए जी, सबसे पहले तो मैं एक आपको सच्ची इंफॉर्मेशन दूं कि जब मियां मुनीर डेनमार्क में आया था, ये बच्चा था और इसने अपने बचपन में डेनमार्क की सियासत को बड़ी गहरी नजर से देखा और बड़े इस समफोन को इसने समझना और सुनने के लिए इसने हर आदमी जहां पे भी ये एक्टिव हुआ, सोसाइटी हो या डेनिश प्रोग्राम हो, वहां इसने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो ये इसकी अपनी काबिलियत है और इसने सीखा है, और ये सीखने से आज ये लोगों को अवेयरनेस दे रहा है। अब मैं शायद को एक बात बताना चाहता हूँ। शायद देखे, जब मैंने काम शुरू किया था तो उस वक्त 70s के अंदर यह था कि डेनिश लॉ यह था कि तुम वो एक है मेयर देन इन वन मैन स्केल, एक है मेयर देन टू विविलिंगन। अच्छा, ये पूरे डेनमार्क का कानून था जिसके अंदर खाई ओल्सन ने उस वक्त सिग्नेचर किए हुए थे, और ये लॉ जो था वो ये ट्रैफिक मिनिस्ट्री की तरफ से था। लेकिन पूरे डेनमार्क के अंदर आप यूलैंड में चले जाए, वहां पे भी दो दो वन मैनों के पास गाड़ियां थी, लेकिन कोपनहेगन के अंदर जो थी, मियां मनीष साहब को भी पता है कि यहाँ पे टाक्सा मोटर में, दूसरी जगह कोडन में, आगे पीछे एक एक वॉनमैन के पास 50-50 गाड़ियां भी थी, 40-40, 30-30 गाड़ियां भी थी। तो यहाँ पे मोनोपोली थी, और ये चीज वो वाजिया कर रही है कि यहाँ पे क्रिमिनलिटी जो है वो, जैसे आपने कहा कि राइजे राइजे, ये सब कुछ यहाँ पे होता है। अब मसला क्या है? मसला ये है कि जैसे आप यंग हैं, मियां मनीर हैं, ऐसे और चंद एक दोस्त मिलके इन सारी चीजों को, मैं आपको सबूत देने को तैयार हूं, आप लोग आगे जाके एक्टिव हो, तो आज भी ये कानून जो है कोपनहावन टाक्सा, जो इस वक्त बची हुई सेंस के इस उबर और दूसरों से, आप लोग आज भी ये मसला पुट आप कर सकते हैं कि ये जो लॉज आपने बनाए हैं, ये लॉ फोर्सलेस जो है, इसको डिमोलिश किया जाए और आइन के मुताबिक जो है वो आप यहाँ पे वापस टैक्सी जो ह्यूमन नेमन है उसको लेके आए, ताकि यहाँ पे जो आने वाला जो फ्यूचर है, जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग जो है वो आबेसलूस होंगे, जो आजकल टैक्सी चला रहे हैं और ये जो एनसेट कर रहे हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे ये जो क्राइम चल रहा है, ये इसको रोकने के लिए आज अगर आप इकट्ठे ना हुए तो मुझे ये नजर आ रहा है कि ऊबर भी एनसेट करेगी, बॉट भी एनसेट करेगी, और ये जो ऑलरेडी है या कोई एक और कंपनी आ जाएगी, तो फिर यहाँ पे ये हो जाएगा कि 200 करोड़ का टूर कोपेनहेगन उर्बन गॉन या कहीं से भी 200 का टूर जो है मिलर चीज के अंदर आप लेके लुफ्तावन जाएंगे और ड्राइवर बेचारे का क्या असर हो रहा है। तो ये चीजें जो है, एक ड्राइवर जो है वो 30,000 में से टैक्स दे के हर एक चीज दे के तो वो 20-22,000 या 20,000 करोड़ में वो सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि उसको उसके अखराजात पूरे नहीं होंगे, उसने फैमिली लेके चलना है। तो इसके ऊपर ये बेहतर है कि आप लोग स्ट्राइक तो नहीं कर सकते, नए कानून के मुताबिक आप लोग जो है वो बाहर निकल के किसी किस्म की हड़ताल या स्ट्राइक नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग इकट्ठे होके कहीं समनिंग करके कहीं आप इकट्ठे हो जाए, वहां पे आप जो है एक सिग्नेचर लेके आप फलके सिंह के जो ओम्बुड्समैन है उनको और फलके सिंह की जो उल्वेल है आप उनको लिख सकते हैं कि ये जो कानून है जो हम एक्टिव टैक्सी शोफेर है या वोनमैन है, हमें क्या तकलीफ आता है और इसमें टैक्स पेयर के जो साथ ज्यादती हो रही है डेनमार्क में उसकी वजूहत क्या है। तो इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं, लेकिन क्या हम इकट्ठे हो सकते हैं?
1: पेंशन वाला 8,500 पे गुजारा कर सकता है तो ये 30,000 पे गुजारा नहीं होगा?
3: देखिए जी, जब पेंशन वाला ना उसको 8,000 के साथ उसको बोली यूज से मिलता है, उसको बड़ा कुछ मिलता है अगर वो सही तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज करे। तो यहाँ पे पेंशन वाला जो है वो 3-4,000 करोड़ जो उसकी फ्रॉड है उसके ऊपर वो खर्चा कर सकता है, रह सकता है। मैं खुद रह रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मैं मियाँ साहब या कहीं मेरे भाइयों के पास मैं बैठता हूँ तो इनको पता है कि शाह साहब की जेब में इतने पैसे नहीं है, ये पेंशनर है, ये मेरी रिस्पेक्ट करते हैं और मैं इनके लिए दुआ गो हूँ कि ये मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर मैं चोरी चुकारी करना शुरू कर दूँ और इसके असरात जो है वो दूसरे मेरे भाइयों पर बच्चों पर पड़ेंगे जो यहाँ डेनमार्क के अंदर रह रहे हैं, लिहाजा बजाय आप बुरा काम करें आप अच्छाई से रहे और सच बोलें, तो इस सच बोलने से आपको ज्यादा फायदा है।
1: प्रोग्राम यहाँ साहब खत्म करने से पहले आखिरी जवाब शायद भी दें और आप भी दें, तो चूंकि एक आखिरी सवाल भी कर लें। एक तो मैंगो फेस्टिवल बड़े धूमधाम से जो है वो मार्केट में मौजूद हैं, आ रहे हैं, एक आज कल में काफी प्रोग्राम होंगे, उसके बाद 14 अगस्त
3: भी आ रहे हैं,
1: इस पर भी बात करेंगे, नए जनरल्स बने, 4-स्टार बने, कुछ सुपर सीट, इस पर भी बात करेंगे, कश्मीर पर भी बात करेंगे, आप थोड़ी सी सियासत भी जो है वो जमहूरियत की तरफ भी, दूसरी जमहूरियत की तरफ बढ़ेंगे। जी मियां साहब,
0: मैं असल में जो सच्ची बात है, आप मैं फजर पढ़ के लेटा था तो मैंने ना अभी उठा, आपका मैसेज आया।
1: तो मियां साहब आप क्यों परेशानी में लेटे हैं? आप काम सदर नहीं रहे इसलिए?
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने ना 2 बजे ईसा मस्जिद में हमारी मीटिंग है तो जोर के फौरन बाद, तो मैंने वहां पहुंचना है। अभी कोई तैयारी नहीं, अभी तो मैंने नाश्ता नहीं किया, अभी नाश्ता टेबल पर आया तो मैंने, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने मैसेज किया, फिर शाह साहब और शाहिद की बातें सुनकर दिल खुश हुआ। मैं बड़ा शॉर्ट सा, मैं माजरत के साथ, उसके बाद बात हो सकती है, लेकिन ये जो शाह साहब ने अभी, शाहिद ने भी काफी बात कर दी, मैंने भी कर दी, ये सिलसिला इस तरह चलना। वो शाहिद की एक बात जो बिल्कुल मैं सेकंड करता हूँ कि ये ह्यूमन न्यून का जो कंट्रोल था, जरूरत के मुताबिक जो टैक्सी सिस्टम था और सर्विस देने का जो उनका एक पैमाना उन्होंने रखा था, ड्राइवर को चेक कर करने का, बैलेंस रखने का, वो अब टूट चुका है, वो खत्म हो चुका है। अब 2 नंबरी हो रही है, वायलेशन हो रही है, तरह तरह का तरीकाकार अपना लिया गया, जबान आती नहीं है, आगे पीछे से लोग इम्पोर्ट हो गए हैं और मार्केट जो है वो ओवर उसमें, यानी के तादाद से टैक्सीज आ गई हैं। ये है शॉर्ट इसका जवाब। बाकी आपने मैंगो फेस्टिवल की कही, मैं 2-3 में मैं गया हूँ,
2: और छह जो अब तक हो चुके हैं और दो तीन अभी और होने जा रहे हैं। अल्लाह ताला इन महंगों की तादाद बढ़ाता जाए और होम पाकिस्तान में, यानी कि एक बहुत बड़ी, ये मेरे तो इलाका जो है सर्दन पंजाब से मेरा मेरा तलक है, वहाँ के मैंगो जो है सारी दुनिया में मशहूर है। तो बड़ा अच्छा लगा कि इतने सारे लोग जो है हर मैंगो फेस्टिवल में आते हैं, जिधर भी हुआ, ब्रॉनबी हो या अर्बसनोड हो, बेलरोप हो, बहुत अच्छा लगा। अच्छी बात है, मैं भी उन लोगों में हूँ कि इंटरटेनमेंट हो, सोशल गैदरिंग हो, प्यार मोहब्बत से एक दूसरे से मिला जाए, एक्सचेंज की जाए अपनी अपनी क्या कहते हैं मसरूफियात, हालात, बात हो, तो ये एक अच्छी अच्छा साइन है। तो बाकी इंशाल्लाह कश्मीर की जो बात आपने की है, देखें कश्मीर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की शाहराग है और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और उस सिलसिला में जो है अपनी अपनी जगह जो
1: मून लीग का हुकूमत बनाने जा रही है।
2: देखिये वो मैं अब इलेक्शन की बात तो नहीं कर रहा, मैं तो कश्मीरियों की बात कर रहा हूँ जो सफर कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर, जिनके साथ जुल्म और ज्यादती हुई है पिछले 77 साल से, और जो सफर कर रहे हैं हर जगह, जो मुश्किल में है। मैं तो उनकी आवाज उठाता आया हूँ पिछले 40-45 साल से, वो ही उठाता रहूंगा। अब 5 अगस्त आ रही है, आपको भी पता, आप इन्वाइट भी होंगे, वो इंशाल्लाह हम तरीके कश्मीर जो है वो दिन मनाने जा रहे हैं। ये आपको पता कि इस दिन स्टेटस जो है हिंदुस्तान ने 370 जो है वो चेंज कर दिया, तो उस सिलसिले में इंशाल्लाह कल फाइनल होगा कि किस जगह, वो मेरी वर्कशॉप में होगा या कहीं किसी और जगह जो है वो इंशाल्लाह एक हम अपने अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ जगेती, और हिंदुस्तान की जो करतूतें हरकतें जो दुनिया के सामने आ चुकी हैं उन पर बात करने के लिए और अपना मैसेज देने के लिए इंशाल्लाह गैदरिंग होगी। उसके अलावा तो आपको पता ही है, बाकी चीजें अगर इजाजत है तो मैं ये कहूँगा कि 14 अगस्त इंशाल्लाह यौम आजादी का दिन है, बहुत सारे प्रोग्राम हो गए, एम्बेसी में प्रोग्राम होगा मुझे पता है, और उसके बाद इवनिंग में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम पाकिस्तान सोसाइटी कर रही है, स्कॉलोन जो मीटअप हूं है 9 से 13 जो जगह है उसे, वहां हम बहुत बड़ी गैदरिंग जिसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान से मेहमान आ रहे हैं, जिसमें इंटरटेनमेंट भी होगी, जिसमें इंशाल्लाह आप सब होंगे, तो हम मिलकर अपने प्यारे वतन का जो जश्न आजादी का दिन है वो इंशाल्लाह हम मनाएंगे। पाकिस्तान सोसाइटी ने आपको पता हमेशा अपना मरकजी किरदार अदा किया है, तो तैयारी उसकी सारी हो चुकी है, मेहमान जो है वो पाकिस्तान में वो भी तैयारी में है, और यहाँ हम आपकी दुआओं से आपके
1: सामने हॉल में मनाएंगे या खुली जगह?
2: नहीं जी, हमने इस वक्त जो है यानी कि हमने डिसाइड कर लिया है, क्योंकि वेदर और सारी चीजें जो है वो, और उस वहाँ कुछ कंडीशंस भी है, हम हॉल में मनाने जा रहे हैं। वो हॉल जो है वो तकरीबन 1000-1200 बंदे का हॉल है, और वो हमने भी बुक करवाया हुआ था, तो अब हमने हमारी मीटिंग थी, हमारे सदर साहब पाकिस्तान से तशरीफ ले आए हफ्ता पहले, कल हमारी फाइनल मीटिंग थी, तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम स्कॉटलैंड में जो हॉल है और उसमें करेंगे, और आप लोगों के तावन और अपने अपने प्यारे वतन के जज्बात में, प्यार मोहब्बत में, मिलीनत में, अल्लाह ताला का नाम, पाकिस्तान से मेहमान, ताज़ा तरीन सारी जो सूरत हाल है, और एक बेहतरीन किस्म का वहाँ डिनर भी होगा, और उसके बाद इंटरटेनमेंट के लिए पाकिस्तान से कोई सिंगर जो है अच्छे वो आ रहे हैं, क्वाली का प्रोग्राम भी होगा। ये हमारा
3: मियां साहब ये भी क्लियर कर देना कि ये फैमिली प्रोग्राम होगा।
2: हाँ शाह साहब, देखा ना, फिर आप बुजुर्ग है ना, ये फैमिली प्रोग्राम है, यहाँ फैमिलीज के साथ भी आप आए। मैं आपको पाकिस्तान सोसाइटी की तरफ से पर जोर दावत देता हूँ, हमारी बहनों बेटियों के लिए खास इंतजाम होगा, और जिस तरह भी अगर कोई फैमिली फैमिली के साथ बैठना चाहे तो उसके लिए हम उस तरह का भी, यानी कि एक टेबल की शक्ल में अगर आप बैठना चाहते हैं फैमिली के साथ, क्योंकि जगह काफी है, तो इंशाल्लाह शाह साहब ये
1: स्टॉल भी लगाएंगे?
2: नहीं जी, स्टॉल जो है वो हम नहीं लगाने जा रहे,
4: क्योंकि स्टालों का जो स्टाइल है वो और है, वो 6-7 पहले हो चुके हैं, 2-3 और होंगे। अभी मुझे पता है कि अलबसरून में ये हमारे चौधरी लियाकत साहब और इनका एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम हो रहा 8 अगस्त को, तो ये सारे प्रोग्राम तो हमारे हैं ना अपने, ये एक और तरह के हैं। पाकिस्तान सोसाइटी जो है वो मैं क्या कहता हूँ, मैं वो नहीं कहूंगा शाह साहब ने कल सुना था इस तरह, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, हम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, इस मुआशरे में जिसके अंदर रहते हैं, यहाँ की सूरत हाल से
1: देख साहब, मेहमान खसूसी जो डिसाइड हुए या नहीं?
4: जी बिल्कुल हो गया, मेहमान खसूसी डिसाइड है, आपको पता चल जाएगा अभी। हम सोशल मीडिया पर तो वो तो शाह साहब ने कह दिया, आपने हमेशा तावन किया, आपने मुझे थोड़ा सा मौका दे दिया, मेरे अपने जहन में नहीं था अभी, तो अभी टाइम तो बहुत है, हम सारी डिटेल जो है सोशल मीडिया पर भी
1: आएंगे। साहब आपको तो मौका मिलता है, आप हमारे नौजवान सियासतदान हैं।
4: जी आपने हमेशा मौका दिया और हम इसका भरपूर शुक्रिया भी अदा करते हैं, अपना हक भी समझते हैं, और आप हम सब मिलकर एक दूसरे का हिस्सा है, और इसी तरह पाकिस्तान हो, कश्मीर हो, डेनमार्क हो, यहाँ का मुआशरा हो। अभी हमने टैक्सी पर आप इतना दान दिया है,
1: मतलब मियां साहब आपने एक बात की है यौम यकजहती कश्मीर की, तो वो आपके दफ्तर में होगा या किसी बार पब्लिक प्लेस पे या एम्बेसी के सामने?
4: देखें 5 तारीख को शाम को 5 बजे प्रोग्राम होगा। अब मैं क्योंकि हम तरीके हमारे सदर साहब जो है अदील आसी साहब वो ठीक नहीं है, उनका एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, तो इसलिए ये चीजें थोड़ी सी डिले हुई हैं। अभी आपको पता हाल लेने गर्मियों की छुट्टियां थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह बंदोबस्त हो जाएगा। और ये भी
1: चले मियां साहब आपका बहुत शुक्रिया, शायद आप इसमें क्या इजाफा करेंगे?
4: मैं इजाजत चाहता हूँ अब, सॉरी मैं सुनूंगा आपको लेकिन मैं बात नहीं करूंगा।
1: चलें चलें ठीक है मियां साहब, आपका मौकफ आ गया मियां साहब,
4: थैंक यू सर, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, शाहिद साहब और आपको सब इसको बहुत
1: शायद आखिरी बात करें फिर शाह साहब आप शुक्रिया अदा करें, प्रोग्राम क्लोज करें।
0: जी राजा साहब आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कोई?
1: जी जी
0: जी क्या सवाल था आपका, मेरे जेहन से निकल गया।
1: इसका मतलब आप थक गए हैं?
0: नहीं नहीं नहीं मैं थका नहीं, मैं मियां साहब की बातें सुन के मजबूर हो रहा था, तो सारी बात बड़े हैं मेरे से, तो फिर उनकी जब बातों में मैं मजबूर हो गया, इतना ज्यादा मैं अंदर चले गया, फिर आप सवाल करें मुझसे।
1: आखिर में आप क्या कहेंगे, जो कुछ ये कुछ बातें हुई हमने सब चीजों को कवर करने की कोशिश की, इसको किस तरह देखते हैं?
0: मैं आखिर में सबसे पहले तो ये कहूंगा कि उधर से शुरू करते हैं जहाँ से बात शुरू हुई थी, जो हमारा मेन जो पर्पस था आज का वो ये था, चाक्सा वोनमन और नई जो है दुल्हन जो आके बैठ गई है,
1: बस मार्केट तो की,
0: हाँ मार्केट की दुल्हन जो है वो सजा से जो कि उन्होंने बैठा दी है और उसके लिए वो दूल्हे ढूंढ रहे हैं, तो वो मैं उसके लिए यही कहूंगा कि इसमें फिर यही कहूंगा कि हमारा अपना कसूर है एज ए कहते हैं फॉरनर्स का, कि हम इसके ऊपर बकायदा होमवर्क नहीं कर सके, जबकि मार्केट में के अंदर हमारा होल्ड था एज ए वोनमैन, फिर उसके बाद ड्राइवर आ जाते हैं, सबसे ज्यादा फॉरनर थे,
1: दूल्हे ढूंढे नहीं, दूल्हों के दूल्हा बनने के लिए बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं।
0: ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है और ये बिल्कुल मैंने इसको खुद देखा है, इसमें कोई शक नहीं, मैं खुद देख के आया हूँ। जो लोग इस चीज के खिलाफ थे, बार बातें कर रहे थे, वो उधर पहले पहुंचे हुए थे और उन्होंने लाइनों में लग के कहा, ठीक है ये उनका अपना अपना अपनी सोच है, या किसी को बात तो नहीं कर सकते, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। अब शाह साहब ने भी कहा कि आपकी टैक्सी ब्रांच इसलिए खराब हुई है कि हम कहीं के भी नहीं है, यानी कि हर तरफ हम भागते हैं, हम किसी के नहीं है सके, तो आपने अपनी ही छाक्षा ने उनको तबाह किया खुद ही अपने पैरों से कलड़ा मारकर वोन मनी के चक्रों में, और वोन मनी जो अभी शाह साहब ने बताया कि डेनिश लोग उन्होंने इसको बनाया हुआ था कानून बहुत पुराना 60 साल पहले, कि 2 से ज्यादा या 1 से ज्यादा 2 से ज्यादा नहीं बन सकते, जब फॉरनर आने शुरू हो गए तो उसमें आपने देखा कि सबसे ज्यादा जो बड़े जो वोनमैन थे जो वाई से लेके नैरो पोर्ट तक, उससे लेके वेस्टर पोर्ट तक, ये सारे, और यहाँ उधर क्या कहते हैं पोवा के से लेके, ये सब याद है, ये सब पता है शाह साहब को और मीमरिया, ये सारे वॉनमेंट डैनिश थे जिनकी 40-40 गाड़ियां, 30-30 गाड़ियां और टैक्सो मोटर होती थी उसके अंदर भी, अलेबन मुझे नाम बोल गया वॉनमेंट का डैनिश का, उसकी भी 60-65 गाड़ियां होती थी और उस जमाने में। तो ये फिर उसके बाद हमें चांस मिला हमने, मैं यही बताऊंगा, मेरी बात को फॉलो नहीं कर रहे, जब हमने कोई स्टैक यानी कि जो ताकतवर हमने कोई ऐसी फाइनिंग नहीं बनाई जिसमें हम ये आगे जाके, जिसमें वकील होता है आपका, जिसमें आपने बेचारे पैसे देते हैं और वो जो काम जब आप करें तो फिर वो यहाँ पर आपने काम कानून के साथ करना होता है। ये लोग भी कानून के साथ करते हैं, इनको पता है हर चीज, ये कानून के अंदर ही, जो इनके ये लॉज है ना, लॉज उनके अंदर ही, जैसे कहते हैं ना स्कैटर होल, उनके अंदर ही क्या कहते हैं होल है, उनके अंदर से आप ढूंढते हैं चीजें ऐसी जो आपको फिर आपको मिल जाती है और वो वकील ढूंढता है। तो वो मैं कह रहा हूँ कि हमने कोई 70-90% इसमें फॉरनर फोनमैन मिल के नहीं कोई बनाई हमने, इसमें हम दूर दूर रहे हैं। तो ये फिर इसको आपको हमें ऐसे आज भुगतना पड़ा है। और आप देखें, आपने खुद ही बताया कि दूल्हे भाग रहे हैं उधर जाने के लिए, कोई ऊबर चला रहा है, ऊबर में भी राम नहीं है, ऊबर चलाते हुए उधर भाग रहे हैं कि यहाँ पर हम आ जाएं। ये अपने मैं फॉरनर्स की बात कर रहा हूँ, इसमें मैं सारे अपने मरे भी आ जाते हैं, पक्ष नहीं दूसरे भी आ जाते हैं। तो बाकी रह गई कश्मीर की बात आपने की, कश्मीर से पहले कश्मीर तो है, आप देखें पाकिस्तान के हालात, मुआशी देख लें पूरे पाकिस्तान के, किधर हैं, किधर चले गए हैं इस 4 सालों में या 78 सालों में, कहीं नहीं बढ़े, हम पूरी दुनिया से उधार मांग रहे हैं। ये तो बात टकी छुपी नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो आपके सामने है, आपने खुद ही देखा है मीडिया पर, तो मीडिया में ये बातें चल रही हैं, आपको भी पता है, आप भी कहते हैं मीडिया के अंदर है, तो उधार के साथ आप कितनी देर तक चलेंगे या किसी के आगे हाथ जोड़ के कितनी देर तक चलेंगे? 28 करोड़ की वाम है, एक गयूर वाम है, आपके सूबे हैं, आपकी 7-8 लाख की फौज है, तो हमें किस काम में लगा दिया हमारे इदारों को, किस काम में लगा दिए इन सियासतदानों ने, जिसकी वजह से उनको वायलेशन करनी पड़ी है इन इन क्या कहते हैं बदबख्तों की वजह से। अब अभी आपने एक सवाल किया, मैं उसका सवाल का जवाब दे देता हूँ। आपने कहा कि कश्मीर के अंदर नवाज शरीफ को वोट मिलेगा या वो, यार भाई एक बंदा 45 साल से लगा हुआ है करने, अभी तक यार 80 साल का हो गया, तो उसको तो भाई छोड़ देना चाहिए शर्म के मारे कि भाई मेरे से नहीं हो सकता, मैंने 45 साल से। अब वो यही कहे आके बार बार के मुझे एक मौका और दे दिया जाए, मैं पाकिस्तान को पेरिस बना दूंगा, हर 4-5 साल बाद। अभी भाई साहब उनके हैं, वो वजीर आजम है पिछले 3-4 साल से, तो पाकिस्तान की हालत देख लें, पाकिस्तान के अंदर महंगाई देख लें, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत देख लें, ये यूरोप से भी ज्यादा है, एशिया से भी ज्यादा है, आप जाके देख लें, आपको सारी फिगर मिल जाएंगे अब गूगल में। एशिया में पहले तो जंग का बहाना था, ये नहीं जंग का बहाना है, जंग 3-4 माह पहले शुरू हुई, जंग से पहले भी आपके तेल के यही हालात थे, आप तेल से लेके आप डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तान रुपये की कदर देख लें, सारा कुछ ही देख लें, इसको महंगाई कहते हैं। पाकिस्तान में जाए जाके रह के जाके देखेंगे आप, यहाँ से करोन लेके जाएंगे, आपका 1,000 करोन जो है वो कैसे खत्म होता है, जो रुपए में है 40-50 हजार या 60 हजार, वो एक दिन में या 2 दिन में खत्म आपका हो जाएगा, इतनी सख्त महंगाई है और लोग वहां पर कैसे गुजारा कर रहे हैं ये तो वही जानता है। आपकी क्या कहते हैं मार्केट जो है हर किस्म की स्टॉक है, आपकी क्या कहते हैं ये मकान बिजनेस जो जिसके कहते हैं ये कारोबारी जो जिसमें ये दुकानें बेचने वाले, मकान बेचने वाले, कोठियां बेचने वाले, ये स्टॉक है, बिल्कुल हर चीज वहां पर स्टॉक हो गई हुई है। हाँ ये है कि सर नीचे करके अगर कोई कौम बेशर्मों की तरह चल रही है वो फिर उनका अल्लाह हाफिज है, वो सर नीचे नीचे करके झुका के तो कह रहे हैं जी ऐसी एनर्जी खुश है, फिर उस कौम का जो है ना अल्लाह अल्लाह
1: आपको मौकफ आ गया। शाह साहब शायद ने कह दिया है कि जबकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम है, अब जो है यूरोप भी तारीफ करता है, रशिया भी तारीफ करता है, अमेरिका भी तारीफ करता है, ईरान भी तारीफ करता है, तो दुनिया में नाम तो है, बहुत सारी चीज़ें वो कजी खामियां तो रहती रहती हैं, आते रहते हैं, हालात तब्दील होते रहते हैं, लेकिन हर बहुत जो बात जो है वो गौर तलब है। शाह साहब आखिर में अपना कमेंट्स भी दें और प्रोग्राम को क्लोज भी करें।
3: जी बिल्कुल, दुनिया सब जानती है कि जो करप्शन पाकिस्तान में है उसके वारिस हम यूरोप में भी बन गए हैं, दुनिया के जिस मुल्क में भी रहते हैं वहां पे हम ये काम दिखाते हैं। मैं अपने अल्फाज में ये कहूंगा कि पाकिस्तान जो है दुनिया के चंद चंद उन ममालिक में शामिल है जो कि एशिया में तो सेकंड नंबर पे रिचेस्ट कंट्री है। अगर कोई मेरी बात से मुतफिक नहीं तो ये उसका अपना जहन है। अभी रिसेंटली मेरे मोहल्ले में एक बंदे ने मकान खरीदा है 4.5 करोड़ का, और उसने वो मोहल्ले के अंदर मकान जो खरीदा है वो 4.5 करोड़ उसने कैश पैसे दिए हैं। क्या डेनमार्क के अंदर हम लोग जो रह रहे हैं क्या हमारे कोई ये साबित कर दे, कोई साबित कर दे कि उसने जिस वक्त का वो डेनमार्क आया अब तक उसने अपना मकान जो है वो बैंक में किसी सूरत में रहन नहीं रखा। भाई हम किससे पे कर रहे हैं, फ्लैटों की किससे पे कर रहे हैं, गाड़ियां लेते हैं वो किस्तों पे लेते हैं। डेनमार्क के अंदर मेरा ख्याल में 8-9% लोग ऐसे होंगे जिनको अबाई मकान मिले हुए हैं या जिन्होंने अपने कैश लेके, यहाँ तो जो मिलियार्ड अगर 10-12-12-20-20-40 मिलियन करोड़ के जो मकान लेते हैं वो भी बैंक से लोन लेते हैं। तो पाकिस्तान को गरीब बनाया है लोगों ने, हमारे सियासी लोगों ने। इसी तरीके से यहाँ के डेनमार्क के हालात को जो चेंज किया गया है और हम लोगों पे जो अब मुसीबत आई है ये टैक्सी ब्रांच में और ये जो खियोस्क ब्रांच के अंदर और दूसरी जगह, ये हमारे सियासतदानों की नाहेली की वजह से आया। अगर ये बताते कम्यूनों को मैं बताते कि यहाँ पे कितने फॉरनर्स हैं, वो कौन कौन सी जॉब करते हैं, उसके ऊपर डिबेट कराते तो ये इस तरीके के भूचाल कभी भी यहाँ पे ना आते। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब हम डेनमार्क में आए थे तो यहाँ पे 52,000 बंदा जो था, मेरे पास प्रूफ है, 1970 में 52,000 के करीब आदमी जो था वो आबेशलूस था डेनमार्क के अंदर। इन्होंने हमें क्यों बुलाया, इसकी एक रीजन है क्योंकि बीबीए भी सुनती है, वो मैं नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे हमें इन्होंने बुलाया तो हम लोग आए, हमने यहाँ पे अपनी उस वक्त जो भी इन्वेस्टमेंट की, लेकिन हमने मेहनत की दिन रात 20-20 घंटे 22-22 घंटे इधर काम किया, फैक्ट्रियों में सोए और इस मुल्क को तरक्की में इसका हाथ बटाया। सबसे बड़ी हमारे से ये नलायकी हुई कि हम डिपेंड करना शुरू कर दिए अपने यंगस्टर्स पे जिन्होंने स्कूल में बेहतरीन डैनिश जबान सीख ली लेकिन उनको कानून का नहीं पता था। हमने उनको पाकिस्तानी सियासत सिखला दी कि ये फलाना जन्म का है, ये फलाना गुजरात का, ये फलाना पिंडी का, इसकी मदद नहीं, ये करनी है वो करनी है। उससे पहले तो हम सब भाई भाई थे। मुझे 100% याद है अपना कि जब हम स्टेशन पे अपनी पोस्ट लेने जाते थे खत पढ़ने के लिए सैटरडे संडे, तो वहां पे पोस्ट ऑफिस से लेते थे तो वहां लोग कहते थे यार ये खत पढ़ दो और इसके साथ एक लिख भी दो ताकि यहीं से, तो इतनी मोहब्बत थी। आज हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे से बात करने मिलेंगे वक्ती तौर पे बाय बाय, उसके बाद एक दूसरे से बिल्कुल देखना भी पसंद नहीं करना, उनका नाम सुनना पसंद नहीं करते। ये चीजें जो है ये हमने यहाँ हमें सियासतदानों को चाहिए था जो सियासत करते हैं कि अवेयरनेस दे। मैं आज भी ये हल्फन ये बात कहता हूँ कि आज भी अगर हम 400-500 इतने हजार टैक्सी ड्राइवर हैं, अगर 400-500 टैक्सी ड्राइवर आज भी इकट्ठे हो जाएं और ये सिग्नेचर कर दे तो आज भी जो है बगैर डेमोन्स्ट्रेशन किए बगैर किसी चीज के बोलने वाले बच्चे हमसे कानून सीखे, यहाँ का जो आइन है उसकी खिलाफ वर्दी हो रही है और ये जो है टैक्सी का कानून दोबारा चेंज करने पे मजबूर कर सकते हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट करेगी क्यों कि सबसे पहले मैं शायद सुन रहा है मियां साहब भी सुन रहे हैं, आपको ये बता दूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऊपर को बैन किया तो फिर किस तरीके से सांसदान सुप्रीम कोर्ट को लॉ को वायोलेशन कर रहे हैं, ये चीजें हमने हाईलाइट करनी है। इन चीजों को सामने लेके आएंगे तो ये खुद बहुत जो है ये मजबूर हो जाएंगे क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास भविष्य होनी चाहिए, جب تک آپ کے پاس بھویش نہیں آپ بات نہیں کر سکتے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ینگسٹرز آئیں ہم سے بات کریں, ہم ان کو بھویش دیتے ہیں, ان کو اس بات پہ قائل کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ آئین ہے اور یہ لا فوصلے ہیں اور یہ فوصلے ہیں. آپ لا فوصلے کو آج بھی ختم کر سکتے ہیں, لیکن جب میرے پیچھے 10 بندے نہیں کھڑے ہو سکتے تو میں کیسے جا کے اکیلا جو ہے اس قانون کے اوپر لڑائی کروں. یہ تو چاہیے ان لوگوں کو جن کو اب مسئلہ ہے. اب میاں صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ لوگوں کو مسائل آ رہے ہیں, ڈرائیوروں کے مسائل. اب ایک آدمی کو ٹور نہیں ملتا تو وہ تو اپنی گاڑی چھوڑ کے وہ کہے گا کہ میں تو یہ جا کے جو 30,000 والی ہے جب فکس ہو جاتا ہوں تو مجھے تو 30,000-32,000 یہاں سے ملے گا, تو چلو میں اپنی فیملی کو تو سپورٹ کر رہا ہوں. تو یہ سب سے بڑی چیز جو ہے کہ آپ کو ایک چیز ذہن نشین کرنی ہے کہ اگر ہم نے اس ملک کے اندر رہنا ہے تو ہمیں اس ملک کی جو قانونی ہولز ہیں جو یہاں کے, اس کو ہمیں سیکھنا پڑے گا. میں آپ کو یہ بتا دوں, وکیلوں کی بات ہو رہی ہے, وکیل سارے ہر قانون کو نہیں سمجھتے. آپ کو وہ جو ہے وہ ان کے جو پارلیمنٹ کے جو فلکے تھنک کے لاز ہیں اس کو پڑھتے ہیں, وہ آئین کو نہیں پڑھتے. اور جب تک آپ آئین کو نہیں پڑھیں گے آپ لا کے اوپر بات نہیں کر سکتے. تو لہٰذا ہمیں یہ جو گیدرنگ ہے یہ مسٹ کرنی پڑے گی. اگر آپ جو ہے ٹیکسیوں کو بچانا پڑے گا, نہیں تو کل کو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ گرمیوں کی چھٹی کے بعد کیا ہوگا جب یہ 600 نئی ٹیکسی سڑک پہ آ جائے گی. حشر کیا ہوگا کہ وون مین اپنا 30,000-35,000-40,000 کا خرچہ جو ہے گاڑی کا وہ نہیں دے سکیں گے, اور وہ کہاں سے کور کریں گے؟ بینک ان کو لون نہیں دے گا, دوسری چیزوں پہ ان کو پرابلم ہوگی تو وہ کیا کریں گے؟ وہ تو بینک کرپٹ ہوں گے. میں نے خود کہا اگلے دن کہ میں نے 1,00,000 کروڑ فیئر گان سیورٹیو کو دے کے, کیونکہ میں بیمار ہو گیا تھا تو میں نے اپنی سیلس کیئر کو, میرے وکیل نے کہا تھا بینک کرپٹ ہو جاؤ 5 سال تک کوئی, میں نے کہا میں نہیں ہونا چاہتا بینک کرپٹ, میں آج تک نہیں بینک کرپٹ ہوا, میں اب کیوں ہوں؟ تو میں نے 1,00,000 ان کو کیش دے کے بینک کے تھرو سے, تو میں نے اپنے آپ کو فری کیا. 62,000 مجھے گاڑی کا گھاٹا نقصان ہوا, میں نے وہ بھی پے کیا. بات اصل میں یہ ہے کہ جب لوگوں کو گاڑیاں کھڑی ہو جائیں گی لوگوں کی, لوگ کہاں سے انکم لائیں گے؟ اس مسئلے کے اوپر بات ہونی چاہیے. ان کو یہ بتانا چاہیے کہ آج آپ 5-5-6 لاکھ کی 1-1 ملین کی الیکٹرک گاڑی کے اندر آپ بھاگ رہے ہیں, خدا نہ خاصہ کل کو آپ کو کوئی پرابلم آ جاتی ہے.
1: بات آپ کی بات میں معذرت کے ساتھ بول رہا ہوں, شاہ صاحب کبھی کھلاڑی بھی فیل ہوا, کھلاڑی کبھی ایک کلب میں بک جاتا ہے کبھی دوسری کلب میں بک جاتا ہے, کھیلنے والا کھلاڑی کبھی نقصان میں نہیں جاتا.
3: جی وہ آپ کی بات صحیح ہے, پر یہ کھلاڑی نہیں ہے. ہم لوگ جو ٹیکسی وون مین ہیں یا ٹیکسی ڈرائیور ہیں, ہم نالج کی بیس پہ کام کرتے ہیں کہ ہمیں ٹور ملے, ہم کام کریں, ہمیں زیادہ سے پیسہ ملے. ہم نے پاکستان کا بھی کلچر رکھنا ہے, ہم نے یہاں کا بھی کلچر رکھنا ہے, ہم نے بچوں کی شادیاں کرانی ہیں, ان کو اتنے اتنے لاکھوں کے جہیز دینے ہیں. تو یہ سارا نالج جو ہمارے اندر بھرا ہے اس کے اوپر ہم دن رات محنت کرتے ہیں, اور اس محنت سے جو ہے جو کمائی ہے اس کا عذاب ہمارے پہ آ رہا ہے, تو ہم کیا کریں گے؟ جنہوں نے ویلے لیے ہوئے ہیں, رائے کا اوس لیے ہوئے ہیں, سب کچھ دیکھے. کتنے لوگ, یہ شاید تمہیں پتہ ہے, کتنے لوگ موو ہو گئے ہیں سویڈن کے اندر, کتنے لوگ چلے گئے ہیں جرمنی کے اندر. میں کیوں اپنے بچوں کو یہاں لے کے آؤں؟ مجھے نہیں روکا انہوں نے, کیونکہ میں قانون کو جانتا ہوں, میں قانون کے لاؤز ہولز کو جانتا ہوں. یہ چیزیں جو ہیں جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ آؤ بیٹھو بات کرو, یہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے بچے بہت پڑھ گئے ہیں. وہ جی میرے بچے بھی پی ایچ ڈی کر گئے, میرے بچے بڑے پڑھے ہوئے ہیں, لیکن مجھے جب میں ان سے کوئی مدد مانگتا ہوں تو وہ کہتے ہیں فا لوے ہم ادھر, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو وہ ہمیں کیا بتائیں گے جب ان کو خود انہوں نے قانون نہیں پڑھا, ان کو پتا ہی نہیں ہے. قانون ایک علیحدہ چیز ہے اور آئین ایک علیحدہ چیز ہے. یہاں کا ریٹن آئین ہے, وہ آپ کو پروٹیکشن دے رہا ہے. شاید کو بھی اتنی پروٹیکشن ہے, میاں منیر صاحب کو بھی اتنی پروٹیکشن ہے, مجھے بھی اتنی پروٹیکشن ہے, ہمارے پرائم منسٹر کو بھی اتنی پروٹیکشن ہے, ہمارے یہاں کے کنگ کو بھی اتنی پروٹیکشن ہے. کوئی فورس کیس پینڈنگ نہیں, لیکن جو آئین ہے, جو لا ہے, جو انہوں نے قانون بنائے ہیں اس میں فورس کیس پینڈنگ ہے. یہ کیسا آئین رکھا ہوا ہے انہوں نے؟ یا یہ آئین کو ختم کر دے اور سارے لا فورس رہے, انگلینڈ کی طرح لے آئے کہ جو پارلیمنٹ ول چیک کرتی ہے ہم اس کو مانیں گے, تو پھر آئین رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس چیز کو ہم نے چیلنج کرنا ہے کہ کیا آپ اپنے آئین کو مقدس سمجھتے ہیں یا آپ جو لا فورس بنا رہے ہیں اس کو مقدس سمجھتے ہیں؟ इसके लिए बहुत बड़ी डिबेट होनी चाहिए। जैसे आपको पता है कि जब पार्लियामेंट के अंदर यहाँ पे इन्होंने पोलराइजेशन पे बात की थी, तो मैंने कैसे इनका मसाले दे दे के इनका मुंह बंद किया था, और वो पोलराइजेशन उधर ही खत्म हो गई थी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर आप डिबेट कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, आपकी बात में वजन होना चाहिए। राजा साहब,
0: शाह साहब मैं एक बात ऐड कर दूं अगर इजाजत हो आपकी।
3: जी जी जी जी बिल्कुल।
0: शाह साहब आपने बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन आप भी हमारे बुजुर्ग हैं, जिसे कहते हैं ना अपने स्टाइल में ये हमारे सियालकोट के कि जी असे भी भोले बादशाह। शाह साहब ये एक सोची समझी स्कीम, मैं इसको साजिश नहीं कहूंगा, साजिश एक सख्त हो जाएगा लफ्ज, मैं हालांकि
3: मैं
0: साजिश ही कहना चाहता था, लेकिन मैं प्रोग्राम के अंदर हूँ, मैं एक वो कहूंगा कि सोची समझी स्कीम के तहत ये सारा करवाया गया है आप लोगों को, हमें वोन मनों को खत्म करने के लिए इस मार्केट से, बिल्कुल ये अपने कंट्रोल करने के लिए। डैनिश खुद कंट्रोल नहीं थे कर सकते क्योंकि वो टैक्सी से निकल गए थे, उनके यंग बच्चा कोई टैक्सी में नहीं आ रहा था, वो चलाना नहीं चाहता था, वो आया ही नहीं है, अगर वो आता तो उन्होंने उसके जरिए फिर खुद ही करना था कंट्रोल डैनिश टैक्सी, लेकिन उन्होंने बाहर से फर्मे ला के ये इतनी नफरत करते हैं आपसे, ये आपको समझ नहीं अब आ रही, आपको सबको समझ आ गई है, हमारी यंग जनरेशन को भी ये समझ आ जानी चाहिए, जो तीसरी चौथी है ये आपसे प्यार नहीं करते, हालांकि आपने इसको कबूल किया, इनको हम यहाँ पर रहते हैं, हमने यहाँ टैक्स दिया है 60 सालों से, लेकिन इनको ये आनी चाहिए कि टैक्स दे के कारोबार का उतना ही मौके फराहम करने चाहिए जितने आप डैनिश जो एक थे डैनिश उनको करते हैं, हमें आप डैनिश भी कहते हैं लेकिन हमारे साथ आप ज्यादती करते हैं।
1: शायद अपने खिलाड़ी जब किसी क्लबों में बिक जाते हैं तो फिर हालात ऐसे ही होते हैं ना।
0: आपके आपका कहने का मतलब है कि मीर जाफर तो राजा साहब हमेशा हमारे सफों के अंदर पाए गए हैं, ये तो उसमें कोई दो राय नहीं है, जिसकी वजह से हम हमेशा से नुकसान उठा रहे हैं हर जगह से, हर महाज पर, हाली सियासी नहीं है, दूसरे ये जो महाज अभी इसका जिक्र कर रहे हैं, ये जो एक कारोबार है ना, एक आपका काम का अड्डा है, इधर भी आप मार खा गए हैं।
3: और शायद आपको मैं एक आपकी बात में से बात कर रहा हूँ, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि जो आपने बात की है ये बिल्कुल सही है। मैं आपको एक बात बताऊं कि 87 के अंदर हमारे एक वॉनमैन थे, तो उनके बेटे ने इतनी तेजी से मर्सिडीज गाड़ी को जाके, तो कांग्रेस वाय के जो बीच में चौंक था ना उसके अंदर जाके गाड़ी मारी, तो उन्होंने उसको पूछा तो वो कहने लगा मैं तो गिमनेजियम में पढ़ता हूँ, तो उन्होंने कहा ये गाड़ी कहते मेरे बाप की है, वो फोरमैन अपना वो वॉनमैन है, तो उन्होंने कहा अच्छा, तो जब उन्होंने बाप को कहा कि भाई तुमने ये मर्सिडीज कैसे रख ली है, तो फिर उन्होंने देखा कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं और इनके बाप की इतनी इनकम भी नहीं है, ये शो भी नहीं इतनी टैक्स में कर रहे, तो उन्होंने ये सख्ती वहां से शुरू की। फिर कुछ हमारे अपने लोग भी थे, मैं नाम लेता हूँ, हमारी ये अपना इसी प्रोग्राम के अंदर उसने खुद एक्सेप्ट किया था, यहाँ पे हमारी एक लुबना लाही हमारी काउंसलर होती थी, उसने जाके ये बकायदा हेमन नेमन के अंदर मेरे पास प्रूफ है, उसने कहा कि इनकी वॉनमैनशिप बंद करे, ये सबसे ज्यादा क्राइम कर रहे, ये सबसे ज्यादा पैसा खा रहे, तो वहां पे तो चार आदमियों ने,
1: अगर प्रूफ है तो बात करें, अगर प्रूफ नहीं है चूंकि वो मौजूद नहीं,
3: बिल्कुल प्रूफ है, मैंने आपके सामने लुबना ने ये कहा था कि ये मैंने हेमन नेमन में ये बात की थी कि इसको खत्म करना चाहिए, तो मैंने उसको कहा था कि तुम अकेली नहीं थी उस वक्त, चार आदमी थे, तो उसने कहा कि प्रूफ, मैंने कहा मेरे पास है, वो टाइमिंग है मेरे पास, तो वो खामोश होगी, तो ये आपके पास रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, और मैं कभी ऐसी कोई ऐसी बात नहीं करता जिसका मेरे पास सबूत ना हो, और ये हकीकत है, और ये चीजें जो हुई और इसकी वजूहात जो थी वो सबके सामने आ रही है।
1: तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं।
5: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

लेके जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बंदे अपनी गाड़ियां लेके चला रहे हैं, जो लोग अपनी टैक्सी लेके चला रहे हैं, उनके अखराजात जो है इस मुकाबले में वो जीरो हो जाएंगे, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। अब उनको याद आएगा कि कभी रेडियो आपकी आवाज पे तौकीर शाह बैठा होता था और बात करता था। ये चीजें जो है हम इनको पहले से बताते रहे हैं। अब इनके पास सबसे बड़ी जो इनके लिए प्रॉब्लम है, ये प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, ये अब स्ट्राइक्स नहीं कर सकते। इसकी वजूहत क्या है? क्योंकि ये अपनी जो सेल्स के में उनके साथ इनकी बैनिंग है, ये उनके साथ बाउंड हो चुके हैं, ये उनके साथ इनका वादा है कि ये उनके बगैर कोई काम नहीं करेंगे और नए कानून को एक्सेप्ट करेंगे। तो नए कानून के तहत राजा साहब ये दिल चाहे जब दिल चाहे पीछे से कंपनी इनका नंबर बंद कर दे और इनको कहे कि आप कॉपरेट नहीं कर रहे, लिहाजा हम आपका नंबर बंद कर रहे हैं, ये अदालत में भी नहीं जा सकते, ये अपनी गाड़ी ले घर जाए, उसकी लीजिंग देनी है, उसके पैसे देने हैं, उसकी जो प्रॉब्लम है उसमें से ये निकले। क्योंकि मैं खुद जाती तौर पे से इस प्रॉब्लम में से इस नए कानून से निकला था। जब मैं बीमार हो गया तो मुझे अपनी सेल्स के बंद करनी पड़ी, तो मुझे 1,00,000 जो है वो पास से देना पड़ा सेल्स के को, फी अकाउंट सिक्योरिटी को, और प्लस मुझे जो अपना कोर्स होने से और दूसरी चीजों से होने से बचने के लिए मुझे 62,000 करोड़ जो है वो एक्स्ट्रा देना पड़ा, जिससे मुझे गाड़ी का लॉस हुआ। तो ये जो 1,62,000 करोड़ मुझे लॉस हुआ, ये मैं लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि ये ना आपको टैक्स वापस करेगा, ना आपकी कोई मदद होगी, ना कोई चीज होगी। आप लोगों ने 5-5, 6-6 लाख की, 7-7 लाख की गाड़ियां डाली हुई है, खुदारा होश के नाखून लें। अब भी वह वक्त है, अब भी वक्त है कि आप लोग हड़ताल नहीं कर सकते। मैं आपको यह कभी भी राय नहीं दूंगा कि आप हड़ताल करें, आप कुछ करें, क्योंकि आपका नुकसान आपका होगा और आपका नुकसान होगा तो हमारा नुकसान होगा। तो हम सिर्फ ये राय देते हैं कि अभी भी आप मुतहित हो जाएं, अभी भी आप सिग्नेचर्स लें और आप कोशिश करें कि आप किस तरीके से इससे जान छुड़ाते हैं। आप ये 590 जो टैक्सी जो फ्राइडे से सड़क पे आ रही है, इस जुमे से जो आ रही है, उसके बाद आप क्या करेंगे? आपको आप देखेंगे कि आपके नाक के सामने से उबर और ये ग्रीन टैक्सी जो है, ये 2-3 मुख्तलिफ नामों से आपके सामने आ जाएगी और ये आपके नाक के सामने से टूर उठा कर लेके जा रही है और आप खड़े हैं। आप वो जो इतनी इतनी महंगी लीजिंग गाड़ियां ली हैं, इतनी इतनी महंगी इंश्योरेंस है, वो अखराजात आप कैसे देंगे? क्या आपके लिए कोई सर्वाइवल है? इसका हल बेशक आप फीमत हाल में है या आप किसी भी सेल्स के में है, इसका हल जो है ये अब क्रिसमस से पहले सबको नजर आ जाएगा। इसका हल सिर्फ ये है कि आप अपने कंपनियों से बात करें कि वो अब इकट्ठे हो और जो एक्सपर्टीज हैं, जो इस कानून को जानते हैं कि इसको किस तरह डिमोलिश करना है, इसको किस तरह खत्म करना है, इस कानून के ऊपर बात किस तरह करनी है, सियासतदानों से बात किस तरह करनी है, पार्लियामेंटेरियन से बात किस तरह करनी है, ये जो जब तक आप आइन और जो कानून बना हुआ है, ये दो डिफरेंट चीजें हैं, इसके दरमियान जब आप इन एक्सपर्टीज को लाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके लिए अभी भी आसानी है कि आप अपनी जो है वो अपने आप को बचा सकते हैं और आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। राजा साहब, मैं लोगों को बताता चलूं कि 2022 और 2023 में जो थी, यहाँ से कम इनकम जो थी डेनमार्क के अंदर काम करने वालों की, उनका बनता था 30,990 डेनिश क्राउन, यानी कि थाल्बत सुजन नी होना हेल्फिम्स कोरोना, और उनका जो सालाना जो इनकम बनती थी वो बनती थी पर पर्सन बनती थी डेनमार्क के अंदर 3,71,900 करोड़, यानी नियरली 3,000 करोड़। तो 25-26 में इन्होंने वो बढ़ाकर कर दी 4,000 करोड़। इसीलिए तो ये स्टैटिस्टिक्स में दुनिया को बताते हैं कि हम वेलफेयर स्टेट हैं, हम बहुत आगे चले गए हैं। और जो 25-26 में इन्होंने 4,000 किया, तो इसके पर मंथ ये महीने की है, तो इन्होंने कम से कम जो इनके बंदे कमाते हैं तो उसके अंदर जो है
ये

0: एक महीना काम करने वाले के लिए 5,64,000 कम से कम जो है वो इसकी सालाना इनकम होती थी, लेकिन अब अगर आप 29,000 या
1: लेकिन
0: तीस
1: शाह
0: हजार
1: साहब,
0: पे
1: ये
0: काम करेंगे।
1: जो 30 जुलाई डेनमार्क में बाकायदा सर्विस जो है होने जा रही है, इसका आगाज कोपनहेगन से होगा। पहले मरहले में तकरीबन 600 इलेक्ट्रिक टैक्सियां सड़कों पर उतारी जाएंगी। ये तकरीबन गाड़ियां इस नाम से होंगी, ज़्यादातर जो है टैक्सियां हैं विनफास्ट की इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी, जिनमें मुख्तलिफ मॉडल भी शामिल हो सकते हैं, VFE34, VF5, दीगर जदीद इलेक्ट्रिक मॉडल्स भी। शाह साहब, ड्राइवर कैसे बन सकते हैं? अगर आप ग्रीन GSM के साथ काम करना चाहते हैं तो आमतौर पर आपको ये चीज़ें दरकार होती हैं: डेनिश टैक्सी ड्राइविंग लाइसेंस, साफ ड्राइविंग रिकॉर्ड, CPR नंबर, डेनमार्क में काम करने की कानूनी इजाज़त, बुनियादी डेनिश या अंग्रेजी जबान की सलाहियत। कमाई कितनी हो सकती है? सवाल ये पैदा होता है, अतमी तनख्वाह कंपनी कितने देती है? लेकिन डेनमार्क में टैक्सी ड्राइवर अमूमन बुनियादी तनख्वाह के साथ बोनस या कमीशन की बुनियाद पर काम करते हैं। इलेक्ट्रिक टैक्सी होने की वजह से ईंधन के अखराजात भी कम होते हैं। तनख्वाह और कमीशन की तफसीलात कंपनी की जानिब से मुलाजमत के वक्त दी जाती है। मुसाफिरों के लिए सहूलियात, मोबाइल ऐप के ज़रिए बुकिंग, 100 इलेक्ट्रिक और माहौल दुरुस्त सफ़र, 100% मतलब है 100% टैक्सी नहीं, 100% माहौल, डिजिटल अदायगी, जदीद और नई गाड़ियाँ। शाह साहब, अगर आप ये सारी चीज़ें देखते हैं, GSM जो है, ग्रीन GSM है, तो शाह साहब बुनियादी तनख्वाह एक बंदे की या एक ड्राइवर की सहूलियात के साथ कितनी हो सकती है तकरीबन?
0: देखिए जी, जो आपने बात की, आपने बिल्कुल सही बात की है। ये जीए ग्रीन GMS आने के बाद और यहाँ के जो हालात हैं, इससे इसका निचोड़ एक ही निकला है कि यहाँ पे अब पानी गंदला हो चुका है। ये इसलिए इन्होंने पानी गंदला किया है कि इस कानून के तहत जो है वो लोग अब मुलाजमत करेंगे और उनकी जो तनख्वाहें हैं उनको मिलेंगी और लोगों को सर्विस जो दी जाए। अब ये जो सबसे ज्यादा फॉरनर जो थे वो टैक्सी चला रहे थे और कैब ऑनर बने हुए थे और उनके पास उनकी जो इनकम सी जो वो कभी सही तौर पे यहाँ आगे पीछे, कुछ लोग सही शो करते थे, कुछ लोग आगे पीछे, क्योंकि यहाँ आपको ये बताता चलो कि पिछला जो लॉ गिवनिंग था, जो टाक्सा नेमन का कानून था, उसके अंदर वोनमैन को बहुत बड़ी सहूलत थी। उसके अंदर यह था कि वोनमैन जो था, जब उसको बबीलिंग दी जाती थी तो वो बबीलिंग जो है ना पुलिस ले सकती थी ना टैक्स वाले ले सकते थे, उसके लिए उसको अदालत में लेके जाना पड़ता था और बवीस करना, सबूत देना पड़ता था कि ये इस आदमी ने ये घपला किया, और ये अदालत में होता था कि क्या उस बंदे के साथ वो कोई जुर्माना वगैरह करके उसको छोड़ दिया जाए या उसको कोई वार्निंग दे के छोड़ दिया जाए या उसे वो बबीलिंग वापस ले लिया जाए किस हद तक, ये सारा कुछ अदालतों पे डिपेंड करता था। लेकिन अब जो है ये कानून बदल के इन्होंने मिनिस्ट्री को दे दिया। मिनिस्ट्री ने क्या किया कि इन्होंने जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनको ये अख्तियार दे दिए। अब आप ये देखें कि एक बड़ी कंपनी बाहर से, जितनी भी कंपनी आ रही है सब बाहर की है, डेनमार्क की कोई कंपनी नहीं है, सब बाहर की आ रही है। और अब इनका मुकाबला जो था आखिर एक संस्केप रह गई है, थ्राइगन फियर थाल्वर जो कोपनहेगन की कंपनी है, लेकिन अब उसका भी कुबाड़ा हो जाएगा और वो भी जो है बहुत जल्द जो है वो हाथ पांव उनके सुन हो जाएंगे और वो छोड़कर इसको। मैं तो ये समझता हूँ कि वो ड्राइवर जो है, अभी मेरी कल शाम को 3-4 ड्राइवरों से बात हो रही
1: शाह
0: थी,
1: साहब, मेरी
0: तो
1: इन्फॉर्मेशन के मुताबिक देन टैक्सी के पास भी 600 इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, क्या बात सही है?
0: जी बिल्कुल सबके पास है, गाड़ियां हैं, लेकिन मसला ये है कि क्या वो
1: तो ड्राइवर
0: ये
1: भी
0: जो
1: है?
0: जी ड्राइवरों की अब कमी आ गई है, ड्राइवर नहीं मिल रहे, क्योंकि ड्राइवर चाहते हैं कि हमें हमें सिक्योरिटी हो। ड्राइवर ये चाहते हैं कि हमें ये सिक्योरिटी हो कि अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमें बीमारी के पैसे मिले, हमें पहले दिन से बीमारी के पैसे मिले। हम ये नहीं कि वोमेन कह के जी तुम नहीं आए तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, ये नहीं कर सकता। ये जो नई कंपनी की जो शरायत है ये बहुत ही खुशानदा शरायत है ड्राइवर्स के लिए, लेकिन इसके अंदर लेस पे है, तनख्वाह जो है ये डेनिश आइन के खिलाफ है। इसमें मैं बिल्कुल प्रोटेस्ट करूंगा, लेकिन जो उनका असूल है, बाकी तरीके जो हैं उनके कि हम आपको देंगे क्या नाम है फायदा देंगे, आप बीमार हो जाते हैं, आप अनसेट हैं, आप छुट्टियों पे जाना चाहते हैं, आपको छुट्टियों पे विद पे मिलेगी, ये उनकी बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या दूसरी कंपनियां जो हैं या वो बंदे जो कहते हैं जी कि हम अभी तक वॉनमैन हैं, क्या वो अपनी अपनी अखराजात जो हैं वो पूरे कर सकेंगे? क्या जो अवाम है, गाहक जिसको हम कहते हैं, वो सस्ती टैक्सी और अच्छी टैक्सी और एक ऐसी, बल्कि आज मैं पढ़ रहा था, कल भी पढ़ रहा था कि बेशुमार लोगों ने, ये डेंचो ने लिखा है कि ये जो फॉरनर्स की टैक्सी थी, ये जो फॉरनर, उन्होंने बिल्कुल क्लियर लिखा है फॉरनर, उन्होंने कहा कि यहाँ पे ये रेप होते थे, यहाँ पे लड़ाई झगड़े होते थे, ये अब ये चीज खत्म हो जाएगी, अब हम ऐसी टैक्सी में बैठेंगे और ऐसी टैक्सी हम चाहते हैं डेनमार्क के अंदर के जो कंपनियां चलाएं और कंपनी जो है वो जवाबदेह होगी। तो पहले तो दूसरा सिस्टम चल रहा था, तो इन्होंने सारा सिस्टम जो है उसको खत्म किया है। तो अब राजा साहब जो बातें हमने वार्निंग दी थी, एडवाइसल दी थी इन लोगों को, खुदारा मतलब प्रश्न बने सामने आए और अपने जो है इस वॉरमैनशिप को इसको बचाएं, तो अब ये झटका जो है जुमे को लगने जा रहा है और इससे कितना बड़ा नुकसान होगा DSB और बड़ी बड़ी जो कंपनी है गवर्नमेंट की, ये तो अब ऐसी सस्ती गाड़ियां लेंगे जिसके अंदर यूनिफॉर्म पहने हुए ड्राइवर बैठे हुए हैं, एंस वाली ड्राइवर बैठे हुए, उनको पता है कि हमने पूरी तनख्वाह लेनी है, उनको इस बात की परवाह कि ये 100 करोड़ का टूर है या ये 500 करोड़ का या 1000 करोड़ का टूर, इससे इसका उनसे लेना देना कोई नहीं, वो अपनी ड्यूटी करेंगे जैसे वो फर्मों में करते थे, फैक्ट्रियों में करते थे, 7 साढ़े 7 घंटे काम किया और उसके बाद खुदा हाफिज गाड़ी खड़ी की और अपने घर चले गए। और ये एक बहुत अच्छी खुशानदा बात है और इनके लिए, लेकिन ये उनके लिए जो जिन्होंने महंगी गाड़ियां खरीदी
1: लेकिन
0: हुई
1: शाह
0: हैं।
1: साहब, आप ये सवाल ये पैदा होता है, चलें पहले लोगों ने गाड़ियां ली, बड़ी बड़ी गाड़ियां ली, बड़ी महंगी गाड़ियां ली, कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो यहाँ सड़कों पर गाड़ियों का मौजूद नहीं है। शाह साहब, अगर माहाना तनख्वाह होती है 30,000 के करीब या 40,000 डेनिश क्रोन के करीब होती है और शिफ्टों में काम होगा, कमीशन भी, ओवर टाइम भी हो सकता है, रात वीकेंड तैतील छुट्टियों में भी काम करने की जो अजाफी अदायगी मिल सकती है, शाह साहब अगर कंपनी इजतमाही मुआहदे यानी के तहत जो है ना वो मुलाजमी रखती हैं तो आम तौर पर तनख्वाह के साथ पेंशन, तनख्वाह के साथ छुट्टियां, बीमारी की सूरत में तनख्वाह, तरबियत यानी ट्रेनिंग, जदीद इलेक्ट्रिक टैक्सी की ट्रेनिंग, कंपनियों की तरफ से गाड़ी की देखभाल और इंश्योरेंस जैसी सहूलियात भी शामिल हो सकती हैं। शाह साहब, आप ये जो सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों ने या किसी से आपकी मुलाकात हुई, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो कोई भी इस कंपनी में गया तो आपकी इंफॉर्मेशन में है कि हमारे पाकिस्तानी भाई या हमारे गैर मुल्की भाई या जो हमारे लिसनर हैं, ये कितने लोग जो है इस ब्रांच में जा चुके हैं और इसका मुआयदा कितना होगा? ये ना कि सुबह निकाल दिया जाए, आज छोड़ के जाते हैं दूसरी कंपनी में, फिर उनके लिए वापसी का रास्ता क्या होगा?
0: मैं कह रहा हूँ जी कि बहुत ज्यादा लोगों ने अपने आप को जो है इस कंपनी में चले गए हैं, उनको पहली फुर्सत में 3,000 ड्राइवर चाहिए थे और मेरा ख्याल में कि उनका जो है वो काफी, क्योंकि अगर वो 590 टैक्सी निकालते हैं तो उनको कम से कम 16-1700 ड्राइवर जो होते हैं दिन रात के लिए उनको चाहिए थे और वो उन्होंने पूरे कर लिए, उससे ज्यादा ड्राइवर वो रख रहे हैं ताकि वीकेंड पे जो लोग छुट्टियां करेंगे, क्योंकि अब ये तो नहीं है ना कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपने वीकेंड में भी काम करना है, आपने नहीं, आपने 5-6 दिन जो मुकर्रर है, 5 दिन काम करना, 2 दिन छुट्टी, 5 दिन काम करना, 2 दिन छुट्टी, और इसी के असूल पे जो वो काम कर रहे हैं तो उनको जो तनख्वाह मिल रही है और फिर उसके ऊपर जो बोनस मिल रहा है ये उनके लिए अच्छा है, फिर उनको हर किस्म की श्योरिटी है, सबसे बड़ी श्योरिटी उनके लिए यह है कि उनकी अपनी कैब नहीं है, उनको ये मसला नहीं है कि मैं वर्कशॉप में गया तो वर्कशॉप, वो वर्कशॉप तो कंपनी की अपनी है, उन्होंने अपनी गाड़ियां ठीक करनी है, उसको कहना है कि भाई ठीक है तेरी गाड़ी खराब हो गई है या कुछ हो गया तो उसको तो पे मिलेगी। अब मसला जो खड़ा हो गया है, जो दोबारे बर्लिन खड़ी हो गई है, दोबारे चीन खड़ी हो गई है, वो ये हो गई है कि जो हमारे भाई वॉनमैन बने हुए, अपने आप को वॉनमैन कहते हैं, सॉरी टू से मैं माफी चाहता हूं माजत के साथ, उनका क्या बनेगा? जिन्होंने इतनी इतनी महंगी गाड़ियां ली हुई हैं, जिनके अपने नंबर हैं, अब वो क्या करेंगे? क्या वो इस गर्मी के अंदर, ये जो अगस्त के आ रहा है आगे से यूल फेर ये आएगी, उसके अंदर फिर जनवरी फरवरी आएगी, क्या उसके अंदर वो इतना पैसा? मैं खुद वॉनमैन रहा हूँ, मैं खुद सेल्स कैब चलाता रहा हूँ, मुझे पता है कि ये जो सज्जे खब्बे की मारते हैं ना वॉनमैन, इसके अंदर कितना मुश्किल हो जाता है। आपको ड्राइवर नहीं मिल रहे, आप ड्राइवर लगा नहीं सकते। मैंने कितने लोगों के साथ बात की है कि यार आप बेकार, उन्होंने कहा शाजी सर जापाल आपके लिए अच्छी, और इवन टर्के जो है वो भी चले गए, बहुत ज्यादा फॉरनर जो थे वो अब इसमें जा रहे हैं, स्टूडेंट जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं। तो देखिए ये एक फिक्स नौकरी है, ये वैसी नौकरी है जैसे आप किसी दफ्तर में काम कर रहे हैं या आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आपको 5 दिन काम करना है, आपको फिक्स तनखा मिल रही है, आपने कोई सड़कों पे से सवारी नहीं उठानी, आपने रेडियो टूर उठाना है, अगर सड़क से कोई मिल गया तो उसका आपको बोनस मिलेगा, बाकी जो गवर्नमेंट है उससे अगर कंपनी आपको दिन में 10 टूर देती है या 5 टूर देती है तो उसका आपकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये आपको तो अपनी तनखा मिल रही है, वो आपको मिल रही है, तो ये चीजें ड्राइवर के लिए बहुत अच्छी है। इसमें सिर्फ ये हो गया कि अब जो वॉनमैनशिप थी वो खतरे में हो गई है, और जो पुराना कानून था वो हमारे लोगों ने खुद खत्म कराया है, और इस बात पे जी कि हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, हम डैनिश में बहुत ज्यादा माहिर हैं, और अब जो चीजें हैं वो सामने आ गई है। जी राजा साहब,
1: शाह साहब, ये जो फलके पेंशन वाले हैं उनके लिए क्या होगा? क्या वो 20-25-30 घंटे काम करेंगे या पार्ट टाइम करेंगे या छुट्टियों में काम करेंगे, या वो 37 घंटे भी फुल टाइम भी काम कर सकते हैं, ये कोई पता लगा आपको?
0: जी बिल्कुल, वो जो फलके पेंशन वाले हैं वो काम कर सकते हैं, और फोर्सेस पेंशन वाले जो हैं वो भी काम कर सकते हैं, लेकिन एक हदूद में रह के कि इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, और आप कितने घंटे जो है अब, क्योंकि अगर आप काम करेंगे टैक्सीज के अंदर तो आपको 3 घंटे या 4 घंटे की वो चेकअप होगा कि भाई ये कितने जा रहे हैं, वो रजिस्टर्ड होगा ऑटोमेटिकली, ये नई कंपनी जो है ये कितने पैसे देती है बंदों को वीकेंड में चलने के लिए, या दूसरे कितने देते हैं, लेकिन आप काम कर सकते हैं। अगर आप फलके पेंशनिस्ट हैं तो फिर वो आपको, अगर आप फुल टाइम गाड़ी चलाना चाहते हैं तो वो आपको सिर्फ ग्रूम ब्लॉक जो होता है ना वो आपको देंगे, आपको दूसरे जितने डीलक्स वगैरह मिलते हैं वो आपके खत्म कर देंगे, और आपको कहेंगे ठीक है कि आप जाएं। अगर आपको 5,000 या 6,000 या 7,000 मिल रही है वो, फिर इसके साथ ये होगा कि जो आपको जो फोर्सेस पेंशनर्स या जो पेंशनर हैं इनको जो बॉडी यूज से मिलता है, यानी कि जो पैसे वो देते हैं कि भाई आपका किराया बहुत ज्यादा है, ये वो खत्म हो जाएगा इससे। लेकिन अगर आप सिर्फ वीकेंड में
1: चल, ये तो नेचुरली बात है शाह साहब, अगर बात बिलफर्ज में मिसाल के तौर पर चले, आपका नाम ले रहे हैं, अगर आप फलके पेंशन है, अगर आप अब गाड़ी चलाते हैं तो कितने घंटे चला सकते हैं जो आपकी पेंशन पर, आपके जो छिलेगे इस पर कोई फर्क ना पड़े?
0: देखिए अगर सिर्फ मैं सोचता हूँ कि मैंने वीकेंड में चलानी है, पहले तो मुझे काम कोई नहीं देगा अगर मैं फुल टाइम चलाता हूँ, और दूसरा ये है कि जो अब रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए हैं इसके मुताबिक ये है कि आपको चेक एंड बैलेंस जो है ये बहुत जबरदस्त इन्होंने कर दिया, ये देख रहे हैं, इससे मुझे जो इजाजत होगी अगर मैं वीकेंड में काम करता हूँ तो मैं पूरे महीने के अंदर जो है वो 7,000 से ऊपर का करोन जो है वो नहीं कमा सकता। अगर मैं 7,000 से ऊपर कमाऊंगा तो वो उसका मतलब ये हो गया कि वो मेरी जो सिर्फ ग्राउंड ग्रॉप है वो देंगे, बाकी में कटौती होना शुरू हो जाएगी। तो अगर मैं फुल टाइम काम करता हूँ तो फिर मुझे बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि फिर आपकी जो घर की इनकम है वो स्टीयर कर जाएगी, वो ज्यादा हो जाएगी, तो उसके अंदर ये होगा कि आपको दो जगह टैक्स देना पड़ेगा, एक आपकी इनकम पे टैक्स देंगे, एक आप इनकम टैक्स देंगे जो आप पेंशन में कटौती करा रहे हैं, फिर दूसरा वो देखेंगे कि आपके घर के जो आपकी बीवी है, बच्चे हैं, घर में साथ रह रहे हैं, उसकी हाउस होल्डिंग जो है उसकी इनकम कितनी है, तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है, और इससे हमारे लोग जो है वो नुकसान में हो जाते हैं। अब डैनिशों के लिए ये है कि डैनिश जो है वो हमारी तरह झूठ नहीं बोलते, वो कहते हैं ठीक है भी वो अवेयर फंसाए, वो कहते हैं जी कि ठीक है वो तो हमें उनको तो परवाह नहीं कि हम शादीशुदा करके साथ रहते हैं या नहीं रहते, वो लादा लादा भी हो जाते हैं। लेकिन मोस्टली इस गवर्नमेंट ने जो इशारा किया था 2022 के अंदर और उसके फॉर्म है जो कानून इन्होंने बनाया था, वो खसूसी तौर पर ये देख रहे हैं कि ये जो फॉरनर्स हैं ये ज्यादातर, क्योंकि इसमें जो हम बाद में इस पर डिबेट करेंगे जरूर लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, लेकिन मैं थोड़ी सी मिसाल देता हूँ कि लोग जो हैं वो डैनिश तलाक ले लेते हैं लेकिन लोग मियां बीवी इकट्ठे रहते हैं और ये साबित करते हैं अपने संपर्क में अपने लोगों के, ये कहते हैं हमारा ये जुर्म है और इसमें वो काफी तहकीक कर रहे हैं और काफी लोगों को जुर्माना भी हुआ है और अब इसके ऊपर वो कितनी सख्ती कर रहे करते हैं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि
1: चलें शाह साहब इतनी गाड़ियां और आ जाएंगी 600 के करीब आ जाएंगी तो शाह साहब पार्किंग कहाँ होगी? शहर तो उतना ही है, कोपेनहेगन से चलेंगी, शहर तो उतना ही है।
0: जी ये अब कोपेनहेगन कम्यून का मसला है कि ये अब पूरी जो हमारी गवर्नमेंट है उसको लेने के देने पड़ जाएंगे, उसको ये सोचना पड़ जाएगा कि मैंने जो पहले अपना टिल्डाल से, मैं बिविलिंग नहीं कहूंगा, जो पहले मैंने टिल्डाल से इजाजतनामे मैंने दिए थे वो मैंने दिए थे कि पूरे डेनमार्क के अंदर चले, वो सारे के सारे कोपेनहेगन में ही रह गए और बड़े शहरों में रह गए, अब छोटे जगह में नहीं। तो अब ये जो नई गाड़ियां आ रही है ये भी, तो अब आप ये खुद अंदाजा लगा रहे कि जब 3500 से लेके 5000 गाड़ी जो है वो कोपेनहेगन के अंदर घूमेगी, तो इस टैक्सी के अंदर अब काम उसको मिलेगा जो सबसे सस्ती होगी। अब यहाँ पे ये मुकाबलाबाजी होगी कि हमारा मीटर कितने पे चलता है, हम कितनी सस्ती देते हैं, हम फास्ट टूर देखे, ये जो फास्ट टूर वाला काम इन्होंने किया है ये डेनमार्क के अंदर जो है ये इंसानियत के खिलाफ है, क्योंकि एक ड्राइवर अगर ये जो अभी मैं रॉस किल्डे का पढ़ रहा था और मैंने आपको भेजा भी है वो कटिंग मैंने आपको भेजी भी है ताकि कोई कहे कि शाह साहब झूठ बोल रहे हैं तो वो आप उसको सप्लाई कर सकते हैं। रॉस किल्डे से लुफ्टहावन का 530 या 540 करोड़ का वो टूर लेके आ गया है और अगर वो रश आवर्स में जा रहा है तो वो बेचारा जो है वो थका हुआ है, 40-50 मिनट का टूर है और वो इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है, तो वॉनमैन अगर वो खुद भी वॉनमैन है तो वो अपने अखराजात कैसे बर्दाश्त करेगा, वो किस तरीके से गाड़ी के अखराजात जो है वो एक घंटे के लिए अगर वो 500-600 करोड़ कमा रहा है तो उसको तो फायदा ही कोई नहीं, क्योंकि जब वो इस सारी चीज को डील करेगा इंश्योरेंसों में गाड़ी के खर्चे में सारा कुछ, तो उसको क्या मिला, उसको 80 या 90 करोड़ से जायद या हद कर दें आप तो 100 करोड़ उसको इस पूरे टूर का जेब में आएगा, तो उसको क्या फायदा हुआ एक घंटे में 100 करोड़, इससे अच्छा है वो जाके तो
1: एक बहुत बड़ा खेल होता है कारोबारी खेल से कह लें, जाहिर है रोजगार भी लोगों को मिलता है, तो शाह साहब इंश्योरेंस इन्वॉल्व होगी, रोड टैक्स इन्वॉल्व हो गया, अब तो फिक्स चीजें आ गई, इंश्योरेंस भी फिक्स हो गई है, हर कंपनी इतनी कंपनियां आ गई इंश्योरेंस वाली कि वो गिनी नहीं जाती, लोग ज्यादा से ज्यादा वो कहते हैं जहाँ सहूलियात हैं उस तरफ जाना चाहते हैं, तो शाह साहब आप कोई मुस्तकिल मिजाजी वाली बात नजर आती है?
0: ये जब तक मुस्तकिल मिजाजी वाली बात तो उस वक्त होगी जब हमारे जो काउंसलर हजरात हैं ये इस मसाइल को संजीदगी से देखें और वो उठाएं इसको कम्यूनों के अंदर, एग्जाम्पल ईसा में कितने टैक्सी वोमैन या टैक्सी ड्राइवर रहते हैं, टास्टो में कितने हैं, एल्बर्सोन में कितने हैं, कोपेनहेगन में कितने हैं, तो उनके लिए मसला बन जाएगा कि भाई लोग कैसे क्या करें। अब मैं आपको ये यकीन से ये बात कहता हूं कि ये जो नई कंपनी आई है अभी तक ये कानून जरूर था कि आप 33,000 से लेके 35,000 तक फास्ट प्राइस पे आप ड्राइवरों को रख सकते हैं, फिर उनको उनकी इंश्योरेंस है हर चीज उनको आपने देनी है, लेकिन 39,000 जो है ये और फिर उसको हर किस्म की सहूलत देनी ड्राइवर को, ये वोमैन के वोमैनशिप को खत्म कर देगी और इसी तरह बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, एग्जांपल अब बॉल्ट है यहाँ पे वो उबर है, तो ये क्या करेंगी, ये भी इसी तरीके से जब लोग अपने नंबर वापस करना शुरू कर देंगे तंग आ जाएंगे उनकी गाड़ियां बिक नहीं सकती तो वो गाड़ियां खड़ी कर देंगे, उनको नुकसान होंगे तो वो क्या करेंगे, वो यही करेंगे कि कंपनियां उनसे हर एक चीज ले लेंगी सस्ते दामों और फिर उनके अंदर अपने ड्राइवर जो है जिस तरह इन्होंने एनसेट किए हैं, इन्होंने तनखादार बंदे मुलाजिम रखे हैं, वो भी उनको कहेंगे कि अब आप हमारे पास काम करें, आप हमारे लिए पैसा कमाएं और हम आपको इतनी तनख्वाह देंगे, ये आपने काम करना है। तो अब ये कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ये सामने आ गई है। तो राजा साहब इसमें जो हमारे बड़े बड़े ड्रीम थे, बड़े बड़े
1: मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सारे काम होंगे लेन देन वाले,
0: बिल्कुल जी, ये सब कुछ आप अब अखबारें भरी हुई है कि जो लोग फेरिये पे गए हैं वो कार्ड नहीं इस्तेमाल कर रहे, कैश पैसा इस्तेमाल कर रहे, इनको सारी किस्म की आप इंफॉर्मेशन।
1: शाह साहब देखे ना, इस पर नजर रखनी चाहिए, बार बार आप काउंसलर का जिक्र करते हैं, डेफिनेट इसके लिए काउंसलर ने अपनी अपनी कमूनों में पहले सफ बंदी करनी थी, पार्किंग ये वो दूसरा तीसरा। शाह साहब हर पार्किंग अब पैसे से होती है, फ्री पार्किंग तो कहीं भी आपको मिलती नहीं कि आप करें, कुछ जगहों पर है 1.5 घंटा 2 घंटे 15 मिनट, इतनी ज़्यादा ज़्यादा मैक्सिमम इतनी पार्किंग आपको फ्री मिलती है। दूर दराज इलाकों में रहते हैं आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपका विल्ला है आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सड़क पर तो आपने गाड़ी खड़ी करनी है कहीं ना कहीं।
0: देखिए जी, पार्किंग का पहले सबसे पहले ये है कि आप इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, ये मैं गवर्नमेंट को और काउंसलर्स को कह रहा हूं कि जिस अपार्टमेंट में आप रह रहे हैं, जिस घर में आप रह रहे हैं, आपका प्राइवेट विला है तो उसके अंदर तो आपकी पार्किंग जो है वो ग्रातिस है, क्योंकि वो तो आपकी अपनी है, उसके राइट्स दूसरे हैं। और जो अपार्टमेंट ले रहा है, अगर वो कहीं सड़क पे या किसी पार्किंग में गाड़ी खड़ा कर रहा है तो वहां पे क्या जी उसको जुर्माना लग जाता है। अगर उसका कोई गेस्ट आ जाता है, उसका कोई मेहमान आ जाता है, उसको नहीं पता, कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ कि यहाँ पे फ्री है गेस्ट पार्किंग है या क्या, वहां पे वो जुर्माना लगा के चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो है इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है।
1: शाह साहब और भी हमें शिकायत मिलती है, हमसे लोग बात करते हैं सर, इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमसे बात करते हैं। शाह साहब जब आप शहर में घूमते हैं, एक दिन हमने भी सर्वे किया, आपको पता है कि ये जो डील चीज वीजा कारोबारी गाड़ियां उनकी पार्किंग होती है ये हर वक्त आपको खाली मिलती है। रात को बाहर निकले आपके घरों के आगे पीछे जहां इलेक्ट्रिक पार्किंग है ये पार्किंग हमेशा खाली पड़ी होती है, लेकिन आप वही का जो काम वाली गाड़ियां खड़ी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां वहां खड़ी नहीं कर सकते, वो भी काम वाली भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो होती हैं वो अलहदा सिस्टम बना हुआ है। तो शाह साहब एक आपने रोड टैक्स भी देना है, उसके बाद आपने पार्किंग भी कर रही है, फिर आपने वो पीस की वह जो लिखा होता है पार्किंग के पैसे भी डालने हैं। तो शाह साहब इसकी वजात जो आप सिटी काउंसलर जो बैठे होते हैं कमूनों में सबसे जिम्मेदार लोग तो ये होते हैं, पावर तो इनके पास होती है कमेटियों में। तो शाह साहब ये मुझे एक बड़ा मनज़म जो है वो मनज़म जो कहते हैं वो स्पिल नज़र आती है, गैम नज़र आती है, स्कक नज़र आता है, आप क्या कहेंगे?
0: बिल्कुल हमने सही कहा, ये वहां पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वहां पे खड़े होके अपने कम्यून के अंदर खड़े होके ये फौसले दे सकते हैं, वहां पे ये फौसले दे के कह सकते हैं कि देखे यहाँ पे पार्किंग के अंदर नाजायज पैसे लिए जा रहे हैं, जब लोग यहाँ के 38 से 40% बल्कि 90% हर बंदा जो डेनमार्क के अंदर रहता है, खसूसी तौर पर कोपेनहेगन वेस्ट हाइन में रहता है, ये 90% से ऊपर टैक्स देता है। वो टैक्स इसलिए कि इसके अंदर जो वो टैक्स देता है पर्सनल टैक्स देता है, फिर उसके अंदर जो चीजें बाय करता है मम्स वगैरह देता है, ये जो चीजें हैं ये इतनी ज्यादा चली जाती हैं, ये तो 90% से भी ऊपर चले जाते हैं जो टैक्सेस हम पे करते हैं। तो ये हमें क्या दे रहे हैं? मुझे याद पड़ता है कि 80s में एक एक्सपर्टीज टैक्स का मेरे साथ बैठा था, तो वो मुझे कहने लगा कि तुम लंबे टूर लेके जाते हो या छोटे टूर, तुम किस पे राजी हो, किस पे खुश हो? मैंने कहा यार जितने ज्यादा मुझे पैसे बने मैं उस पे खुश हूँ। तो उसने हंस के कहा, उसने कहा देखो तुम्हारी टैक्स कार्ड तुम्हारे पास है? मैंने कहा हाँ, वो तो हर बंदा जो काम करता है उसके पास है। तो उसने कहा जो तुम्हारी फ्रॉड लिखी हुई है ना 5,000 या 4,000 या 2,000, वो जो तुम्हारी मंथली लिखी हुई है ना उससे 1,000 करोड़ ऊपर का लो, ये तुम्हारे तुम्हारी असल बचत है, इसमें तुमने गुजारा करना है, बाकी तो सारा ये मम्स और टैक्स में तुमसे छीन के ले जाएंगे। तो मैंने उस वक्त यंग था तो मैंने कहा ये क्या है, लेकिन अब मैं ये सोचता हूँ तो मैं जब ये पेपरों को ऊपर लिख लिख के पेंसिल से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं उस बंदे को याद करके कहता हूँ कि वो कितना अकलमंद आदमी था कि आज से 40-45 साल पहले उसने मुझे ये वार्निंग दे दी थी और ये चीज डेनमार्क में हो रही है। अब डेनमार्क क्या कहता है कि हमारी ऑफिशियल जो है दुनिया को ये बताता है कि हमारा जो कम से कम बंदा है वो 3,72,000 करोड़ से कम कमाता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या, अगर आप ये देखें ये जो आ रही है तो ये कंपनियां जो है ये तो 2,40,000 करोड़ सालाना है, तो फिर इनकी इसके ऊपर कौन बात करेगा, इसके ऊपर काउंसलर ने बात
1: करनी है ना। शाह साहब पहले पार्किंग की तरफ आते हैं, ये चूंकि बुनियादी सहूलियात हैं, जिसने भी गाड़ी रखी होती है, जिसने भी इलेक्ट्रिक गाड़ी अब रखेगी, अब तो चंद सालों में जो है बिल्कुल हर गाड़ी जो है इलेक्ट्रिक हो जाएगी, पेट्रोल डीजल वाला तो सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, शहर की बात कर रहा हूँ। तो शाह साहब इसकी कोई मनसूबाबंदी की जाती है, आप देखें 600 गाड़ी आएगी, किसी भी कंपनी की गाड़ी है, दूसरी गाड़ियां भी हैं, आपने पार्क भी करनी है, जो लोकल लोग बिल्डिंगों में रहते हैं उन्होंने भी गाड़ियां पार्क करनी है, पार्किंग की कोई सफाई भी नहीं करता। तो शाह साहब आने वाला जब हम मुस्तकबिल देखते हैं, बात एनवायरनमेंट की करते हैं, तो पार्किंग प्लेसेस तो सबसे ज्यादा गंदी होती हैं।
0: नहीं, मैं इस चीज से एग्री नहीं करता। जैसे मैंने 2017 में बात शुरू की थी कि ये ऊपर आ जाएगी और ये छा जाएंगे, इनको रहने दे, अपना डिफेंस करें, मैं इसी तरह ये कहूंगा कि ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं ये बहुत ज्यादा नुकसान में जा रही हैं और ये बहुत जल्द बंद हो जाएंगी। अगर आप आज की अखबारों में इंटरनेशनल न्यूज में पढ़ें तो जो टेस्ला का जो मालिक है उसको कई अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, और उसको सिर्फ इसीलिए कि अब लोग जो है वो खरीद नहीं रहे, बल्कि उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और फिर उसने उसको कवर करने के लिए अपने अच्छा की जो कीमत है अपने उसको कम किया ताकि लोग उसको खरीदे, और वो मेरा जो नुकसान मुझे हुआ है पहले 3 माह के अंदर उसको कवर किया जाए। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं इनके बहुत ज्यादा फॉल्ट्स हैं, और जो इलेक्ट्रिक बसें कोपेनहेगन में चलाते रहे हैं और चला रहे हैं, कभी आप उनका इंटरव्यू करें, उनसे पूछें कि उनको कितनी प्रॉब्लम था। ये चीजें जो है अगर जाती है, मैंने खुद अपने घर में अपने बेटों की गाड़ियों को देखा है कि नुक्स के लिए 7-7 महीने लग गए, उनको पता ही नहीं लगा, उसकी जगह उन्होंने फिर नई गाड़ियां दी है। तो ये जो चीजें हैं ये चीजें आम आदमी के लिए बहुत बड़ी नुकसान है। लोग जो है अगर खुदा ना खासा कल को ये जो कंप्यूटर का ये जो चल रहा सिस्टम अगर ये एक दूसरे के कंप्यूटराइज सिस्टम को बंद कर दे, कुछ चीज कर दे, सैटेलाइट्स को बंद कर दे, कोई ऐसी
1: सिस्टम हो जाता है, चलती रहेंगी, लेकिन फैसले जब हो जाते हैं, जब अक्सरियत, तो आपको पता है हम जमहूरी मुल्कों में रहते हैं, जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं, जब जमहूरियत
0: खत्म हो गया जी, जमहूरी मुल्क खत्म हो गया, ये जमहूरी मुल्क होता तो ये पार्किंग का जो था सिलसिला ये लोगों के लिए आसान करता, ये बूढ़ों के लिए आसान करता। 8,000 करोड़ जो है वो तो सिर्फ हूसला है कोपेनहेगन के अंदर, उसकी पार्किंग का जो है कोपेनहेगन में मेरे पास इतनी ज्यादा रिपोर्ट्स आई हैं, आपने भी कुछ बताया था, कुछ लोगों ने बताया कि एक एक लाइब्रेरी के अंदर जो लोग वहां पे रह रहे हैं वो 3,500 से लेके 4,000 और जो महंगा एरिया वहां पे 4,000 से भी ऊपर जो है एक पार्किंग प्लस का वो ले रहे हैं। अगर एक घर में 2 गाड़ियां हैं तो वो 2 पार्किंग प्लस अगर ले रहे हैं तो वो तो 5-6 हजार को उधर दे रहे हैं। तो ये
1: एक सवाल पैदा होता है शाह साहब, आप पार्किंग में खड़े होते हैं, आपको पार्किंग में क्या सहूलियत मिलती है, लाइसेंस आपने लिया उसके बावजूद आप पैसे देते हैं
0: जी, तो ये नहीं होना चाहिए, पार्किंग फ्री होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पार्किंग फ्री इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक तो आपकी जो आइंडम है जिसके अंदर आपने लाइक किया हुआ है या आपने घर फ्लैट खरीदा हुआ है, एक तो वो डबल कमाई कर रहे हैं,
1: और उसके साथ बात की तरफ मैं आता हूं, थोड़ा सा आसान कर देता हूं शाह साहब, एक बंदा एक घर में 4 बंदे फलक हैं, 2 बंदे फलक हैं, एक घर में 4 गाड़ियां उसी एड्रेस पे या 3 गाड़ियां, तो शाह साहब पार्किंग का प्रॉब्लम तो आएगा, हमें भी तो सोचना चाहिए।
0: नहीं, वो तो बिल्कुल बिल्कुल सही है, लेकिन गाड़ियों को बजाय लीजिंग करने के, गाड़ियों को ये करने के, गाड़ियों की प्राइसेस नीचे करके गाड़ियों को बाय करने के लिए अगर रखे तो किसी आदमी के पास 40-50 हजार करोड़ इतना कैश नहीं होता कि वो जाके ब्रांड न्यू गाड़ी जो है उसकी उठ बचनिंग जो कर सके। अब लीजिंग का जो मसला है कि आप 40-50 हजार करोड़ लीज कर देते हैं, गाड़ी ले लेते हैं और उसकी 3-4 हजार करोड़ जो है वो मंथली आप देते हैं, और बाज लीजिंग इतनी सस्ती है कि आप उसके अंदर 20 हजार करोड़ देते हैं तो आप गाड़ी लीज कर लेते हैं। तो लोग जो है वो उसको लीजिंग गाड़ियों पे बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं, और इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हैं क्योंकि इतनी ज्यादा जो है वो पार्किंग की प्रॉब्लम इसलिए हो गई है कि पार्किंग जो है लोग देखते हैं कि किस जगह पे पार्किंग जो है वो फ्री है, तो वो फ्री पार्किंग वाली स्ट्रीट पे जाके अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं और लोगों को जो है वो प्रॉब्लम होती है, और जो पेमेंट करते हैं जिन्होंने गाड़ियां रखी हैं आप उनके पार्किंग में गाड़ी नहीं खड़े कर सकते क्योंकि अब तो आपके फ्लैट का नंबर लिखा होता है उस पार्किंग में। मैं अगले दिन बेलारूस गया था तो वहां मैंने एक टर्किश के पास जाना था तो वहां पे वो बादशाह नीचे आया, उसने कहा कि गर्दज तुम यहाँ गाड़ी नहीं पार्क कर सकते, तुम्हें बाहर खड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ हर लाली ईद के लिए एक एक पार्किंग प्लेस है और वो उसके अंदर अपनी गाड़ी खड़ी कर सकता, दूसरा नहीं कर सकता, नहीं तो फौरन जुर्माना लग जाएगा। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा इतने दूर से मैं चल के पैदल अब आऊंगा, तो ये जो मसाइल है ये किन्होंने किए,
1: आप समझते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता लोग जो ज़हनी गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं।
0: बिल्कुल जी, अब ये कम्यून के अंदर जो बंदे बैठे हुए हैं ये इनकी इनकी वजह से है, ये इनकी देखरेख है, ये लोग इस चीजों पे बात नहीं करते कि हमारे लोगों की डिमांड क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि हमारा फोटो सेशन हो रहा है, हम कहाँ अपनी तस्वीर लगाएं, हमें कौन बुला रहा है, किस पार्टी में हमें नहीं बुलाया गया, किस पार्टी में हम जाएंगे, किस शादी ब्याह, बस ये इनका चीज रह गया। ये मैं उर्फे हमें ये कहूंगा
1: तो साहब इसका ये मतलब है कि वोटर को जो वोट देने वाला उसको अपनी पावर का पता ही नहीं है,
0: पता ही नहीं है। ये मैं ये कहूंगा कि ये पाकिस्तानी सियासतदान है, प्योर पाकिस्तानी, ये डेनिश सियासतदान नहीं है, क्योंकि डेनिश सियासतदान जो है वो किस कहीं भी तख्ती नहीं लगाता कि ये मैंने ये काम करवाया इस पे मेरा नाम आया, नहीं वो कहता है ये कम्यून ने कराया, गवर्नमेंट ने कराया, और जो वहां का बॉम मिनिस्टर होता है उसका उसका भी नाम नहीं लिखा जाता। तो यहाँ पे सारे, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि डेनिस जो है वो जब किसी भी असेंबली में हो, बेशक वो कम्यून की असेंबली में बैठे हो या पार्लियामेंट में, तो वो तैयारी करके आते हैं, उनको पता होता है कि हमने किस सब्जेक्ट के ऊपर बोलना है। तो जब आप सारा दिन अपने कारोबार में रहेंगे, अपनी जॉब कर रहे हैं, उसके बाद आप थके हुए जाएंगे, फिर आपने अपनी बीवी बच्चों को संभालना, फिर आपने किसी शादी ब्याह पे जाना, तो आप वो कहते हैं जी आपने
1: क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। शाह साहब देखे ना कि जो तंजीमें लगातार काम करती हैं, जिनका मतलब अरसा दराज से अपना काम करती हैं, वो बात तो हमें समझ आती है। शाह साहब ये आमों का फेस्टिवल जो है वो इसका बिल्कुल जो है वो रश आया हुआ है, जो सलमा हाउस जो है फुल जा रहा है, लेकिन डी पैक जो एक तंजीम है गालबन पाकिस्तानी डेनिश बिजनेस अफेयर काउंसिल है, ये पिछले 7-8 साल से ये करा रहे हैं, देखिए मुसलसल करा रहे हैं, लगातार करा रहे हैं, इनका प्रोग्राम हुआ बहुत कामयाब प्रोग्राम था, कसीर तादाद में, मैं नहीं समझता कि इतने लोग कभी किसी प्रोग्राम में गए हों, लेकिन शाह साहब वो तो तसलसल से करा रहे हैं, उनका कहा था हमें कोई जो हमें जिस कीमत पर मिलते हैं हम आगे बेच देते हैं, आगे लोगों को सर्व कर देते हैं, मेहनत होती है, अखराज डेफिनेट अखराज तो निकालते होंगे जो समझ आती है, लेकिन शाह साहब हर रोज़ मैंगो फेस्टिवल हो रहा है और ये इतना ज़्यादा इसकी एडवर्टाइजमेंट भी की जा रही है, तो शाह साहब अगर कभी हमने अपने मसाइल की भी एडवर्टाइजमेंट की है कभी?
0: नहीं जी हमने कभी नहीं की, और ये जो है ये खुद मसाइल में गिर चुके हुए हैं, उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि टैक्स की और जो है वो अपना मम्स वगैरह की उनकी नजर पड़ चुकी है इनके ऊपर, और बहुत ज्यादा पाइपलाइन में है और बहुत ज्यादा लोगों ने क्रय किया कि वो 4-4 हजार 5-5 हजार करोड़ जो है वो देते हैं बकायदा एक टेबल का, तो ये चीजें जो है बाहर निकल चुकी हैं, लोगों के टेलीफोन टेप होते हैं तो हर चीज, लेकिन ये आस्ता आस्ता ये आप याद चीज याद रखे, ये वाइकिंग है, ये बैरी करजाक है, ये बड़े बड़े शिपों को लूटते हैं, ये छोटी छोटी डैनिश छोटी छोटी चोरी नहीं करते, तो ये जब पकड़ते हैं तो ये छोटे छोटे चोरों को इंतजार करते हैं कि इनका माल उतना हो जाए जब ये एक बड़े शिप के बराबर, तो फिर हम इनके इनके ऊपर कब्जा करेंगे। तो लिहाजा मैं यहीं पे बात खत्म करूंगा कि हम लोगों ने अपने हाथ काटे हैं, अपने पांव काटे हैं अपनी ही गलतियों की वजह से, और अगर ये चीजें जो है रजिस्टर्ड होती हैं, ये चीजें जो है हम ऑफिशियल तरीके से करते हैं और अपने आप को भी खुश रखते तो ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन अब जो चीज होने जा रही है वो बहुत ही खतरनाक है, और किन किन के ऊपर होंगे क्योंकि इस वक्त जो मेरे सोर्सेज हैं, मैं चिड़िया तो नहीं कहूंगा क्योंकि मेरी चिड़िया ये है, क्योंकि मैं जानी सियासत में हूँ और जो मैं स्टडी करता हूँ, और इस वक्त जो पुराने सियासतदान जिनसे गुफ्तगू होती है डेंशो से, वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त 800-900 से जायद टैक्स केसेस जो है वो इन पाइपलाइन जो बड़े किस्म के टैक्सेस हैं, और ये कब खुलेंगे, कब आएगा ये जो है वो
1: बात हो रही है। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। शाह साहब आखिर में आप क्या कहेंगे कि यहाँ के रहने वाले शहरियों को अपनी अपनी कम्यूनों में बैठकर क्या करना चाहिए?
0: ये इनको जब तक ये आवाम से रابطہ नहीं रखेंगे, ये आवाम से ये नहीं पूछेंगे कि आपकी जनरल तकलीफात क्या हैं, इसको स्टडी नहीं करेंगे, इसके ऊपर आइन को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, वहां पे आप जाकर बात नहीं करेंगे, उस वक्त तब देखिए हमने कितनी दफा कहा है कि ये लोग कम्यूनों में ये जाके कानून बनाए, कभी किसी ने आके कहा काउंसलर ने कि जी हमने इसके ऊपर बात की है? नहीं। ये चीजें जो है,
1: कभी आपको दावत मिली है किसी काउंसलर ने कहा होगा जी आज आए हमारी डिबेट हो रही है, आप आए हमारे मेहमान बने?
0: नहीं, वो सिर्फ उनको बुलाते हैं कि जो उनके आगे बा बा करे, ताड़िए करे। वो एक शायर था तो वो शेर व शायरी कर रहा था, तो बंदे वाह वाह वाह वाह कर रहे थे, तो मैंने एक को पकड़ के पूछा, मैंने कहा बंदे ने पुत्र इतनी वाह वाह कर रहे हैं, वो क्या कह रहा था? वो कह रहा जी बड़ा अच्छा कह रहे। मैंने कहा क्या कह रहा था? उसका सब्जेक्ट गया था, उसका वो बोल कर रहा था, तो आगे से वो मेरा मुंह देखने लगा और हाथ चढ़ के चला गया। तो ये चीजें हैं कि ये वाह वाह करने वाले लोग हैं, हमें बुलाएंगे तो हम तो क्रिटिसाइज करेंगे, हम तो उनको बताएंगे तुम्हारे लिए बेहतरी है भाई, ये कानून जो है ये आइन के खिलाफ है, ये जो 400 के करीब कानून बने हुए हैं ये आइन के खिलाफ है, या आप इसके ऊपर बात करें, और वो कर सकते हैं, बेहतरी उनकी है, लेकिन वो क्या करेंगे?
1: तो शाह साहब ये जमहूरी मुल्क का आखिरी सवाल है, जवाब इसका दें, ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ तो सारे काम जमहूरियत से होते हैं, जहाँ जमहूरियत जिस तरफ ज्यादा होगी वही कानून बनेगा, वही बंदा जीतेगा। तो शाह साहब पहले सबसे पहले तो आवाम को जमहूरी बनना चाहिए।
0: देखिए जी ना, हम लोग जमहूरियत को समझते नहीं है, हमें पहले यही नहीं पता कि जमहूरियत आई कहाँ से है। हम कहते हैं जी डेमोक्रेसी जो है ये यूरोप से आई है, ये इनकी है, हालांकि इनका कानून पढ़े तो ये कहते हैं डेमोक्रेसी हम लेके आए थे दुनिया से, ओल्ड टर्की से हम लेके आए थे, वहां किनकी थी? वहां पे इस्लाम था। अगर आप इनसे पूछे जी क्या पाकिस्तान में, सुने जजों से, सुने दूसरों से, वो कहते हैं जी ये जो कैद खाने हैं ये सब कुछ अंग्रेजों की देन है, अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा फैसिलिटीज रखे। इस्लाम को देखे, इस्लामी हिस्ट्री को देखे तो कैदियों के साथ जो हौसले सलूक किया जाता था वो इतने जालिम नहीं थे जितने आज के लोग जालिम हैं। तो ये चीजें जो है डेमोक्रेसी लाने वाले मुसलमान थे।
1: ये सवाल आ गया हमारी तरफ शाह साहब, चूंकि हम जमहूरियत पसंद हैं, जमहूरियत को देखते हैं जहाँ जहाँ दुनिया में चल रही होती है, हमारे साथ रिलेटेड होते हैं कि यहाँ की जमहूरियत। शाह साहब आजकल जो जमहूरियत ने कश्मीर पर मेहरबानियाँ की हुई हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर पर मेहरबानियाँ की हुई हैं, सब पार्टियों के बड़े बड़े लीडर जा रहे हैं, बसें भी दी जा रही हैं, यूनिवर्सिटियों का भी ऐलान हो रहा है, मोटरवेज का भी ऐलान हो रहा है, तो शाह साहब ये चीज़ें तो वक्त से पहले भी हो सकती, चले देर आए दुरुस्त आए, तो शाह साहब ये जो ख्वाब लोग देख रहे हैं, वोट तो उन्होंने देना है, उन्होंने सोच समझ कर देना है, लेकिन शाह साहब हर पार्टी अपना डीजल पेट्रोल तो बेचती है।
0: देखो जी सारी ये आपकी बात सही है, पेट्रोल फेंक रही है सारी पार्टी, पेट्रोल फेंक रही है सारी पाकिस्तान जो पार्टीज हैं इस वक्त, जितनी भी पार्टीज हैं उसमें काफ हो, नून हो, पीपल हो, पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, फजल रहमान की फे हो, ये सब की सब जो है ये पेट्रोल फेंक रही है अवाम के ऊपर, अवाम को आपस में लड़ा रही है अपने वोट के मकसद मकासद के लिए। लेकिन कल को होगा क्या? कल को ये होगा कि वहां पे नफरतें फैल जाएंगी आपस में, खानदान इस इलेक्शन के अंदर खानदान जो है वो बट चुके हैं, आपस में लड़ रहे हैं, हमारे गुजरात में भी लड़ रहे हैं, पंजाब में भी लड़ रहे हैं, जो रह रहे हैं कि तुमने इसको वोट नहीं देना, इसको वोट देना, आपस में इन्होंने घरों को तबाह बर्बाद कर दिया इनके झूठे। लेकिन कल को इन्होंने कोई काम नहीं करना, कल को इन्होंने कोई ऐसी काम नहीं करनी, ये है पेड बाय यूएई, ये एजेंट्स हैं और ये लोग आए हैं, और जब तक ये
1: शाह साहब आपने कम्यून के इलेक्शन में, पार्लियामेंट के इलेक्शन में यहीं पे ब्रेकिंग न्यूज दी थी, तो शाह साहब एक और ब्रेकिंग न्यूज जो है वो हम अपने सामान्य नाजरीन के साथ शेयर करते हैं कि कश्मीर के इलेक्शन में نون لیگ جو ہے اگلے الیکشن میں حکومت بنانے جا رہی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے آخری ٹائم پر, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ابھی جو آج کی جو تازہ میں آپ بریکنگ نیوز آپ کو دے رہے ہیں, آپ دے رہے ہیں کہ کشمیر میں آزاد جموں کشمیر میں حکومت بنے گی پاکستان مسلم لیگ نواز کی, اور یہ عقل بھی کہتی ہے اور یہ چیزیں نظر بھی آ رہی ہیں, جتنی بڑی کمپین کی جا رہی ہے, جتنے بڑے طریقے سے کی جا رہی ہے, جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے, شاہ صاحب ووٹر سپورٹر کو تو نظر آتا ہے, ہمیں سہولیات کیوں کون دے گا؟ پنجاب کو دیکھا جائے, دوسرے جب صوبے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پنجاب میں کیوں ترقی ہو رہی ہے, بجٹ تو ہمیں بھی ملتا ہے, بجٹ تو کشمیر کی طرف بھی جاتا ہے, بجٹ تو کے پی کے میں بھی جاتا ہے, بجٹ تو سندھ میں بھی جاتا ہے, ڈیفینیٹ ترقی ہو رہی ہوگی جہاں جہاں ہو رہی ہے. لیکن بریکنگ نیوز یہ ہے, شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے اس پر, تھوڑا سا تبصرہ کیجیے گا کہ جی, نون لیگ حکومت بنانے جا رہی ہے آزاد کشمیر.
0: نہیں بنا سکتے, اگر اصولی طور پہ دیکھیں جو آئین ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس کے مطابق یہ جا کر آزاد کشمیر کے جو اپنی ان کی عوامی طاقت ہے, ان کی اپنی جو پارٹیز ہیں ان کے اندر یہ انٹرفیئر نہیں کر سکتے. ان کے آپ پنجاب سے اڑے یا آپ اپنے علاقہ اسلام آباد پنڈی سے جائیں تو آپ آزاد کشمیر کے اندر پراپرٹی نہیں خرید سکتے. جب آپ کو یہ اختیار وہ آئین نہیں دے رہا تو پھر آپ کو یہ انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری سیاسی پارٹی ہے. دیکھیں جب انڈیا والے جو ہیں وہ صوبہ کشمیر میں اپنی پارٹیوں کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم وائلیشن کر رہے ہیں. تو میں اس پہ صرف اتنا کہوں گا کہ یہ واقعی کشمیریوں کے حق پہ دونوں ملک جو ہیں یہ ڈاکہ ڈالتے ہیں, ان کو کوئی حق نہیں کہ آئین کے مطابق یہ جا کر اور ایسی باتیں کریں اور یہ کہیں جی کہ ہماری پارٹی جیتے گی. یہ ان کو نہیں کہنا چاہیے, بلکہ ان کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے. آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ خود اپنی پارٹی بنائیں اور ان کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ پاکستان میں,
1: ان کی اپنی بنی ہوئی ہے, ان کی اپنی پارلیمنٹ ہے, ان کا اپنا وزیر اعظم ہے, ان کے اپنے وزیر قانون ہے, ان کے اپنے صدر, پارٹیاں تو بنی ہوئی ہیں. تو شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئی انفارمیشن لے کر آ رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا.
0: اللہ حافظ.
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामान नाजरीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और सामान, मौसम के लिहाज से देखें तो इधर बारिश लगी हुई है और साथ साथ धूप भी निकली हुई है। इसी तरह सियासत में भी होता है, बारिश भी होती है, धूप भी होती है। दो दिन मौसम गर्म रहा, कल सारा दिन तकरीबन धूप ही रही, बादल कम रहे, लेकिन आज धूप भी निकली है और बारिश भी साथ साथ हो रही है। और डेनमार्क में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मौसम होता है और टेम्परेचर भी थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन आन दा होल एक ही तरह का होता है। और सियासी मौसम इसलिए नहीं चल रहा कि सियासी मौसम छुट्टियों पर आ रहा है, काम तो करते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो 12 महीने एक्टिव रहते हैं, उनमें तजिया नगार एनालिस्ट अदनान अली अमीन भी हैं। अदनान, आपको एक बार की बात पर दोबारा खुश आमदीद कहते हैं।
2: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप?
1: अल्लाह का शुक्र अदनान, मौसम फिर बारिश शुरू हो गया और साथ ही धूप निकल आई है।
2: धूप निकल आई है और मौसम भी चेंज हो गया और काफी चीजें कहते हैं, मौसम तो डेनमार्क कैसे रहता है, जैसे चीजें चेंज होती हैं वैसे मौसम चेंज होते हैं।
1: अदनान, सियासत में तो बिल्कुल खामोशी है, लेकिन वो सीना गजट से बातें चलती रहती हैं, लोग अपना अपना काम करते हैं, लेकिन ये जितने सिटी काउंसिल साहिबान होते हैं या दूसरे पार्लियामेंटेरियन होते हैं वो अपने तरीके से तो काम करते रहते हैं, लेकिन हर वक्त जो है छोटी छोटी खबरें सीना गजट चलती रहती हैं।
2: देखिए रजत साहब, अभी तो समर वेकेशन चल रहा है ना, समर वेकेशन में तो फिर कहते हैं ना खामोशी है और इंशाल्लाह खामोशी खत्म तो होगी, से खत्म होगी कि तूफान से खत्म होगी, ये तो टाइम बताएगा।
1: लेकिन आपका तजिया क्या कहते हैं कि जो हमारे गैर मुल्की बैकग्राउंड के हमारे सिटी काउंसलर भी हैं, पार्लियामेंटेरियन तो बहुत कम है, तो ये अपने काम में एक्टिव हैं या ये भी छुट्टियों पे हैं?
2: अपनी वेकेशन तो कर रहे होंगे और आगे जब ये वापस आएंगे अपनी वेकेशन से तो फिर तो इनको काफी काम इनके टफ होंगे, क्योंकि जब ये वापस आएंगे तो 98 कम्यूनों के बजट बन रहे हैं, चार रीजन के बजट बन रहे हैं, तो जीवन वगैरह बहुत से कहते हैं और इंशाल्लाह ताला फिर क्या कहते हैं देखते हैं कि इनकी मसरूफियत काफी होगी और प्रिपरेशन भी होगी और हर पार्टी ने अपनी डेलीगेशन तो बना ली होगी, जिनमें क्या कहते हैं डील करनी है ये इकोनॉमी की और बजट की, तो फिर इनकी मसरूफियत तो काफी हो जाएगी।
1: अदनान, लोग तो एमओ मैंगो फेस्टिवल पर हमारे लोग एक्टिव हैं, हो रहे हैं, बाकायदगी से हो रहे हैं, शादी ब्याह भी साथ साथ जो है वो चल रहे हैं, छुट्टियां तो सारी इसी तरह गुजर रही हैं, सियासत तो कम हो रही है लेकिन ज़रा शादी ब्याह पर सियासत तो होती रहती है, आप क्या कहेंगे?
2: सब देखिए सियासत तो हर जगह होती है, जहाँ पे सियासत मैं यही कहूँगा कि इंसान को अब देखना चाहिए कि

0: बिजनेस होता है, मगर ये जो फेक नंबर से फोन कर रहे हैं ना बहुत सारी, ये बाहर मुल्कों में बैठे हुए हैं, और ये स्पेसिफिकली पर ये फोन इसलिए बुजुर्गों को करते हैं कि बुजुर्गों से ये फिर उनकी कॉन्टी नंबर ले लेते हैं और ये ले लेते हैं और इनकी बैंक कॉन्टी खाली कर लेते हैं। तो यू हैव टू बी केयरफुल। और दूसरा, इन्हें एक नया सिस्टम शुरू किया हुआ है, अफ्रीका से बैठे हुए हैं, वहां से आपको फोन करते हैं और आप 50 करोड़ का बिल डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जिनके पास कहते हैं कार्ड का रिफंड है, उनको दावा होता है, जिनके पास मेंबरशिप है उनके नहीं पैसे दावा होते, तो इनके पास क्या कहते हैं काफी नए ट्रिक्स ने शुरू किए हुए हैं और काफी लोगों को परेशान किया हुआ है। ऑब्वियसली पुलिस को पता है, पुलिस वॉच आउट करती है, पुलिस का वॉच डॉग होता है, मगर मसला वही होता है कि पुलिस किस किस के पीछे पड़े, वो आगे इतनी मसूखियत है उनके लिए इस वक्त। जैसे आपको मालूम है कि हर शहर के अंदर, बेस्तान के अंदर वो स्ट्रीट है जहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो पुलिस के पास भी तो एक लिमिट है इस वक्त। आपको ये भी सोचना चाहिए कि पुलिस वाले भी समर वेकेशन कर रहे हैं, तो अभी वो मन उनके उनके उनके अंदर क्या कहते हैं ये मालता है उनको, और इंशाल्लाह वो कुछ करेंगे इस पे जल्दी।
1: साहब अदनान ने बात बड़ी क्लियर कर दी, लेकिन शाह साहब आप देखे ना, हम खुद क्यों नहीं ठीक होते? आप तो निशानदेही करते रहते हैं, अदनान निशानदेही करते रहते हैं। शाह साहब लोग अगर खुद ठीक हो जाए, मिसाल के तौर पर कानून तो कानून नहीं हरकत होना, हम कानून में तो मुदाखलत नहीं कर सकते, बात कह सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन शाह साहब हमें खुद भी तो ठीक होना चाहिए।
2: जी बिल्कुल, आपने सही बात की है। अदनान क्योंकि यंग आदमी है, इसका फ्यूचर है पॉलिटिक्स के अंदर, इसने खुल के बात नहीं की। आज के अखबारों में और पुलिस रिपोर्ट के अंदर बिल्कुल वाजह है कि तीन जो है वो यहाँ के लोकल पकड़े गए हैं, और वो हमारे हम लोगों में से हैं, और उन्होंने फिनलैंड का भी जिक्र किया, उन्होंने दूसरी जगह का भी जिक्र किया है, कुछ बदमाश तंजीमों का यहाँ का जिक्र किया उन्होंने। तो ये मैं उनके नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये जब तक उनको परमानेंट दांतों
1: नहीं
2: से
1: साहब, किसी
2: सजा
1: का
2: नहीं हो
1: नाम नहीं
2: जाती
1: लेना शे, नाम नाम
2: जी,
1: नहीं लेना।
2: इसलिए नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन यहाँ पे ये ग्रुप पकड़े गए हैं, और जिनके पास से, कोपनहेगन से, जिनके जिनके घरों में से ये चीजें सब कुछ मिली है। तो बात यह है कि वो कहते हैं ना कि घर का बेहतर बेटी लंका जाए, ये हम लोग खुद जो है अपने आप को ठीक करने पे नहीं। और हम कैसे ठीक करें राजा साहब, हमने इस मुल्क को तबाह किया, हमने अपने मुल्क को भी तबाह करने की बुनियाद रखी। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैंने ये जो बात किया, मैं इसको 2 मिनट में तफसीलन आपको बता सकता हूँ कि हमने क्यों जिस मुल्क में हम पैदा हुए उसको भी, उसकी भी जड़ें काटी, और इस मुल्क भी हम जड़ें काट रहे हैं।
1: शाह साहब आप बताएं, जब आप लोग आए, बड़े लोग आए, बुजुर्ग लोग आए, तो क्या उसको ये जो कानून कायदे अक्सर जिक्र करते रहते हैं आप, क्या इन लोगों ने खराब किए या हमने खुद खराब किए?
2: जी हमने जब अपने यंगस्टर्स पे हर चीज छोड़ दी, जब हमने कहा जी हमारा बेटा हमसे ज्यादा डैनिश बोलता है, हमसे ज्यादा कानून समझता है, हमसे ज्यादा, हालांकि उसको मैंने जब ये चैलेंज करके कह दिया है कि मेरे फेडरेशन को या जिसको भी आप सामने बैठाए उसको कहे कि आइन की ये शिके जो है अचानक उनसे पूछ ले, वो आपको नहीं बता सकेगी। ये अदनान कितना अरसे से यहाँ पैदा हुआ है, इसको भी सारे आयन का नहीं पता। ये चीजें जो होती हैं वो लोग करते हैं जो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के और उनके ऊपर डेली रिसर्च करते हैं। हमारे लोगों ने यहाँ हमारे यंगस्टर्स के ऊपर हमने सबको छोड़, वो छोटो जी मेरा बेटा तो भाई वो तो स्कूल के अंदर पढ़ाई कर रहा है, वो कोई पार्लियामेंट का जो लॉज है उसको तो नहीं पढ़ रहा, वो कोई वकील तो नहीं बन रहा, अगर वकील भी बन रहा है तो वो जो सब्जेक्ट उसके है उसको पढ़ रहा है। वो सब कुछ हम लोगों ने जो बुनियाद रखी है ये झूठ पे रखी है। हम लोग यहाँ पे बस शो मारते हैं और अपने आप को और अपने आने वाली नस्लों को हम तबाह बर्बाद करते हैं। पाकिस्तान में हम लोग जाते हैं वहां पे करोड़ों रुपए, यहाँ के लाखों करोड़ को जब चेंज करते हैं तो वो करोड़ों में चले जाते हैं, वहां हम शो मार के आते हैं तो हमारे खानदान वाले लोगों को कहते हैं देखो फलाने का बेटा इटली गया, फलाने का बेटा डेनमार्क गया, फलाने का लंदन गया, वो कितना कमा के ला रहा है, तुम भी जाओ। वो बेचारे डंकी लगाते हैं, अपनी जिंदगी खो बैठते हैं। ये हमारे लोगों की खामी है, अगर हम वहां पे सच बोले कि हम कितनी मेहनत करते हैं, 12-12 घंटे 13-13 घंटे टैक्सियां उठाते हैं, लोगों के सामान उठाते हैं, नशेयों को ड्राइव करते हैं, खाना हमें सही तरीके से नसीब नहीं होता, हर चीज का हम सच बोले तो ये चंद एक पैसे जो हम बैंकों से उधार ले आए या दोस्तों से मांग के ले आए हैं और पूरे खानदान के पैसे इकट्ठे करके हम यहाँ ले आए हैं, इसको हमारी शो ना समझे, हमारी मजबूरी समझे, तो फिर लोग जो है वहां पे भी वो कहेंगे कि ठीक है भाई बाहर से तो हम अपने मुल्क में सो गए हैं। हालांकि हकीकत यह है कि जब हम अपने मुल्क में जाते हैं तो हमारे मुल्क के लोग हमसे ज्यादा अमीर होते हैं। जो बच्चा 25-30 लाख रुपया दे के एजेंट को बाहर आने की कोशिश करता है उसकी सेविंग हमसे ज्यादा है तो वो आ रहा है, तो हमारे पास तो इतनी, किसी के पास भी इतनी सेविंग जो है वो कम होती है। तो लिहाजा हमें ये चाहिए कि हमें इस जिस मुल्क में हम रह रहे हैं इसमें कम से कम ऐसे हालात पैदा करें कि जो हम पे वो 5 नंबर लग चुकी है हम उसको जो है हटाने में यहाँ तंजीमात की मदद करें, वो उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे।
1: शाह साहब तंजीमात की बात करते हैं तो सियासतदान खुद आपस में लड़ रहे होते हैं। शाह साहब आपको सियासत का नहीं पता, आप सब सियासतदानों को जानते नहीं हैं
2: जी। वो जो सियासतदान आप बात कर रहे हैं वो आजकल सब पाकिस्तान की सियासत करते हैं। अगर डेनमार्क की सियासत की जाए और डेनमार्क के अंदर हमें बताया जाए, देखे मैं खुश हूँ, मैं राजी हूँ अदनान पे कि इसकी फैमिली है, इसके बच्चे हैं, इसके माँ बाप हैं या इसके दोस्त अहबाब हैं, लेकिन ये भी जिस वक्त आप इसको टेलीफोन करते हैं ये भागकर आ जाता है और अपना टाइम जो है वो आवाम के लिए दे रहा है। ये बड़ी खुशानदा बात है, दूसरों को भी चाहिए, क्या उनको सुरखाब के पार लगे हुए हैं। मैंने तो कई काउंसलर्स के बारे में ये सुना कि उनके घर हमारे बच्चों के बारे में कोई बात करेगा तो हम ये कर दें वो कर दें, और भाई डेनमार्क के अंदर जो है यहाँ पे कोई किसी का कुछ नहीं पुकार जाता, कोई किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता। आप रहे, आप अगर कानून को जानते हैं तो कानून को बताना आपका फर्ज है क्योंकि आपने वोट लेने हैं। मैं आपको ये पेशगोई कर रहा हूँ कि अगर हमारे लोगों ने अब भी सीधा रास्ता ना अख्तियार किया तो नेक्स्ट इलेक्शन में ये डेंटों को वोट डालेंगे, क्योंकि जब 70s 80s में हम लोग यहाँ पे थे तो हम डेंटों को वोट डाल देते, यही मोम्स लिफ्टॉफ्ट यही सारे जो थे पुराने पुराने ये सारे के सारे हमारी इज्जत करते थे, ये उस वक्त जवान थे और ये हमारे लिए अच्छा तो कानून लेके आते थे,
1: उस वक्त ये इतबार करते थे ना
2: जी बिल्कुल। हम हमारे पास उस वक्त ना इतनी बड़ी गाड़ियां थी, ना हमारे पास शो मारने के लिए कोई चीज था, ना यहाँ पे शादी हॉल वगैरह थे, ना कोई इतनी चीज थी हमारे लिए। हम लोग सारे आराम से जाते थे, साइकिलों पे जाते थे, बसों पे जाते थे, ट्रेनों पे, ट्रेन बहुत जगह ऐसा है पहले और आगे पीछे ट्रेन ही नहीं होती थी तो बंदे पैदल भी चले जाते थे, तो लोग कहते थे ये मेहनत मेहनत करने वाली कौम है, डेनिश कहते थे ये कौम। आज भी आप देख रहे हैं कि ये हलाल का मसला जो दरान बता रहा था, मैं इसको पढ़ रहा था अभी, तो उसके अंदर आप देखेंगे 500-600 लोगों ने एक एक बंदे को जिससे अच्छी बात किया उन्होंने कहा कि कोई हमें ट्रिंग नहीं कर रहा, हमें कोई मजबूर नहीं कर रहा कि हम हलाल खाएं, तो लेकिन एक एक औरत यहां तक निकली है उसने भी कहा कि हलाल खाने में क्या गलती क्या है, वो भी डैनिश है। देखें आप इनकी जबान में आप इनको लिखे और उसकी वजूहात जो है वो आप लिखे तो ये लोग आपको सुनते हैं। यकीन करें कि कल मैं ग्लोस्टॉप गया हुआ था तो ग्लोस्टॉप के अंदर मेरी आपसे उस वक्त बात हुई थी, आप ट्रैवल कर रहे थे उस वक्त मैं ग्लोस्टॉप गया तो ग्लोस्टॉप में मेरी दो चर्च की औरतों से बात होगी और वो उन्होंने कहीं वो जो मैं और आप लोग गए थे उधर फर्क थिंग के अंदर डिबेट थी तो वहां वो उन्होंने देखा था तो उन्होंने मुझे कहा कि स्कूल हमने तुम्हें देखा, तो मैंने कहा हाँ मैं वहां गया था, हाँ मैं वही था, तो वहां पे बात हुई तो उन्होंने ये चीज मानी कि आप मुसलमान जो हैं ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को प्रॉफिट मानते हैं। मैंने कहा हाँ, तो मैंने कहा फिर आप ये बताएं कि जीसस क्राइस्ट के नाम को, मरियम के नाम को, हजरत बीबी मरियम के नाम को आप जलाना पसंद करेंगे? कहती है नहीं नहीं नहीं नहीं। तो मैंने कहा उनका नाम तो कुरान मजीद में लिखा हुआ है। कहती है हाँ बहुत जगह मैंने खुद पढ़ा है, मैंने बहुत से लैंग्वेज अपना रिलीजन कोर्सेज किए हुए हैं। तो मैंने कहा फिर तुम लोगों को ख्याल नहीं आता कि किस तरीके से तुम लोगों ने कुरान को बंद किया।
1: तो शाह साहब चले ये आपने बताया वो समझदार लोग हैं शाह साहब, वो बातें समझते हैं आप लोग या दूसरे लोग जो बोलते हैं। तो अदनान आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पैदा हुए, हर चीज को आप समझते हैं, तो आप क्या गाइडलाइन देते हैं ये नौजवान सियासतदानों को जो कम्यून में भी बैठे हुए हैं, तजुर्बा उनके पास भी, आप कहीं से छोटे होंगे कहीं से बड़े होंगे, तो जो बातें हम आगे पीछे सीना गजट चलती रहती हैं, सीना गजट जो अखबार निकलता है तो उसमें तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि ये नौजवानों से भी बहुत सारी गलतियां हो रही हैं, उसको हम हाईलाइट तो या नहीं करना चाहते।
0: सबसे पहले मैंने ये कहा कि जो जो हम लोग सियासतदान होते हैं ना सीनियर, हम उनकी बातों को देखते हैं और उनको गौर करते हैं और हम गाइडलाइन ये देते हैं कि जो खड़ा होना चाहता है ना उसको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि इसके अंदर खड़े होने के लिए ना प्रिपरेशन की जरूरत हो। आप जब कोई काम करना चाहते हैं या करने होते हैं तो आपको काफी चीजों को देखना होता है, काफी क्या कहते हैं टाइम देना होता है। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि नेक्स्ट कमिंग स्टेज में जब ये वापस आएंगे के बाद तो सब जितने सिटी काउंसिलर हैं, जितने डीपीटी काउंसिलर हैं, जितनी पार्टी के बींग होल्डर हैं, उनका सबसे बड़ा काम यही होगा इस वक्त देखना कि बजट कैसे बनता है और उसके लिए बहुत टाइम लगता है क्योंकि ये आसान नहीं होता, क्योंकि आपने हर सूबे को देखना होता है कि किस का एरिया है, दूसरा स्कूल हो गया, दूसरा बुजुर्ग हो गए, जिस तरह हो गया, हर एरिया को देखना होता है। और इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है बुजुर्ग हैं, अगर आप ये तो चैलेंज है ना जैसे मैंने आपको शुरू में कहा है, जैसे ये क्राइम का बहुत मसला है, इसके अंदर पुलिस को भी रिसोर्स चाहिए, पुलिस ने भी देना है कि किसको प्रायोरिटेट करना है और कैसे इन चीजों को लेके जाना है, तो ये बड़ा जरूरी होता है कि आप उसमें जिस में देखें। और सबसे बड़ा जरूरी ये भी होता है कि आप जैसे आप किस उजवेल में बैठे हुए हैं, एग्जाम्पल आप स्कूल उजवेल में बैठे हुए हैं तो आप ये देखें कि स्कूल उजवेल की चीजें कौन सी हैं, स्कूल कैसे चल रहे हैं, स्कूल को किस तरह की जरूरत है, स्कूल के पास पैसे हैं, स्कूलों के पास की चीजें हैं कि नहीं, तो ये सारा क्या कहते हैं देखना होता है। हमें भी लोग बड़ा सवाल करते हैं, हमें भी बड़ा पूछते हैं, तो हम उनको वही जाने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी तरह से अपनी पूरी कोशिश करते हैं, अपना 100% देते हैं, तो गलती हमसे होती है, अगर कोई मिस्टेक होता है हमसे हमें बताएं फिर हम उसको ठीक कर दें।
1: शाह साहब आपने अदनान की बात सुनी, बात तो सारे करते रहते हैं, मीडिया पे भी चलती है, अखबारात में भी चलती है, तो शाह साहब आपको नहीं पता जो कुछ लोगों को समझ क्यों नहीं आता, जो कुछ अब मसाजिद में एक जगह पे हो रहा है, आपके शहर में हो रहा है, तो शाह साहब क्या इसमें डैनिश करते हैं या डैनिश तंजीमें कर रही हैं? गलतियां हम खुद करते हैं तो इसका नुकसान जब काफ़ी देर जाकर होगा पता, उस वक्त हमें लगेगा, शाह साहब हम खुद एक दूसरे के नुकसान करते हैं।
2: बिल्कुल जी बिल्कुल, अदनान ने बिल्कुल सही बात की है, मैं इससे अवेयरनेस हूँ और मुझे पता है कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है और कौन कौन से लोग क्या क्या कर रहे हैं। मसला यह है कि जब तक
1: मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ कोई नतन्याहू कर रहा है, ट्रंप कर रहा है?
2: नहीं बिल्कुल नहीं, इवन इवन हमारी मेटे फेडरेशन जो है या हमारे जो मॉडर्न मैसेज में था वो भी आगे नहीं कर रहे हैं, वो हमें डायरेक्ट नहीं कह रहे, जो कुछ हम कर रहे हैं वो हम अपनी अपनी जात में अपने आप में मगन इस कानून की धजियां उड़ा रहे हैं, हम खुद करते हैं ये, हमें कोई आगे ये नहीं कहता कि तुम ऐसे करो, कोई हमें यहाँ पे फोर्स नहीं कर रहा, हम आराम से रह रहे हैं, बाइज्जत तरीके से रह रहे हैं और यहाँ पे हमें बिल्कुल
1: पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे तो पाँव तो जख्मी होगा।
2: जी बिल्कुल आपने सही बात की है कि अभी देखे सबसे बड़ी ये बात होती है कि अवेयरनेस किसने देनी है, अवेयरनेस देनी है सोशल वर्कर ने, अवेयरनेस देनी है जो सियासत से तल्लक रखते हैं। अब अगर कोई बंदा ये कहे जी कि मैंने किताब लिखी, मैं पाकिस्तान चला गया वहां पे मुझे ये मेडल मिले, अब मैं ये कहूँ कि मैं लंदन में चला गया वहां मैंने बड़ी अच्छी सियासी तकरीर की और मैं जर्मनी में चला गया वहां मैंने जाके इतना, तो ये फलाने फलाने पॉलिटिशियन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि आपने इस कौम के अंदर जो देखे जो हमारे मेरे साथी आए हैं 70 से, उनके लिए सबसे जरूरी ये बात है कि जब वो पेंशन पे जा रहे हुए, हमने 500 दफा उनको ये बात बता दी हुई है कि उनके जो उस वक्त एसआईडी के और यूनियन के किसी भी यूनियन के मेंबर थे तो वहां उनकी का फर्स्ट सिकरिंग और दूसरी फर्स्ट सिकरिंग जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस है उनकी हुई है, और वो जो है वो पेंशन वाले देखते हैं कि भाई ये कितना अच्छा पेंशन के मेंबर रहे हैं। यहाँ पे एक ग्रुप होता है कि जो 40 साल इस मुल्क के अंदर काम करता है, 40 साल काम करता है, उसको ये पूरी पेंशन देते हैं, फल के पेंशन। वो फल के पेंशन होती है तकरीबन 8,000 के करीब, और जो बंदा जो यहाँ पे अपने पूरी फॉर्म को फिलअप नहीं करता उसको ये कम से कम पेंशन ये देते हैं। अब लोगों ने इसका सहारा क्या ढूंढ लिया हुआ है,
1: तो शायद इसके लिए किसने आवाज उठानी है? मीडिया तो आवाज उठाता है, तो क्या कमूनों से आवाज उठ रही है?
2: ना बिल्कुल नहीं, यही तो बात दौरान को चाहिए कि क्योंकि ये बहुत ही हार्ड वर्कर सोशल वर्कर है, इसको चाहिए कि खुल के ये बात करे। अब हमारे लोगों को ये पता नहीं है, हमारे लोग जो हैं वो दानिश के तरीके से तलाक ले लेते हैं, लेकिन इस्लामी तरीके से कहते हैं कि हमारी शादी है, और वो गवर्नमेंट को धोखा दे रहे हैं। और यहाँ पे पेपर वो पेपर भरे पड़े हैं कि ये फॉलो जो है ये कर रहे हैं। कल को जब ये बात आती है
1: इसका हाल भी होना चाहिए। देखें शाह साहब, अगले इलेक्शन आ जाएंगे, कम्यून के पता ही नहीं चलेगा कि अब तो कहते हैं लोग अभी हुए, इतना अरसा ही नहीं हुआ, तो कम्यून के तो एकदम आ जाएंगे, पार्लियामेंट के भी किसी टाइम हो सकते हैं, कम्यून के तो अपने टाइम पर होंगे। अदनान, मैं आपसे चाहूंगा कि आखिर इसका कोई हाल बताए ना
3: सब। ये देखिए, ये तो इंसान को देखना चाहिए जिस पर ये बात की गई है कि आप यहाँ का सिस्टम को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये देखना चाहिए कि आपने जिस मुल्क में रह रहे हैं उसके लॉ को फॉलो करें। आप इस तरह की चीजें करते रहेंगे तो हमारे लिए और हमारी सोसाइटी के लिए ज्यादा मुसीबतें बनेंगी। तो इसका तो यही हाल है कि बंदा जिस मुल्क में रह रहा है उसके लॉ को आप फॉलो करें और उसको देखें और उसको रिस्पेक्ट करें, ये ना करें कि आप लोग उसको ब्लॉक करें। ये जो ये शादियों का मामला है, ये तो काफी अरसे से लोगों को पता है और मुझे अटॉर्नी को भी पता है कि क्या कह रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला क्या कहते हैं, हम इसमें देखेंगे भी और इसका कुछ हल निकालना भी पड़ेगा,
1: हल निकालना पड़ेगा। शाह साहब, आखिर में अदनान का शुक्रिया भी अदा करें। शाह साहब, एक बात तय हो चुकी है कि जितने कानून सख्त हुए वो हमारी अपनी वजह से, गैर मुल्कियों की वजह से हुए। कानून पहले में बहुत ज़्यादा नरमियाँ थी, अब जितनी चीज़ें हमारी बन चुकी हैं गैर मुल्कियों की, अगर हम एक दूसरे की शिकायत कर उनको खुद नुकसान देंगे, तो शाह साहब इसमें आप क्या समझे, ये डैनिशों का कसूर है, डैनिश पीपल्स पार्टी का कसूर है?
2: नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अब समर फेरी है, लोग जा रहे हैं, छुट्टियों पे जा रहे हैं, बाज लोग जो हैं वो यूनियन पे हैं, बाज लोग बीमारी के पैसों पे हैं, बाज लोग जो हैं वो फोर्टिस पेंशनिस्ट हैं या पेंशनिस्ट हैं, उनको भी ये चाहिए कि जब वो राइजिंग करते हैं तो वो बकायदा अपने अपने अदारों को जहाँ से उनको पैसे मिलते हैं वो बता कर जाएं, क्योंकि उनकी इजाजत के बगैर जो है ये बहुत सारे केसेस बन रहे हैं बहुत ज्यादा। अब तो ये बाय लॉ हो चुका है, इसके ऊपर मैं कहूंगा अदनान भी जो है अगली दफा तैयारी करके आए, ये तो कानून बन चुका है। ये तो अब आप गूगल भी कर सकते हैं कि 6 माह से ज्यादा आप जो है डैनिश पासपोर्ट अगर आपके पास है तो 6 माह से ज्यादा इस मुल्क के आप बाहर नहीं रह सकते, और अगर 6 माह से 1 दिन भी ऊपर हो जाए तो आपका वोट कास्ट करने का भी हक चला जाता है और आपकी हर चीज जो है स्विच स्क्रीन येलो कार्ड सब कुछ बंद हो जाता है। हाँ, आप जा सकते हैं अगर आप अपनी कम्यून के साथ रابطہ करें और उनसे जो है इजाजत लेके जाए, फिर आप 2 साल छोड़ के 10 साल दूसरे मुल्क में रह गए तो उसमें कोई हर्ज नहीं। तो ये चीजें जो है, इस तरह के काफी लोग जो है वो प्रॉब्लम में आए हुए हैं और उनको बड़े मसाइल से गुजरना पड़ता है। तो हम लोग यंगस्टर से यही उम्मीद करेंगे, अदनान से या दूसरे जितने भी एक्टिव सोशल वर्कर है, कि आप लोग आगे आए और आकर तो रेडियो पे जो लोग सुनते हैं उनको इन्फॉर्म करें। तो इदरान, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अच्छे मसाइल लेके आ रहे हैं, और नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करें कि सोशल डेमोक्रेट की जो बेसिक उनकी बेसिक्स है अगर आप वो पढ़े, और आज के जो सोशल डेमोक्रेट है उनसे हम लोग मुकाबला करें तो लोगों को बताएं ये कितनी अच्छी पार्टी होती थी और अब इसके ऊपर किन कौन लोग राज कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगली दफा हम लोग खुल के बात करेंगे जी। राजा साहब,
4: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

ساز دل جب صدا نہیں دیتا کوئی نغمہ مزا نہیں دیتا.